1987 में रिलीज हुई मूवी सिंदूर का ये वाला गाना था। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और फिर इस 11 अक्टूबर रविवार से शरद नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। यानी देश में तो उत्सव होगा ही, लेकिन हमारा दिल्ली शहर जो है भाई वो चमक उठेगा। और रात में रंगीन लाइट्स की खूबसूरती वो तो अलग ही लेवल की होती है। और मंदिरों में भीड़, पकवान, सजावट, फल फूलों की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और खूब गरबा और डांडिया नाइट्स। और हाँ, वो भजनों के पंडाल, मतलब बड़ा मजा आने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपने अभी क्या प्लानिंग की हुई है। मैंने तो अपनी काफ़ी सारी प्लानिंग जो है वो बनाकर रखी हुई है, कपड़े वगैरह भी तैयार कर लिए। और थोड़ा ये भी होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनको पहले ही कर लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह कैसी बातें करूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अब जो दिन शुरू हो रहा है तो उसकी आप प्लानिंग कर सकें कि भाई आगे कैसे कैसे जल्दी जल्दी सारे बड़े बड़े काम खत्म करने, ताकि आप आराम से अपनी फैमिली के साथ जो है इन फेस्टिवल्स का मजा ले सके। अभी के लिए आप गानों का मजा लीजिए। मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और शो का नाम है भोर सुहानी।

अभी स्टूडियो की खिड़की से मैंने देखा चांद इतना छोटा सा मतलब दिख रहा है, आधा बहुत आधा सा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कहने को तो सुबह हो गई है लेकिन माहौल अभी जो है बिल्कुल एनवायरमेंट बिल्कुल रात जैसा लग रहा है। खैर सर्दियां आएंगी तो सुबह की रोशनी थोड़ी सी देर के बाद जो है वो निकलेगी और दिन तो हल्के हल्के छोटे हो ही गए हैं, तो अपने दिन के कामों की प्लानिंग जो है उसी के हिसाब से करें ताकि भाई जल्दी घर पहुंचे और फैमिली के साथ आप समय बिताएं। आई होप आपको मेरे साथ समय बिताना भी अच्छा लगा होगा। और अब अगले घंटे आप सुनेंगे अर्पण शो सुरती जिंदल के साथ। और एक बात और आपसे मेरा कहने का मन है कि भाई प्रकृति को बचाएं, क्योंकि अपने घरों में खूब सारे हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। गली मोहल्ले की जो है वो पेड़ों से हरियाली और भी ज़्यादा सुंदर होती है। नेचर बचेगा तो हम बचेंगे, और कंक्रीट के महल बेकार हैं भाई अगर साफ हवा भोजन पानी हमारे पास नहीं है तो। कभी आप ना मेरे घर आना, मैं आपको घर की छत दिखाऊंगा अपनी। नीम आम और पीपल के पेड़ के समेत और भी बहुत सारे मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो पौधे के बीच बैठकर चाय पियेंगे मैं और आप, ठीक है। अभी सुन रही है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 8 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, जिसमें आपके साथ रहेंगी सुरते जिंदल। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, इसका अयोध्या कांड भाग 77 आप सुनेंगे। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे सुरते जिंदल के साथ कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे सुरते जिंदल के साथ कार्यक्रम म्यूजिक दिल लगी, इसमें श्रोता जो है स्वास्थ्य, फूड, रोड सेफ्टी आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा। सुबह 9:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी नीतू शर्मा के साथ। सुबह 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स आप सुनेंगे कार्यक्रम नीतू शर्मा के साथ। ये श्रोताओं आपकी पसंद पर आधारित, फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम होगा। सुबह 11:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम तस्वीर, जिसमें आज आप सुनेंगे शिलोंग मेघालय के बारे में। नीतू शर्मा इसमें आपके साथ रहेंगे। दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे महिलाओं का

ये कार्यक्रम होगा घर आंगन, जिसमें आज आप सुनेंगे वायुसेना दिवस, विश्व दृष्टि दिवस के बारे में और साथ ही अन्य जानकारी। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। आज इसमें अभिनेता होंगे राजकुमार, रजनी मेहंदी रत्ता इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आएंगी। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे रुचिका वर्मा के साथ कार्यक्रम संगीत.com। दोपहर 3:10 का समय रहेगा मन भावन कार्यक्रम का, ये रिक्वेस्ट शो है, इसमें हेमा खन्ना आपके साथ होंगी। शाम 4:10 पर फरमाइशी गीतों पर आधारित आप कार्यक्रम सुनेंगे। शाम 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, इसमें 80s और 90s के गीतों का आप आनंद ले सकते हैं हेमा खन्ना के साथ। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विश्लेषण। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पेशल सीरीज जन सेवा से देश सेवा, विभा लक्ष्मी इसमें आपके साथ रहेंगी। रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे मधुरिमा कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम कंट्री वाइड ऋतिका सैनी के साथ। रात्रि 10:30 पर ऋतिका सैनी आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम हर सिंगार। रात्रि 11:40 पर आप सुनेंगे गीत मेरे मन मीत ऋतिका सैनी के साथ। तो ये थे एफएम गोल्ड पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 6:00 आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा

0: यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का दो दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress IMC at Yashobhumi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 10th edition of the Congress has brought together global technology leaders, policy makers, industry experts, startups, investors and innovators to explore emerging opportunities. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The 94th Indian Air Force Day is being celebrated today. The theme for this year's celebration is Indian Air Force Infallible, Impervious and Precise. In his message through Akashvani yesterday, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, said, "The Indian Air Force is always ready to protect the nation with alertness and firm commitment." He said last year, Operation Sindoor reaffirmed the pivotal power of integrated air operations

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपका साथ दे रही हूँ मैं सुरती। सुप्रभात, जय श्री राम।

0: या जपा करूं।
1: इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना कर पाने के लिए साहस भी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको सूरज की तरह चमकना है, तो पहले सूरज की तरह तपना होगा।

बस सोच का फर्क है, ये सोचने की बजाय कि आप क्या खो रहे हैं, ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरी यानी सुरेती के साथ। ये है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। कहती है ये दुनिया कि अपने मन में जो भी है उसे यदि ठाना है तो पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन पूरा करने की कोशिश के लिए ना एक जिद की जरूरत होती है कि हमें उसे पूरा करना ही है, बार बार कोशिश करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जिद में कुछ आकर कार्य तो करते हैं लेकिन हार जाते हैं, सफलता नहीं मिल पाती है। पर आप उस हार को अपनी हार मत समझिए, उस हार से सीख लीजिए, उसे प्रेरणा बनाइए और फिर दोहरी मेहनत से कोशिश कीजिए। देखिए सफलता एक दिन जरूर हाथ लगेगी।

बहुत बार ये होता है कि हम अपने पास्ट को सोच सोच कर परेशान होने लगते हैं। जानते हैं, बीते हुए कल में कितना भी घूम लें, हम उसे बदल नहीं सकते। तो बेहतर यही है कि आने वाले कल को बेहतर बनाने की तैयारी की जाए, है ना।

जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन इसे आसान बनाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे आसान बनाया कैसे जाए। तो बहुत ही आसान है, वो ये कुछ अंदाज से आसान बना सकते हैं और कुछ नजरअंदाज से।

समय का चक्र जो है ना वो बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का।

अर्पण में फिलहाल बस इतना ही, और अब वक्त हो गया है श्री रामचरितमानस का, तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का अगला भाग एफएम गोल्ड पर।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नानादि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिणी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस और वक्त हो गया है अब समाचारों का। सुनेंगे संस्कृत में समाचार, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ठीक 7:10 पर प्रोग्राम गोल सुप्रभात। आइए सुनते हैं समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रशासनस्य प्रमुखरूपेण निरन्तर जनसेवां कुर्वता 25 वर्षाणि पूर्णानि कृतानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतं दूरदर्शी नीतिभिः अथ कठिन परिश्रमेण च 47.5 वर्षपर्यन्तं विकसित राष्ट्रस्य स्वप्नं निश्चितरूपेण साकारयिष्यति। विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमान प्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति।
2: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशो भूमि इत्यत्र इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति। ह्यः आरब्धः ह्यः अयं चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसंचार विभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसंचारस्य अंकीय संपर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते। सहैव वैश्विक स्तरे सहकाराय निवेशाय तथा ज्ञान विनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्स्पटले @AIRNewsHindi अथ इंस्टाग्राम माध्यमे AIRNewsAlerts इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
1: वस्तु सेवा कर परिषदः 57वां उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते। वित्त मंत्रिणः निर्मला सीतारमण इत्येतस्य

0: स्याः अध्यक्षतायां भविष्यमाने उपवेशने वस्तु सेवा कर संबद्ध विवादानां समाधानाय तथा क्रय संबद्ध कर समायोजनस्य प्रवाहं सुदृढीकर्तुं नीति संबद्ध परिष्काराणां विषये चर्चा भविष्यति। अस्य उद्देश्यं अनुपालनाय अपेक्षितं समयं व्ययञ्च न्यूनीकरणमस्ति। वित्त मंत्रालयस्य सूत्रानुसारं प्रशासनं वस्तु सेवा कर व्यवस्थायां आगामी परिष्काराणां कृते पंच सूत्र संबद्ध योजनायाः प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरात् सितंबर मासस्य 17 दिनांके गुजरातस्य वडनगरात् काशी पर्यन्तं प्रारब्धा सेवा संकल्प बाइक यात्रा ह्यः सफलतया सम्पन्ना। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिन नवीनस्य उपस्थितौ गुजरातस्य वडनगरात् काशी पर्यन्तम् आयोजितायाः अस्याः सेवा यात्रायाः समापन समारोहं संबोधितवान्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् वडनगरात् काशी पर्यन्तम् इयं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 25 वर्षीयं सेवा संकल्पं सम्मानयितुम् एकः अवसरः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल उत्तराखण्ड पश्चिम बंगाल सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं। आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में काशी और पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव देश के सामने हैं। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपाय करने का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक

0: अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इम्पेंट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि इस वर्ष एक्सरसाइज वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय अभ्यास ड्रोनाथन और जारी ऐतिहासिक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति सहित कई महत्वपूर्ण वीडियो के जरिए वायुसेना अपनी युद्धक तैयारी को लगातार परख रही है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुनकोवा से और मीरा एंड्रीवा का मैच एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress or IMC at Yashobhumi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today, chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The 94th Indian Air Force Day is being celebrated today. The theme for this year's celebration is Indian Air Force Infallible, Impervious and Precise. In his message through Akashvani yesterday, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh said, "The Indian Air Force is always ready to protect the nation with alertness and firm commitment." He said, "Last year, Operation Sindoor reaffirmed the pivotal power of integrated air operations, demonstrating its capability and capacity to defend country's sovereignty." The Seva Sankalp bike yatra from Vadnagar to Kashi, which had started on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday on 17 September, successfully concluded yesterday. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath addressed the concluding ceremony of the bike Seva yatra from Gujarat's Vadnagar to Kashi in the presence of BJP National President Nitin Naveen. Yogi Adityanath highlighted how Kashi changed in past 12 years and UP in last 10 years. Addressing bikers and guests from Vadnagar who had come to Kashi, the Chief Minister congratulated PM Modi on successfully completing 25 years in public life on behalf of the people of the state. He said, "This journey from Vadnagar to Kashi is an opportunity to honour PM Modi's 25 years of Seva Sankalp." External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Cote d'Ivoire's Vice Prime Minister and

0: आज वर्ल्ड साइट डे के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स डे भी है, जो कि हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारतीय वायु सेना दिवस। जानते हैं इसकी जो स्थापना थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और अगर हम बात करें इस दिन के महत्व का, तो इस दिन देश की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वायु सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान को याद किया जाता है। और खासकर बात करें सेलिब्रेशन की, तो भाई इस दिन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन और गाजियाबाद समेत देश के विभिन्न एयर बेस पर भव्य एयर शो और परेड का भी आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ अब चलते चलते सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, कहीं और नहीं एफएम गोल्ड पर आप सभी के अपने मनपसंद प्रोग्राम में, जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात सुरती के साथ।
1: अफ़ा खुदा।

मुस्कुराते रहिए क्योंकि जीवन एक खूबसूरत उपहार है और जानते हैं इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। और इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे। उसके बाद ठीक 8 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद आप सुनना ना भूलें अगला प्रोग्राम यानी कि म्यूजिकल दिल लगी ठीक 8:45 पर। लेकिन उससे पूर्व आप सुनेंगे अंग्रेजी में और उर्दू में समाचार। तो भाई गोल सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही, मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाजत। जाने से पहले ये जान लीजिए कि 8:45 पर होने वाली है बहुत सारी खास काम की कमाल की बातें म्यूजिकल दिल लगी में, लेकिन अभी सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे, कहीं और नहीं आपके अपने मन पसंद FM गोल्ड पर।

0: शनेह पंथः शनेह कंथः शनेह पर्वत लंघनम शनेर विद्या शनेर वृत्तम पंचेतानी शनेह शनेह। अर्थात रास्ता धीरे धीरे तय करें, चादर धीरे धीरे सिलें, पहाड़ धीरे धीरे चढ़ें, विद्या धीरे धीरे प्राप्त करें और धन भी धीरे धीरे कमाएं। ये पांचों कार्य जल्दबाजी में नहीं बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही पूरे होते हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड आई मस्ट से दैट इन द एज ऑफ स्पीड एंड टेक्नोलॉजी दीज वर्ड्स ऑफ विजडम इनडीड bring to our lives and mind
0: Bilkul.
1: some calm and some amount of soothness too.
0: Ji.
1: With this good hope and positivity, we begin our today's news magazine program, Aaj Savere,
0: Ji.
1: Where we shall talk about national and international news. And my dear listeners, the next 30 minutes are going to be packed with lot of information,
0: Bilkul.
1: Lot of entertainment. There's going to be Metro City updates. And of course, towards the end of the program, Mukesh and myself together shall flip the pages of history to see what makes 8th of October so special.
0: जी.
1: So Mukesh, without much ado, let's begin the program with the news headlines.
0: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन शनिवार तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच भी उपलब्ध कराएगा। INC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार।
1: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the

0: current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. The five-pronged proposal covers process reforms, structural reforms, ease of living and doing business, exports of services and e-commerce. Some of the key changes proposed involve automatic invoice matching between buyers and sellers, reducing paperwork around claiming input tax credits, reducing the number of times small taxpayers have to file returns, and removing multi-state registrations for small businesses. The last 56th meeting of the GST Council was held in September last year. During the meeting, the Council had approved the rate rationalization with a focus on the common man, labor-intensive industries, farmers and agriculture, health and key drivers of the economy. Mukesh, I feel that these kind of entrepreneurs from the government would go a long way regarding ease of doing business, ease of, you know, ensuring entrepreneurship in the country.
1: बिल्कुल, ये तो अभी सरकार का भी जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि एक मुख्य उद्देश्य है कि देश में कह सकते हैं कि हम नवाचारों को आगे बढ़ाना।
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें ये जो जीएसटी की परिषद की जो काउंसलिंग की जो बैठक होने वाली है, एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। और इसके बाद अब सरबजीत बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबर का, तो भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपाय करने का आह्वान किया गया है।
0: A massive Russian strike killed 25 people and injured 100 others in Ukraine yesterday. Russia launched 70 missiles alongside dozens of attack drones targeting Kyiv and a dozen other Ukrainian regions. The heaviest toll occurred in Prolake in the northern Chernihiv region, where a missile obliterated a five-story apartment building, killing 19 people. According to Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Ukrainian forces intercepted 44 missiles and suppressed 117 drones, though they were unable to fend off the entire barrage. Ukrainian President condemned the assault, describing it as a deliberate demonstration of violence. Officials emphasized the urgent need for additional air defense systems and ammunition packages to better intercept incoming ballistic threats. Earlier, Zelensky said U.S. negotiators had proposed holding a trilateral meeting involving Ukraine and Russia at the technical level by the end of October, with Kyiv expressing readiness to participate.
1: अब बात मौसम की, तो मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में अगले 2-3 दिन तक आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी आज आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगर बात करें असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आज इन प्रदेशों में आंधी तूफान की स्थिति देखने को मिल सकती है।
0: And after that update on the weather, let's take a peep in the world of sports. In table tennis, Indian paddlers Manu Shah and Diya Chitale created history by becoming the first Indian mixed doubles pair to reach the semifinals of a WTT Grand Smash after beating Romania's Edward Ionescu and Bennett Scores 3-0 at the China Smash in Beijing yesterday. The fifth-seeded Indian duo won the quarterfinal 11-9, 13-11, 11-3 to secure a place in the last four. However, Manav Thakkar exited the men's singles in the round of 32 after losing 0-3 to 7th seed Alexis Lebrun of France. In women's double, Diya Chitale and Yashaswini Gorpade suffered a narrow 2-3 defeat to China's Gao Yuxin and Jing Zulin in the round of 16.
1: तो श्रोताओं, ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। अब कार्यक्रम आज सवेरे में रुक करते हैं महानगरों की खबरों का, तो शुरुआत क्यों ना करें सरबजीत दिल्ली से।
0: जी,
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने नागरिक सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए 3 नई पहलें शुरू की हैं। इनमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण की पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस सेवा, सरकारी पशु चिकित्सालय में व्यापक ऑनलाइन पालतू पशु सेवा मंच और 346 सार्वजनिक शौचालयों को वरिष्ठ अधिकारियों तथा परिषद सदस्यों

0: जी, और अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मदरसा शिक्षा आयोग को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि मदरसा शिक्षा आयोग का स्कूल सेवा आयोग में विलय कर दिया गया है। अब मदरसों में शिक्षकों की भर्ती स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से होगी। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा कि इस कदम से मदरसों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। हाल ही में राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले आलिया विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया था। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और सरबजीत के साथ। अब जानते हैं कि आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उधर अगर मुंबई की बात करें तो वहां भी आज आसमान साफ रहेगा। शहर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता की अगर बात की जाए तो शहर में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल आप सुनाइए सरबजीत अपने श्रोताओं को।
1: वेल मुकेश, चेन्नई इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 27 डिग्रीज एंड मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर्स अराउंड 21 डिग्रीज, मैक्सिमम मे गो अप टू 31 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ पार्टली क्लाउडी sky with haze. Temperatures are expected to range from 22 degrees to a maximum of 34 degrees Celsius.
0: जी, और श्रोताओं, अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करने का। तो 1919 में आज ही के दिन अहमदाबाद से यंग इंडिया पत्रिका का पहला अंक जारी हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने संपादकीय भूमिका में संभाला।
1: 1921, on this day, Indian nationalists called a general hartal or a strike on the arrival of the Prince of Wales in Bombay as part of the non-cooperation movement.
0: और 1932 में, यानी कि आज ही की तारीख को, इस बरस भारत की आकाशीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए वायु सेना का गठन हुआ था। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्पेनेट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। आइए सुनते हैं वायुसेना दिवस पर यह खास रिपोर्ट।
2: वर्ष 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है।
3: कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं।
2: नभः स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी के आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना भारतीय आकाशीय सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर रही है। युद्ध की स्थिति में शौर्य पराक्रम की पटकथा लिखनी हो या प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के समय आसमान से मानवीय सहायता पहुंचानी हो, भारतीय वायुसेना के जवान हर मोर्चे पर मौजूद रहे हैं। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कल वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायुशक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनाथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास, तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपनी युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है।
4: परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर।
5: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
2: 1947-48, 1962, 1965, 1971 और 1999 का करके ऑपरेशन मेघदूत, कैक्टस, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया ने हर बार भारतीय वायुसेना की नई धमक देखी है। समाचार कक्ष से प्राची।

0: And the Indian Air Force has repeatedly reached where help is needed most. As Dr. APJ Abdul Kalam said, dream, dream, dream. From four aircrafts to a modern air power, India has truly learned to touch the sky with glory.
1: जी, श्रोताओं, बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिन पर जो शख्सियतें हमें इस दुनिया में आई या हमको अलविदा कह गई। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं विश्वनाथ पाटेकर यानी नाना पाटेकर की। उनका आज सुबह लगभग 5:20 पर हृदयाघात से निधन हो गया। उन्हें बचाने के लिए नाना पाटेकर को 45 मिनट तक लगातार CPR दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्रोताओं, कौन थे नाना पाटेकर और क्यों थे वे खास? उनका फिल्मी सफर क्या रहा?
2: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों

0: जी, क्या खूबसूरत नगमा है कि जिसे राम की धुन है लागी। ऐसे ही कुछ शख्सियत के धनी थे नाना पाटेकर। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड जंजीरा में हुआ। वो सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक भी रहे। उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेताओं में से गिना जाता है।
1: मैं इंडस्ट्री का हूं नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, पेशी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ बीच में हम रहते हैं।
2: Great acting.
0: Jee.
2: Yes, listeners, today we have lost a great, great artist. All our tributes to the great actor and filmmaker Nana Patekar.
0: जी बिल्कुल। और आज 8 अक्टूबर वो तारीख है जो हिंदी साहित्य के अमर सितारे मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि के रूप में भी याद की जाती है। 1936 में जब धनपत राय श्रीवास्तव यानी प्रेमचंद इस दुनिया से विदा हुए तो उन्होंने पीछे छोड़ दी एक ऐसी विरासत जो आज भी समाज के आईने की तरह चमक रही है। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का नाम सामाजिक व्यवस्था का सशक्त चित्रण करने के लिए जाना जाता है। गोदान वर्ष 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी एक किसान और उसके परिवार के इर्द गिर्द मंडराती है। आइए सुनते हैं इस कालजयी उपन्यास की कहानी का सार, जिसे लिखा और अपनी आवाज से सजाया है हमारी सहयोगी पायल शर्मा ने।
3: गोदान की कहानी है एक गरीब किसान होरी की। होरी की दिली ख्वाहिश है कि उसके घर में भी एक गाय हो। होरी कर्ज लेकर गाय खरीदता है, लेकिन परिवार की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी करवट लेती हैं कि ये छोटी सी खुशी भी उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ बन जाती है। होरी का भाई हीरा ईर्ष्या में गाय को जहर दे देता है और गाँव छोड़कर चला जाता है। गाय की मृत्यु के बाद पुलिसिया कार्रवाई और पंचायत के दबाव तले होरी पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। इसी बीच होरी का बेटा गोबर भोला की बेटी जुनिया के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है और दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि जुनिया गोबर के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और गोबर इस दौरान शहर छोड़कर बाहर चला जाता है। गांव के सामाजिक दबाव के बावजूद होरी और उसकी पत्नी धनिया जुनिया को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। इसके लिए भी पंचायत होरी पर जुर्माना लगा देती है। एक और जमींदार, महाजन और पंचायत का दबाव है तो दूसरी ओर परिवार की जिम्मेदारियां। कर्ज बढ़ता जाता है और होरी की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जाती है। अपनी जमीन बचाने और परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए उसे कई कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। उपन्यास में गांव के साथ साथ शहर का जीवन भी दिखाई देता है। मेहता मालती, खन्ना और गोविंदी जैसे पात्र समाज के दूसरे वर्गों और बदलते सामाजिक मूल्यों को सामने लाते हैं। इस तरह गोदान केवल एक किसान परिवार की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि उस समय के पूरे सामाजिक ताने बाने का चित्रण करने वाली कालजयी कथा बन जाती है। होरी जब मृत्युशैया पर होता है तो पंडित दाता दीन और अन्य लोग धर्म के नाम पर उसकी पत्नी धनिया से गोदान यानी गाय का दान करने के लिए कहते हैं। धनिया होरी के ठंडे पड़े हाथों में सूतले बेचकर बचाए गए मात्र 20 आने मतलब उस समय के लगभग 25 रुपए रखती है और कहती है, महाजन घर में न गाय है, न बछिया और न पैसा, बस यही कुछ पैसे हैं और यही है इसका गोदान। और वो पछाड़ खाकर गिर जाती है। इसी अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक दृश्य के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है। गोदान हमें बताता है कि गरीबी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि उसके साथ सामाजिक दबाव, कर्ज, परंपराएं और असमानताएं भी जुड़ी होती। होरी और धनिया की कहानी आज भी इसलिए याद की जाती है क्योंकि इसमें एक आम इंसान के सपनों, संघर्ष और जीवन की सच्चाई दिखाई देती है।
2: Listeners, we are paying tributes today to Jai Prakash Narayan. Today is his death anniversary. Freedom fighter, social reformer and political leader. Jai Prakash Narayan actively participated in India's freedom struggle and later became known for his strong commitment to democracy and social justice.
0: जी बिल्कुल। माँ भारती के वीर सपूत लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर पूरे देश को झकझोर दिया, जिससे भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ जन ज्वार उमर पड़ा। इस आंदोलन ने उन्हें समाज सेवा के लिए लोकनायक की उपाधि दिलाई। नारायण जी महात्मा गांधी के भी कई आंदोलनों में शामिल रहे। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक आह्वान किया। उस दिन मानो पूरे मैदान में उनका नारा गूंज उठा था, जो नारा कुछ यूं था कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इसी नारे से उन्होंने विश्व स्तर पर अमर बना दिया। उन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
2: Paying tributes next to Admiral Ram Das Katari, today is his birth anniversary. In 1958, Admiral Ram Das Katari became the first Indian to serve as the chief of the naval staff, marking an important milestone in the journey of the Indian Navy. At a time when India was strengthening its own defense institutions, Admiral Katari helped lay the foundations of an increasingly Indian-led naval force. His career reflects the transition from a colonial military structure to a self-reliant Indian defense establishment.

श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है केदारनाथ साहू की। वे भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे। उन्हें जनजातीय परंपरा से निकला नृत्य जो है छऊ, उसके लिए वर्ष 2005 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। 1981 में इस नर्तक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अब बात करते हैं, आज जिनकी पुण्यतिथि है वो गहरी और दमदार आवाज के धनी अभिनेता राजकुमार की। उन्होंने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड के इस जानी की जिंदगी संघर्ष, सफलता और अनोखे अंदाज की मिसाल रही। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। जब बलदेव राज चोपड़ा की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें फिल्मों में आने का न्योता दिया। फिल्मी सफर की शुरुआत अगर हम उनकी बात करें तो 1952 में रंगीली फिल्म से हुई, लेकिन असली धमाका 1957 के में महबूब खान की महाकाव्य नाटक मदर इंडिया से हुआ। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

0: तो श्रोताओं, ये थे राजकुमार, जिनके ऊपर कई ऐसे नगमे फिल्माए गए जो आज भी दर्शकों के दिलों को झंकृत कर रहे हैं। तो इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश और सरबजीत को यहीं संपन्न करने की।
1: लिसनर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे ट्यून्ड फॉर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश। हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों, स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
3: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉयस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। यह कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर

0: की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: जालिम लोशन,
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशन और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग

0: घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरत सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, इसी है नहीं। बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ी बीच में हम रहते हैं।
2: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
3: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जा अब्दुल।
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
2: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
6: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
2: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेइचिंग में मनुष शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु

0: The next day, the return train will leave Katra at 10 a.m. on October 10th and 17th, reaching New Delhi at 11:30 p.m. the same day. Another special service is already operating and will continue till October 26th. A massive Russian strike killed 25 people and injured 100 others in Ukraine yesterday. Russia launched 70 missiles alongside dozens of attack drones targeting Kyiv and a dozen other Ukrainian regions. The heaviest toll occurred in Priluki in the northern Chernihiv region, where a missile obliterated a five-story apartment building, killing 19 people. Additional civilian deaths and damage were reported in Kyiv, Alexandria and Kremenchuk. President Volodymyr Zelensky said Ukrainian forces intercepted 44 missiles and suppressed 117 drones, though they were unable to fend off the entire barrage. Condemning the assault, Zelensky described it as a deliberate demonstration of violence. Officials emphasized the urgent need for additional air defense systems and ammunition packages to better intercept incoming ballistic threats. Tensions in the West Asia escalated after Iran-backed armed group Houthi attacked two airports in Saudi Arabia, killing three people and injuring more than 30 others. Saudi officials yesterday said the attack on Abha Airport killed Moroccan and Algerian residents and injured 28 people, while an attack on King Khalid Airport killed a Sudanese national and injured 8 others. The Saudi-led coalition said it intercepted a ballistic missile north of Riyadh and destroyed a launch platform in Yemen's capital Sana, used to target the Saudi capital. Meanwhile, Houthi officials claimed the rebels had regained control of key areas along Yemen's southwestern coast. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Odisha and Punjab will experience thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds for the next 2 to 3 days. According to IMD, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected over Andhra Pradesh, Bihar, Jammu, Kashmir and Jharkhand today. On to sports. In table tennis, Indian paddlers Manush Shah and Diya Chitale created history by becoming the first Indian mixed doubles pair to reach the semi-finals of WTT Grand Smash after beating Romania's Eduard Ionescu and Bernadette Sharks 3-0 at the China Smash in Beijing yesterday. The fifth-seeded Indian duo won the quarter-final 11-9, 13-11, 11-3 to secure a place in the last four. However, Manav Thakkar exited the men's singles in the round of 32 after losing 0-3 to 7-seed Alexis Lebrun of France. Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel will lead the Indian contingent as flag bearers at the opening ceremony of the Asian Para Games, which will be held from 18th to 24th October at Aichi Nagoya in Japan. Para badminton star Pramod Bhagat has won 6 Asian Para Games medals, including 2 gold and 4 bronze between 2014 and 2023. Para table tennis player Bhavina Patel has also won 2 Asian Para Games medals between 2018 and 2023. The Paralympic Committee of India, PCI, will formally see off the Indian contingent at a special ceremony today. Indian T20 captain Shreyas Iyer climbed to a career-best 7th spot in the latest ICC rankings for the shortest format, while ODI skipper Shubman Gill retained the top position in the ODI format. Shreyas climbed 18 places to a career-best 7th in the T20I batting rankings after his unbeaten 102 of 43 balls, making him India's third highest-ranked batter in the format. Shubman Gill retained the top spot after scoring an unbeaten 223 against the West Indies in the ODIs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Shagun. Modi marks 25 years in public office, says won't stop till 2047, asserts we will do it. 140 crore Indians will build Vikasit Bharat, pitches for rule-based, free and open global maritime order, leads the Asian Age. May the grace of Vignaharta bring welfare to all. PM Modi prays at Sri Vinayak Temple in capital upon completing 25 years in public office, writes the Statesman. The Hindu headlines, RBI raises repo rate to 5.5% amid calibrated tightening. Senior IPS officers must complete annual courses in ChatGPT, generative AI, cyber security, and integrative wellness, or they will receive lower appraisal scores, reads the top story in the Pioneer. And finally, math star Mahesh Kakre clinches Ramanujan Prize for fundamental work in algebraic number theory. And with that, it's back to you, Shakun.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate 10th India Mobile Congress at Yashobhumi in New Delhi this morning. 57 GST Council meeting to be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecast heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manu Shah and Diya Chitali create history, become first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash semi-final at China Smash in Beijing. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में यशोभूमि के मुकाम पर 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल की 57वीं मीटिंग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर का गोवा में इंतकाल हो गया है। भारत ने अमरीका और 13 दीगर मुल्कों के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग के क्लीदी शोबों में आलमी सतह पर इजाफी सलाहियत और पैदावार के मामले से निमटने के लिए मुश्तरका वजारती बयान पर दस्तखत किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताली की भारत की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी तारीख साज कारनामा अंजाम देते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस कल शुरू हुई है और इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगी। इसमें टेलीमवासिलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तरा के शोबों में भारत की शानदार पेशरफ्त की अक्कासी की जाएगी और साथ ही इश्तराक, सरमायाकारी और एक दूसरे को मालूम फराहम करने का एक आलमी प्लेटफॉर्म भी दस्तियाब होगा। डिजिटल इख्तरा नए सिलसिले की कनेक्टिविटी और तकनीक पर मबनी तरक्की के शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी करते हुए 2026 की इंडिया मोबाइल कांग्रेस का खास मौजू है सरहदों के बगैर तरक्की। इस चार रोजा तकरीब का एहतमाम टेलीमवासिलात के महकमे और भारत की सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर किया है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इसमें इख्तरा और नए सिलसिले के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक पर मबनी मुआशी तरक्की, जामे डिजिटल रसाई, नीज महफूज और मजबूत डिजिटल इको निज़ाम के फरोग पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के तहत डिजिटल इको निज़ाम में उभरते हुए मौके तलाश करने के लिए टेक्नोलॉजी के आलमी रहनुमा, पॉलिसी साज अहलकार, सनती माहिरीन, स्टार्टअप्स, सरमायाकार और इख्तराकार यकजा हुए हैं। इस साल की इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G और 6G, नए सिलसिले के AI नेटवर्क्स, सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम मवासिलात, एंटरप्राइज तब्दीली, सर्कुलर मईशत और ESG, नीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग समेत 9 अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके अलावा 4 नए शोबों स्मार्ट मोबिलिटी, सनदी रोबोटिक्स और ट्रांसपोर्ट तकनीक पर भी खास जोर दिया जाएगा। इसमें 100 से ज्यादा मुल्कों के 1.5 लाख से ज्यादा मंदूबीन, 500 से ज्यादा साझेदार कंपनियां और नुमाइशकार, 600 स्टार्टअप इदारे और 900 माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
2: जीएसटी काउंसिल की 57वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सदारत में इस मीटिंग में जीएसटी तनाजात को हल करने और जीएसटी के नफाज के ताल्लुक से वक्त और लागत को कम करने के मकसद से इनपुट टैक्स क्रेडिट की आमद को बेहतर बनाने की खातिर पॉलिसी असलाहत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजारत खजाना के जराए के मुताबिक सरकार जीएसटी निजाम में नए सिलसिले की असलाहत के लिए 5 पहलुओं पर मबनी मंसूबा तजवीज़ करेगी। मस्कूरा असलाहत का मकसद जीएसटी निजाम में मौजूदा इंतजामी रुकावटों को दूर करना और ख़ास तौर पर छोटे कारोबारी अफराद के लिए अमल दरामद के बोझ को कम करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि केरला में कोची वाटर मेट्रो खिदमात के जरिए उनके इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: कोची का समंदर हमेशा से इस शहर की पहचान रहा है। आज कोची वाटर मेट्रो में सवार होकर मुसाफिर इन्हीं आबी रास्तों से गुजरते हैं। कोची वाटर मेट्रो का इफ्तिताह 25 अप्रैल 2023 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। उसके अगले दिन इसकी मुसाफिर खिदमात शुरू हो गई थी। ये मेट्रो जदीद तरीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कश्तियों के जरिए कोची के जजीरों को असल शहर से जोड़ती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोची में गाड़ियों के ट्रैफिक को कम करने में इस वाटर मेट्रो की अहमियत का जिक्र किया।
5: वाटर मेट्रो से कोची के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोची की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
4: कोची से ताल्लुक रखने वाले एक कलमकार टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि इस मोटर मेट्रो के जरिए शहर के आबी ट्रांसपोर्ट में अक्सर तब्दीली आई है। कोची भारत का ऐसा पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट नाफिज किया गया है। कोची के लिए वाटर मेट्रो बुनियादी ढांचे से ज्यादा कदरों कीमत का हामिल है। ये शहर के कुदरती आबी गुजरगाहों के बेहतर इस्तेमाल के साथ सड़कों पर जारी आमद और रफ्त का एक बेहतरीन मुतबादल भी फराहम करता है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम प्लूरति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनकी रिहायशगाह पर दिल का शदीद दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। वो 75 साल के थे। मालूम हुआ है कि नाना पाटेकर अपने घर में बेहोश पाए गए और उन्हें फौरन नज़दीक के अस्पताल ले जाया गया। इब्तदाई तजज़िये के मुताबिक डॉक्टरों ने तकरीबन 45 मिनट तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उन पर इलाज का असर नहीं हुआ। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई दहाइयों तक सिनेमा में काम किया। नाना पाटेकर को परिंदा, क्रांतिवीर, अब तक 56 और वेलकम जैसी फिल्मों के लिए काफी मकबूलियत हासिल हुई। आज भारतीय फिजाइया का 94वां दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है भारतीय फिजाइया इनफेलिबल, इम्परवियस और प्रिसाइज। फिजाइया के दिन के मौके पर आकाशवाणी के जरिए अपने पैगाम में फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि भारतीय फिजाइया चौकसी और पुख्ता अज़्म के साथ मुल्क की हिफाजत की खातिर हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस ऑपरेशन सिंदूर ने मरबूत फिजाई कार्रवाइयों की अहम ताकत को दोबारा साबित किया और मुल्क के इख्तदार आला के दिफा की सलाहियत और अहलियत का मुजाहरा किया। भारत ने अमेरिका और 13 दीगर मुल्कों के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग के कलीदी शोबों में आलमी सतह पर इजाफी सलाहियत और पैदावार के मामले, नीज आलमी मार्केट्स पर असरअंदाज होने वाली गैर मार्केट पॉलिसियों की रोकथाम की खातिर इकदाम के लिए मुश्तरका वजारती बयान पर दस्तखत किए हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को विस्कॉन्सिन में G20 के तजारत के वजीरों के तबादले ख्याल के तनाजुर में 15 मुल्कों ने इस मुश्तरका वजारती बयान पर दस्तखत किए और इसे अमरीका के तजारती नुमाइंदे के दफ्तर ने कल रात जारी किया। इस पर दस्तखत करने वालों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, जम्हूरिया कोरिया, मेक्सिको, पोलैंड, तुर्की, बरतानिया और अमरीका शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस साल वायु शक्ति मशक मुख्तलिफ

0: कल यूक्रेन पर एक बड़े रूसी हमले में 25 अफराद हलाक जबकि 100 दीगर अफराद जख्मी हो गए। रूस ने कीव पर 70 मिसाइल और दर्जनों ड्रोन हमले किए। सबसे ज्यादा नुकसान शुमाली चेर्निहिव खत्ते में हुआ जहां एक 5 मंजिला इमारत पर हुए मिसाइल हमले में 19 अफराद हलाक हो गए। कुछ दीगर इलाकों में भी शहरियों की मौत हो गई और काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसकी मजम्मत की और इसे मंसूबाबंद तरीके से किया गया तशद्दुद करार दिया। सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह हौसियों के हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। कल सऊदी हुकाम ने बताया कि अबहा हवाई अड्डे पर हुए हवाई हमले में मराकश और अल्जीरिया के शहरी हलाक हो गए और 28 अफराद जख्मी हुए, जबकि किंग खालिद हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक सूडानी शहरी हलाक हुआ और 8 दीगर अफराद जख्मी हो गए। सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद का कहना है कि उसने रियाज के शुमाल में एक बैलिस्टिक मिसाइल को फिजा में तबाह कर दिया और यमन की राजधानी सना में एक लॉन्च प्लेटफॉर्म को भी तबाह किया जहां से सऊदी अरब की राजधानी को निशाना बनाया गया था। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में अगले 2-3 दिन के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताली की भारत की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी चाइना ग्रैंड स्मैश के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वो ये कारनामा अंजाम देने वाली भारत की पहली मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी है। 5वें नंबर की भारतीय जोड़ी ने पीचिंग में रोमानिया की जोड़ी को 11-9, 13-11 और 11-3 से हराया। अलबत्ता मानो ठक्कर फ्रांस के 7वें नंबर के खिलाड़ी एलेक्सिस लेबरनू से हारने के बाद मर्दों के सिंगल से बाहर हो गए हैं। इधर खवातीन के डबल्स जुमरे में दिया चिताले और यशस्विनी खोरपड़े प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की जोड़ी से 3-2 से हार गईं। भारत के टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर आईसीसी की ताज़ा दर्जाबंदी में 7वें मुकाम पर आ गए हैं, जो उनकी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है। इधर एक रोज़ा मैचों की दर्जाबंदी में कप्तान शुभमन गिल बदस्तूर अव्वल मुकाम पर हैं। पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में परचम बरदार के तौर पर भारतीय दस्ते की क़यादत करेंगे। ये एशियाई पैरा गेम्स जापान के आईची नागोया में इस महीने की 18 तारीख से 24 तारीख तक होंगे। पैरा बैडमिंटन के सरकर्दा खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2014 और 2023 के दरमियान एशियाई पैरा गेम्स में 6 तमगे जीते। इनमें सोने के 2 और कांसे के 4 तमगे शामिल हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एक सरबराही हुकूमत के तौर पर 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से मुबारकबाद की खबरों को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। इसी अखबार ने तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की न्यूयॉर्क में अमरीका की बड़ी कंपनियों के कई आला अफसरान के साथ मीटिंगों से मुतालिक खबर को पहले सफ़े पर शाये किया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कन्वेंशन के 31वें इजलास में पेरिस मुआहदे में मौजूद खामियों को दूर करने, मौसमियाती वादे पूरे करने और उन पर अमल दरामद में तेजी लाने पर जोर दिया। इस खबर को कुछ अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में यशो भूमि के मुकाम पर 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल की 57वीं मीटिंग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर का गोवा में इंतकाल हो गया है। भारत ने अमेरिका और 13 दीगर मुल्कों के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग के कलीदी शोबों में आलमी सतह पर इजाफी सलाहियत और पैदावार के मामले से निमटने के लिए मुश्तरका वजारती बयान पर दस्तखत किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताली की भारत की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी तारीख साज कारनामा अंजाम देते

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी सुरति के साथ, और वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं और हमें उनसे हारना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए।

हिंदी सिनेमा के दिग्गज नेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। नाना पाटेकर हिंदी सिनेमा के उन एक्टर्स में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज से पहचान बनाई। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म गमन से की थी। इसके बाद सिंहासन, अंकुश, प्रतिघात और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। साल 1992 में आई अंगार के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। वहीं क्रांतिवीर की बात करें तो उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल रही ये फिल्म। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साथ ही अगर हम बात करें कुछ और फिल्मों की, जैसे कि परिंदा, तिरंगा, अग्नि साक्षी, खामोशी द म्यूजिकल, वेलकम, अपहरण और राजनीति जैसी फिल्मों में भी काम करके उन्होंने सबके दिलों पर राज किया। आइए उन्हें याद करते हुए, उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए सुनते हैं गीत जो कि उन्हीं पर फिल्माया हुआ है, उन्हीं की फिल्म से। एफएम गोल्ड परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसे ही आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
2: पूजा,
3: अरे सुन क्यों नहीं रही,
4: मुझे इग्नोर कर रही हो।
5: ये बात अब सबको पता चल गई।
1: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
6: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मेरे यानी सुरति के साथ प्रोग्राम है म्यूजिकल दिल लगी। जिंदगी में अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है ना, तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं।

और इसी के साथ मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अपना मन पसंद आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हो गया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूर संचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूर संचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। सरकार ने सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत इस मार्ग को पक्के किनारों वाले 2 लेन के राजमार्गों में उन्नत किया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि उन्नत मार्ग से गंगटोक और सिक्किम के अन्य हिस्सों के लिए अधिक सुरक्षित, तेज और मजबूत संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। बेहतर राजमार्ग से पर्यटकों, कृषि और बागवानी उत्पादों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवोकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष में यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को रूस द्वारा निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे गए हैं। यूक्रेन में कल हुए इस हमले से 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। आज वायुसेना दिवस है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में से एक थे। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
2: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? और तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं।
0: ये संवाद जो अभी आप सुन रहे थे, ये थे नाना पाटेकर का अग्नि साक्षी में दिया हुआ संवाद। और खेलों में पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथानियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 12 वर्ष से अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जन सेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सामर्थ्य और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि आज आमंत्रित हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: थैंक यू।
1: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू है?
2: तो देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार की आप बात कर रही है, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं। इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स, ये है वो। और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं। आप देखिए किस प्रकार से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स $1.5 trillion, युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। टुडे देयर 3 मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जो बंद हैं, बाब अल मंडब, हॉर्मुज, ब्लैक सी। और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकीकरण का, उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से, लगभग उस समय से, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप जाएं, अभी भी PMO की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है, संपूर्ण बदलाव, उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल। और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है, इट्स अ वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस एवरीथिंग। और जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द CDS DMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी और इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे देखिए सोच क्या थी। सोच ये थी कि जो सरकार है या जो नेतृत्व है, उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप सोच विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव है उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए ये आप तय करें। आप सुन रही होंगी थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
1: थिएटराइजेशन का मतलब थोड़ा सरल,
2: थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि अभी देखिए द सर्विसेज एग्जिस्ट इन साइलोस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो देर आर आर्मी कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर नेवल कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर एयरफोर्स कमांडर्स फॉर ईच एरिया। थिएटराइजेशन का मतलब है कि आप 2 या 3 थिएटर्स बनाए, एक थिएटर विच लुक्स एट द वेस्टर्न होराइजंस, सो पश्चिमी तट की ओर, एक एट द ईस्टर्न होराइजंस या चाइना, वेस्टर्न होराइजंस पाकिस्तान एंड बियॉन्ड, और एक मैरिटाइम थिएटर, और 2-3 जैसे स्पेस इज अ थिएटर, साइबर इज अ थिएटर। बट वंस यू से वेस्टर्न होराइजंस, अब उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दे विल बी इंटीग्रेटेड इनटू दिस वन थिएटर कमांड। अब देखिए CDS इज द सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट, टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो इट्स नॉट आर्मी टेकिंग इट्स प्लान, नेवी टेकिंग इट्स प्लान, इट इज इंटीग्रेटेड प्लान विच द CDS टेक्स। दूर में देखिए क्या हुआ, So the CDS, the service chief briefed him and the CDS took the interview to plan to the prime minister. Aur iske piche bhi ek lamba itihas hai, prashthbhumi hai. So that is optimizing all available resources for बेस्ट कॉम्बैट आउटकम्स.
1: आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उनका जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है वो हमेशा कहते हैं कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, तो उसी का एक ये एक प्रारूप है जो हम डिफेंस फोर्सेस में देख रहे हैं.
2: आपने बहुत सही सवाल पूछा. देखिए क्यों, इवन आफ्टर अपॉइंटिंग द CDS, यू हैव अपॉइंटेड अ CDS, बट अगर आप इसकी तुलना करें, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अ परमानेंट चेयरमैन इन 1949. उसके बाद दे इंटीग्रेटेड द थिएटर्स. तो आपने गल्फ वॉर 1 में सुना होगा, वी हैड नेटवर्क सेंट्रिसिटी. गल्फ वॉर 2 में वी मूव टू इंटीग्रेशन, वेयर अ टैंक कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन F-16. आप देखें उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन. और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब. सो दोज आर द स्टेप्स. टूडे वी आर इन वॉट वी कॉल कोऑर्डिनेटेड जॉइंटनेस, देन यू हैव टू गो टू इंटीग्रेशन, देन क्रॉस पॉलिनेशन, देन सिविल मिलिट्री फ्यूजन, विच इज होल ऑफ गवर्नमेंट. मैं आपके इसको दो उदाहरण देता हूँ. एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, इट हैज पिक्ड अप एन अमेरिकन कॉल्ड ओमार यागी, नोबेल लॉरेट इन केमिस्ट्री. किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी में एक AI डिपार्टमेंट है फॉर एडवांस मटेरियल्स, जिसमें PLA का 30% रिप्रेजेंटेशन. तो एकेडमिया, PLA एंड नोबेल लॉरेट काइंड ऑफ टैलेंट, दैट इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन. तो ये अभी एक लंबा सफर है. CDS पहला पड़ाव था, इंटीग्रेशन थिएटराइजेशन दूसरा पड़ाव होगा. And that is the way we will grow if we have to become a power of consequence. But जो CDS और DMA है, जैसे मैंने कहा, this is the beginning of that journey. और देखिए इसका एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का ढांचा था
1: जी,
2: उसमें एक ये महत्वपूर्ण फेरबदल है. देखिए पहले क्या होता था कि a service chief would go to the रक्षा मंत्री through the defense secretary. So political executive, but the serf soldier could get to him only through the bureaucratic ear.
1: The hierarchy had to be.
2: Now it is equals. Defense secretary, CDS. Both. So that the Raksha Mantri gets the best advice. इसका that is the logic. और जैसे मैंने कहा, इसके जो अब हम civil military fusion की ओर अग्रसर हैं.
1: जी.
2: और इसके मील पत्थर क्या होंगे? प्रतिभा, talent. मैंने उसका एक उदाहरण दिया आपका. Innovation, नवाचार. Today you can't have outdated processes. देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में, ड्रोन्स, AI, ये सब हकीकतें हैं. And along with innovation, deregulation. जब मैं आर्मी कमांडर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरे को अभी तक याद है, he said private sector और startups के सिलसिले में, he was telling us that release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. नियमों का जाल. So CDS DMA is a symbol. पर इसके पीछे गहरा सोच है.
1: सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपको लगता है कि शायद उनकी दूरदर्शी सोच थी? आप कह रहे हैं कि 2014 में ही इस तरह का जो सोच है वो सामने आ गई थी, तो इन टाइम इट वाज टेकन जो डिसीजन.
2: इट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप. इट इज बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री. सो देयर आर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हियर. दूसरा जो केंद्र बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस. देखिए हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था, इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs. अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, द कैरेक्टर ऑफ वॉर, उसमें आमूल परिवर्तन हुआ है. सो टुडे इफ यू सी यूक्रेन वगैरह में पॉलीमैथ्स जो है उस युद्ध के जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं. अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या हुआ, इट इज सच अ पावरफुल मिलिट्री, देयर इज नो मिलिट्री विच कैन प्रोजेक्ट पार टू ओशंस अवे. बट अभी एक रिपोर्ट निकली है वॉशिंगटन से कि वाई द US हैज नॉट डिलीवर्ड इन एपिक फ्यूरी. एपिक फ्यूरी में उसका काम इतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज इट वॉज स्लो टू लर्न द लेसन्स ऑफ यूक्रेन. यूक्रेन से जो सीख थी ड्रोन्स, AI, वो नहीं कर पाए. तो देयर US नेवी, उसने ईरानियन नेवी के 160 शिप्स को ध्वस्त कर दिया, बट इट वॉज नॉट स्मॉल इनफ, एजाइल इनफ, ऑटोनमस इनफ टू ऑपरेट इन द स्ट्रेट.
1: तो आप जो चरित्र की बात कर रहे थे कि चरित्र चेंज हो गया है
2: इस तरह से, तो अब इस चरित्र चेंज हो रहा है, यू नीड द इनोवेशन एजिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स। अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन प्रोसेस प्रोसीजर, HAL इज प्रॉमिसिंग यू AMCA ओनली बाय 2030। अंग्रेजी में एक कहावत है दैट टुडे क्या हो रहा है दैट multi-billion-dollar capacities which are delivered in 10 years they are being overturned by innovation in 6 to 8 weeks। Ukraine mein ye ho raha, so this is the reason why we have to move towards private sector and startups। Main aapko bata dun, jab main colonel tha, agar main koi dekh bhi leta private sector ke sath, to meri wo jo kya kehte hain professional career vyavsayik jo zindagi hai uska ant ho jata। We are not supposed to interact। आज आप देखिए जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल स्वामीनाथन, वो सार्वजनिक मंच से he was telling the CEO startups youngster कि आप आए मुझसे कल मिलें और हमें मिलकर स्पेस का इस्तेमाल करना है फॉर मैरिटाइम प्रोग्रेस। इतने मैं आपको गिना दूं, देखिए सर्वम AI, गैलेक्साई मल्टीस्पेक्ट्रल स्पेस इमेजरी, पनियन टर्बोफैन इंजन, थर्ड आई टेक, न्यू स्पेस, दीज आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स।
1: रिलायंस को जो बढ़ावा मिला है,
2: हवा मिला है
1: जी
2: स्टार्टअप से, ये बहुत ही जिसे कहते हैं इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेप। रक्षा मंत्री जी कल परसों बात कर रहे थे कि नॉट ओनली द फिफ्थ जनरेशन फाइटर बट द सिक्स्थ जनरेशन फाइटर, तो ये आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: फ्यूचर रेडी जिसे हम काफी ये शब्द सुनते आज हैं, really।
2: जो हमारे भारतीय कारखाने हैं इंडियन नेवल शिपयार्ड्स, उसमें 42 शिप्स का निर्माण हो रहा है, वॉरशिप्स, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज चाइना हैज गॉट 500 शिप्स। बट ये दो तीन चीजें जो हैं, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस जिसमें निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ है, स्टार्टअप्स का प्रवेश हुआ है। और एक आखिरी चीज मैं बोल दूं,
1: जी बिल्कुल,
2: हमारी जो सामरिक सोच है जो नीति है उसमें भी देखिए नए स्तंभ हैं। आप देखें ये जो आतंक पर प्रहार हुआ है, और देखिए इसमें जो हमने किया है उसमें दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है कि देखिए आपकी जो सामरिक नीति है अगर उसमें आप आतंक उसका केंद्र बिंदु होगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे, एंड इट इज जस्ट नॉट अ फ्रेज, वी हैव डन इट। हमने कैसे किया, चेतावनी और प्रभावी जवाब के द्वारा। आपको याद होगा कि ये जो शैली है पलटवार की, देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया, जब उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स 6 से 8 किलोमीटर हमने पहली चेतावनी दी कि साहब मत करिए, फिर आपने किया पुलवामा, इस बार हमने कहा POK नहीं, POK बाहर बालाकोट में आपको जाके मारा, और फिर भी जब आप नहीं माने और आपने पहलगाम किया तो हमने सिंदूर किया। आप 10 मई 2025 का स्मरण करें, पाकिस्तान डिफेंसेस ले बैटर्ड, इट्स सॉवरेनिटी ले शैटर्ड। हमने तो ये जो टारगेट्स है ना 40-50 टारगेट, हमने तो सिर्फ मैप्स पे मारे थे, पहली बार हमने हकीकतन मारा रावलपिंडी, रायविंड, नूर खान 1.5 किलोमीटर था GHK से। पाकिस्तान नोज इट दैट दे वर बैटर्ड एंड शैटर्ड। Look at the message that we have given.
1: So, Mr. Nathaniel, coming to you, आप क्या कहेंगे, ये जो पिछले 12 वर्षों में बहुत उपलब्धियां रही हैं, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने भी बताया डिफेंस सेक्टर में, अगर हम नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हुआ है और इसी वर्ष डिक्लेरेशन हुई 31 मार्च को कि अब नक्सल मुक्त है भारत, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए, और क्या लगता है आपको किस तरह ये संभव हो पाया?
3: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म पहले तो 67 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद CRPF ने काफी जोरों से वहां काम किया बंगाल में, क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह के आसपास था ज्यादातर, वहां पे जब तकरीबन खत्म हो चुका था तो ये जो नक्सलाइट थे इन्होंने मूव किया नांद्रा की तरफ दूसरे इलाकों में।

0: तो वहां जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना जड़ जमाया वहां पे, खासकर अबुजमांड एरिया में। वहां पे दिक्कत ये थी फोर्सेस को कि कहीं पे भी अगर ऑपरेशन करना हो तो उन्हें 20-30 किलोमीटर लगातार जाना पड़ता था, और वापसी में जब आते थे तो काफी एग्जॉस्ट हो चुके होते थे, और वापसी में ही ये लोग नक्सल जो थे वो अटैक करते बड़े तादाद में, 200-300 के तादाद में 70-80 आदमी पे अटैक करें। उससे क्या था कि काफी हमें नुकसान पहुंचा शुरू में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी देखा कि इसको किसी तरह खत्म करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमें ये खत्म करना ही है। और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और सीएपीएफ के, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएएसएफ, आईटीबीपी ये सब उसमें आते हैं, एसएसबी भी है, तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है, इससे पहले आपने खत्म करना है। उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में, ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन, जो रोड कम्युनिकेशन है वो नहीं, जंगलों में आप कितने देर जाएंगे, 20 किलोमीटर गए वापसी में ये अटैक कर देते थे, और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं, आपको पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है। तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की। शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की, तब इनके ऊपर अटैक होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे, तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई। गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि इट इज मोर और लेस लाइक अ पैरामिलिट्री है। तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रेच बना दिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आने शुरू हो गए और उनको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया गया। इस हिसाब से फिर काफी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी सब जगह ले जाने रोड्स बिछाने लग गए। इन रोड्स के बिछाने की वजह से ट्रूप्स भी अंदर जाने लगे, सीआरपीएफ के कई जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाने शुरू हुए, जिसको हम एफओबी बोलते हैं। उन एफओबी में जब कंपनियां आके बैठ गई, कंपनी में करीब 100-150 आदमी होते हैं, और उनके पास कोई 15-20 गांव उनकी जिम्मेवारी का इलाका बनता था, और जब वो वहां जम गए सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस भी, तो इंटेलिजेंस आना बहुत आसान हो गया। उससे पहले इंटेलिजेंस हमें आसानी से मिलती नहीं थी, हम ज्यादातर टेक्निकल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहे थे, लेकिन जो टेक्निकल इंटेलिजेंस था नक्सलाइट्स को ही पता है,
1: जब सड़कें बनी तो आपका वहां पर पहुंच बनी
0: बिल्कुल जी। तो फोर्सेस जब वहां जम गए तो लोगों के अंदर जो पहले भय था नक्सलाइट से, तो उस भय को दूर कर दिया गया, और वो खुद आके बताने लग गए कि फलाने फलाने जगह यहाँ पे नक्सलाइट का मूवमेंट हो रहा है
1: जी।
0: और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आने लग गए, ऑपरेशन काफी जोरों से किया गया, और उस वजह से उन लोगों के काफी कैजुअल्टीज होने लग गए, और इससे ये भी हुआ कि कैजुअल्टीज जो फोर्सेस के थे वो तकरीबन समाप्त हो गए। और सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया गया कारेगुटा हिल्स, जो कि काफी 15-20 किलोमीटर तक चल रहा था, और उसमें सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय खुद भी थे, और ऑपरेशन लगातार 15-20 दिन चलाए गए जंगलों के अंदर, काफी कठिन इलाका था, और कोबरा बटालियंस भी वहां पे पहुंचा दिए गए, हेलीकॉप्टर और बाकी सब तैयार रखे गए ताकि अगर कुछ कैजुअल्टी होता तो उनको इवैक्यूएट किया जाए, और हेलीकॉप्टर से ही उनको खाना पानी वगैरह ही पहुंचाया जा रहा था। उस कारेगुटा ऑपरेशन ने इतना बड़ा कमाल किया कि ये जितने भी नक्सलाइट थे उन्होंने कारेगुटा हिल्स को खाली कर दिया, और कई तो आंध्रा की तरफ भाग गए। आंध्रा में भी जो पुलिस थी उनको पहले ही इसकी खबर थी कि यहाँ ऑपरेशन चल रही है, तो हो सकता है वो उनके तरफ बढ़े, तो वहां पे उन लोगों ने भी ऑपरेशन जोरों से शुरू किया, और उसके वजह से कई पकड़े गए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि डीआरजी जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की अपनी फोर्स है
1: जी,
0: उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक जगह उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू वो किसी जगह जंगल में छुपा हुआ, और उसके साथ 20-25 और उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। उस ऑपरेशन में सभी को मार दिया गया बसवराजू के साथ, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब उनका जनरल सेक्रेटरी जो टॉप लीडर है वही मारा गया, तो उनका जो फ्रेमवर्क है वो खत्म हो गया था। उसको देखते हुए उनमें पहले से ही कई लीडर थे जो चाह रहे थे कि हम सरेंडर कर दें, सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और ये इतने एल्यूरिंग पॉलिसीज थे कि अगर आप सरेंडर कर दो आपको इमीडिएटली 50,000 दिया जाएगा, सरेंडर करो आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा,
1: रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे प्रयास किए गए।
0: तो उसके वजह से

0: कईयों ने सोचा क्यों ना हम निकल जाएं यहाँ से, और उसमें ये भी था कि जब इनके आपस में शादियां भी होती हैं, नेक्सलाइट जंगलों में रहते हैं, लेकिन दे के नॉट प्रोड्यूस एनी चाइल्ड, उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता था। लेकिन हर आदमी चाहता है भाई मेरे बच्चे भी हों और आगे मेरा संतान बढ़े, तो उसके वजह से कईयों ने सरेंडर किया, तो उनका रिवर्स किया गया स्टेरिलाइजेशन और मकान दिए गए, फैमिली ढंग से रहने लग गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया, स्किल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद उनको काम भी दिया गया। और कई जो उनमें बड़े अच्छे थे उनको, जो कि ट्रेंड आदमी थे, उनको स्टेट पुलिस में भी लिया गया। वहां पर बस्तर बटालियन है और छत्तीसगढ़ का अपना CAF है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, उसके अलावा जैसे बताया DRG भी है, जो अच्छे ट्रेंड थे और जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल नहीं थी, उन लोगों को फिर ऐसे फोर्सेस में भी लिया गया।
1: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय समर्थन और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG है। सो मिस्टर नथानियल, अगर हम वहाँ जो रहते हैं लोग ट्राइबल्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अब वो लोग भी मुख्य धारा में आएंगे?
0: अब बसत भी जाने लग गए, लोगों को आसान हो गया, राशन पहुंच रहे हैं वहाँ पे, और CRPF एक ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, इधर कोई तकलीफ है CRPF में पहुंच जाएंगे, वहां से खबर पहुंच जाएगी DM तक, कहीं पे भी पहुंचाना खबर। तो अब वो इंटरेक्शन, क्योंकि CRPF पहुंच गए हैं, पब्लिक का इंटरेक्शन CRPF से हो रहा है और सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है
1: जी।
0: पहले जब किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना होता तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। जब मैं IG झारखंड था तो मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर रखे गए थे कि कभी भी कहीं कैजुअल्टी होता है इमीडिएटली, और कई ऑपरेशन, एक सरंडा फॉरेस्ट हमने ऑपरेशन करवाया था झारखंड में, वो लगातार हफ्ते भर का चला, सब जवान जंगल में, तो वहां पे राशन वगैरह भी हम हेलीकॉप्टर से पहुंचा रहे थे, ताकि, और उस सरंडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया, नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहां जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती। लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहां पर हम अंदर जा सके, 1-2 कैजुअल्टीज हुए, लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए, ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं अगर कोई आता है तो मालूम पड़ जाए नाइट विजन डिवाइसेस। तो इन चीजों से हम काफी फायदा, हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन यह काफी तादाद में जब वहां यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है, तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: सो पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस जो आप लोग वहाँ तैनात होते हैं, इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या MSMEs या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
2: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूंगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, he has done some outstanding work, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए। जैसे मैंने आपको बताया, HAL की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट HAL smartens up, सो दैट RPSUs are challenged। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, he does not bother about the American competitor, he is more bothered about the Chinese competitor। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कम्पीट करने की काबिलियत रखती हैं। सो वी नीड डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देख लें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात, रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर्स की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज AI इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वार्मिंग हो रही है, आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन, ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वार्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये

0: वो हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे कैनॉट बी ड्रिवन बाई अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है, गवर्नमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए, और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं। आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर्स हैं, पामन लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब GSQR बाहर लोग बोलते हैं GSQR इज डेड। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर वी नीड मोर रिफॉर्म। देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, विच इज लिंक्ड टू प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एंड ऑल। मैं आपको बताऊं कैसे, हम जब बाहर जाते थे 2005-6 में, तो लोग कहते थर्ड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं। हम कहते साहब ये हमारी नीति नहीं, देयर वाज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट। टुडे If the last figures were are right, in fact, I was hearing the Honorable Raksha Mantri, 38,000 crores.
1: Yes.
0: अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, this is a 5,500% की उछाल है।
1: और 80 देशों में जा रहा है।
0: 80 देशों में, जैसे आपने कहा, आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। 145 फर्म्स हैं, एमएसएमईज वगैरह सब मिला के, विच आर डीलिंग विद दिस। आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग। और ये आप देखें, दिस इज ऑल्सो अ जियोपॉलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है। इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस देके चीन को घेरा है। सो एक्सपोर्ट्स आर अ जियोपॉलिटिकल लीवर, दे आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दे मेक सो मच सेंस, एंड आई थिंक दिस इज वन एरिया वेयर वी हैव, इन फैक्ट we are moving from being importers from the world to exporters to the world.
1: In fact, जो positive indigenization lists आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक आइटम्स हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक ईयर मार्क करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में, और वो अब दिखाई भी दे रहा है एक्सपोर्ट।
0: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था। देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊं हकीकतन हो क्या रहा था। मान लीजिए टैंक है भाई, हम तो अगर नवाचार नहीं, जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे, हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग, बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे, एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था। तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य यह था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे, और एमएसएमईज बना सकते हैं। आजकल तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं। तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे, पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा, बट हम जो राजनीतिक नेतृत्व थे उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं, जब नहीं आए तो हमने बना लिया। सी इंडियंस आर वेरी गुड, हमने डीपीआई नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी, तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इम्पोर्ट करेंगे नहीं, नो नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट। तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इम्पोर्ट पे खर्च था वो कम हुआ है, नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर वी विल परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट।
2: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़
0: गए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखिए बुनियादी सवाल क्या था, आई जी साहब ऑल्सो विल, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेज डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेज डेवलपमेंट, रॉन्ग, इट इज सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड डेवलपमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, साथ चलना है। सोपदीप, जो मूल्यभूत जो चर्चा थी वही गलत थी, वी हैव टर्न्ड इट अराउंड, वी ग्रो अप इन साइलोज, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, PSUs प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया अपनी दुनिया में, अरे भाई एकेडमिया में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, R&D नहीं होगी, प्योर साइंसेज नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आ ही नहीं सकती, एवरीबडी हैज टू इंटीग्रेट। सो देयर इज अ लार्जर कंसेप्चुअल चेंज ऑल्सो विच इज ड्राइविंग ऑल दीज आई वुड से मेगा रिफॉर्म्स।
1: ये जो कंसेप्चुअल चेंज की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और रिफ्लेक्शन एफटीआई, जो डिफेंस में एफटीआई को लिबरलाइज किया गया है 74% तक बाय ऑटोमेटिक रूट एंड 100

0: सेट टू प्रूव दैट इट हैड एफिशिएंसीज ऑफ इट्स ओन. तो एफडीआई में भी यही था पहले, और इसको हमने पहले कैसे कहा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता. हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्षमता, प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए. सो उस तरह से ये जो एफडीआई धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, पीएसयू स्ट्रक्चर्स में, टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. देखिए हमको पीएसयू या से कोई गिला नहीं है, ऑल दैट वी आर सेइंग, आप पीएसयू हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप स्टार्टअप्स हो, आपके लिए लेवल प्लेइंग. एंड इफ यू लुक एट द फ्यूचर, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्टर्स की कमी, यू नीड रोबोट्स टू प्रोड्यूस एमिनेशन. सो आई एम सेइंग कि इंडिया में भी HAL, BEL, दे आर वेरी गुड कंपनीज, बट इनका आकार, इनका स्वरूप बदली करना पड़ेगा. दे हैव टू बिकम AI कंपनीज
1: बिकॉज द डिलीवरी इज डिजिटल. स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो आया है भारत में, और वी आर द थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा बल है डिफेंस सेक्टर के लिए भी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए उस दिशा में.
0: बिल्कुल, मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स, बिकॉज दे आर एजाइल, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेटिक. यू नो, ये जो चीजें आजकल, जैसे मैंने बताया, मेरे को तो ये लगता है, ये सब पता नहीं क्या कहें, कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है AI और साइबर क्वांटम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ है. And most of these technologies lie at the cusp of civil-military fusion, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में, सिविल स्पेस में भी है. आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया, मैंने आपको इनाम गिनाए थे. These are just IT engineers, किसी ने गराज में शुरू किया, किसी ने कुछ किया, but they have delivered, and I am only talking of the defense space. In the civil space, तो और भी हुआ है. So I'll go back toward the Prime Minister. I think it was very important. Release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. हमने जो इतने rules, नियम, शियम बना के रखे थे, that was throttling national security. उसको आजादी मिली है अभी.
1: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में अगर हम देखें पिछले 12 सालों में. मिस्टर थेतेल, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए.
2: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री, राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट. और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है ये J&K है और नॉर्थ ईस्ट में भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है, सिवाय मणिपुर के जहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कोबरा बटालियन वहां पहुंच गए हैं. उसी तरह कोबरा बटालियन अब J&K में ही पहुंच गए हैं, सो दैट आर्मी इज रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, एंड कोबरा बटालियन अलोंग विद अदर CRPF बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दो एरिया. अब वहां पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया. हालांकि कुछ है, एक तो उल्फा है आसाम में, जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है, लेकिन हमारे काबू में है, वो ज्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता. लेकिन J&K में जो है वहां पर आर्मी राष्ट्रीय राइफल तो रहेगी, और उनके साथ मिलके सिविल पुलिस के साथ मिलके आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वहां पे भी उसी तरह का पीस होगा जैसे कि 1989 से पहले था, और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे.
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, मिस्टर नथानियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस पर आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद.
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता. इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथानियल. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम.
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं.
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति

0: करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

फिर म्यूजिकल दिल्लगी लेकर हाजिर है नीतू आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और आज है एयरफोर्स डे और देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करने वाले वायु सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मानित करने का दिन है। आधिकारिक तौर पर

भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसी खुशी में ये दिन मनाया जाता है। आज के दिन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन समेत देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर भव्य परेड और शानदार एयर शो का आयोजन किया जाता है। बहुत सारे आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए जाते हैं। आज ही है विश्व दृष्टि दिवस, जो आंखों की देखभाल के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल अक्टूबर के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। अब वो जो करतब होंगे उन्हें देखने के लिए आंखें तो चाहिए ना, तो ये दिन जो है वो याद दिलाता है कि रेगुलर आई चेकअप, स्वस्थ जीवन शैली और समय पर इलाज से हमारी आंखों की रोशनी जीवन भर सुरक्षित रह सकती है। तो अपनी आंखों को सुरक्षित रखिए, अपनी आंखों से प्यार कीजिए, क्योंकि आंखें सिर्फ देखती नहीं है और बहुत कुछ करती है।

आधुनिक हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे महान लेखकों में से एक हैं उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद, जिनकी आज पुण्यतिथि है और उन्हें हम याद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम जनता, किसानों, महिलाओं और शोषित वर्ग के दर्द को सजीव रूप से उभारा। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे कालजयी उपन्यास और ईदगाह, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर जैसी कितनी ही कहानियां आज भी हमारे दिलों में बसी हैं और कितनी ही कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं, और उन्हीं में से एक फिल्म का गाना मैं आप तक पहुंचा रही हूं। फिल्म है गोदान।

गरीब और वंचित परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ही शुरू की गई है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत वंचित गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ कम हो सके। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, मैं हूं नीतू और फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है तो इस गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

बोला ना अरे कोण सांग अरे कोण पैसा देईल का बो अरे पाऊस पडेल का।

0: सेबी कडून इन्व्हेस्टर जागरूकता उपक्रम. अधिक माहितीसाठी सेबी इन्व्हेस्टर वेबसाइटवर विजिट करा किंवा सेबी सारथी ऍप डाउनलोड करा.
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए. रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की. ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in.
2: मग सुरू करूया इन्व्हेस्टिंग चा धडा.

0: क्योंकि ये शॉट अच्छा था, यहाँ पे उसने अच्छा बोला था. तो जो जो जैसे रोहिणी ने और कविता ताई ने नाजनीन की शूटिंग की थी, तो नाजनीन की कहानी की एडिटिंग में रोहिणी और कविता ताई बैठे थे. और फिर वो बताते थे कि उस दिन का ये शॉट्स और ये वो रखना है. ऐसे करके हमने ऑलमोस्ट 3 महीने लिए थे सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में. और उसी प्रोसेस के दौरान हमने स्टोरी, सबकी इंडिविजुअल कैरेक्टर की स्टोरी बनानी शुरू कर दी थी. क्योंकि 10 लोग हैं, 10 कहानियां हैं, तो उनको अलग अलग, हमने 10 कहानियों को अलग अलग बनाया था. और हर कहानी ऑलमोस्ट 1 घंटे की बनी थी हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन में. और फिर उसके बाद हमने बैठकर एक स्क्रिप्टिंग की, कैरेक्टर की एक्सरसाइज की थी कि इसकी कहानी में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, और जो जो लग रहा था कि शूटिंग और चाहिए कि वो कहानी पूरी बन जाए, वो जाकर कंटिन्यूअसली शूटिंग एडिटिंग के दौरान भी हो रही थी. और फिर उसके बाद हमारी एक बड़ी प्रक्रिया थी जो ऑलमोस्ट अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक चली. वो थी ये 10 कहानियों को एक साथ आप इंटरट्वाइन कैसे बांधेंगे. और उसमें फिर हमें धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत कुछ छोड़ना पड़ा. तो एक्चुअली में जो बहुत सारा फुटेज है जो हमें बहुत पसंद है, बट जैसे कविता ताई ने बोला कि मैं से निकलकर हम पे आने के लिए हमने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत सारे नेगोशिएशंस किए हैं. और उसके बाद दिसंबर 2025 के बाद हमारा पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हुआ. उसमें हमारा साउंड डिज़ाइन, साउंड क्लीनिंग, कलरिंग और फाइनल मास्टरिंग हुआ. तो अप्रैल में जाकर 2026 में हमारे हाथ में हमारी फिल्म गर्मा गर्म आई.
1: वाह, खरोखरच तुमचं ती डॉक्युमेंटरी खूप चांगली झालेली आहे. आणि वेगवेगळे सीन्स मला आता आठवत आहेत, म्हणजे आत्ताच काही दिवसांपूर्वी मी बघितली. आणि त्याच्यामध्ये जसं तुम्ही म्हणालात की प्रत्येकीची एक स्टोरी आहे, प्रत्येकीची एक कहाणी आहे, तर मी नाजनीन मॅडमकडेच येणार आहे. आणि त्यातला तुमचा जे तुम्ही उत्तरं दिलेली आहेत ती अगदी खरी, तो सच्चेपणा मला तुमचा जाणवला त्या तुम्ही जे उत्तर दिलेत. आणि त्याच्यातला एक थॉट आहे की आप जो बोलते आहे की मैं वही क्यों बताऊंगी तो कुछ अलग सा बताते है, तर तुमची स्टोरी सांगा ना आमच्या या श्रोत्यांना.
2: मतलब मेरा एक मोटिवेशन था कि महिलाओं को कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब मैं लड़ रही थी उस सिचुएशन से, जैसे मेरी मूवी में दिखाया गया है कि मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, सिंगल मदर हूँ, तो मैंने मतलब मेरे एरिया में ही देखा था कि बहुत सारी औरतें जल के मर गईं या फिर फांसी लगा ली. तो मुझे ये मतलब पिक्चर के थ्रू बताना था कि मतलब कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना चाहिए इंसान को. तो इसके लिए मैं मूवी में मतलब मूवी के थ्रू ये बताना चाहती थी, मोटिवेशन करना चाहती थी महिलाओं को कि मतलब कुछ भी हो, तकलीफ आए, कुछ भी हो, जियो, खुश रहो. मतलब हम लोग भी काम करते हैं, सब महिलाएं, जितनी महिलाएं वो सब जॉब करते हैं, सब बच्चे हैं, फैमिली है, जिसकी मतलब फैमिली, वो लोग फैमिली लेके भी अपने मतलब खुश रह रहे, हंस रहे, खेल रहे, मस्ती कर रहे हैं. तो मुझे वो बताना था.
1: बरोबर, म्हणजे खरोखरच कितीही संकट आली तरी हार आम्ही मानणार नाही आणि पुढे जाणार. पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊया आणि इथे घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. मस्त महिला मंडळीच्या सगळ्या या 12 महिला आत्ता आपल्यासोबत आहेत. आपण ऐकताय 100.1 MHz वरती एक खास कार्यक्रम मस्त महिला मंडळी, यांच्याविषयी आपण बातचीत करतोय, गप्पा मारतोय.

0: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मग सुरू करूया इन्व्हेस्टिंगचा धडा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMT को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के

0: संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said digital connectivity has powered education, healthcare and government services. Mr. Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhumi in New Delhi. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said today even children in remote villages and from poor families are able to access quality knowledge. Mr. Modi said, over the past 10 to 12 years, the mobile phone has emerged not only as a medium of modern communication, but also as a crucial tool for good governance. He said today, hundreds of government services are available on mobile phones. The Prime Minister said, the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India.
2: बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: The 57th Goods and Services Tax GST Council meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi to discuss policy reforms to resolve disputes and improve the flow of input tax credit with the aim to reduce the time and cost of compliance. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Karnataka CM D.K. Shivakumar, Jammu and Kashmir CM Umar Abdullah, Haryana CM Nayib Singh Saini and Finance Ministers of States and Union Territories are also attending the meeting. Sources in the Finance Ministry said the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Barinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief at the demise of the renowned actor of Hindi and Marathi cinema. In a social media post, the Prime Minister said, Nana Patekar brought remarkable versatility and creativity to every role and played characters that will be remembered for generations. The nation

आज सुबह जब लोगों ने समाचार सुने तो एक ऐसी खबर आई जो सिने प्रेमियों के लिए काफी शॉकिंग थी। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बनाई, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। बात हो रही है नाना पाटेकर की। कलाकार बेमिसाल लेकर आपके साथ है रजनी। शुरुआत करते हैं नाना पाटेकर पर फिल्माए एक बहुत ही मधुर गीत के साथ। फिल्म का नाम है गुलाम-ए-मुस्तफा।

महाराष्ट्र की रंगभूमि से अपने सफर की शुरुआत करने वाले विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया ने प्यार से नाना पुकारा, उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 2 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित पद्मश्री नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में मुरूद जंजीरा में हुआ। उनके पिता को नाटक देखना बहुत पसंद था और वो उन्हें भी नाटक देखने के लिए प्रेरित करते थे और यहीं से उनके मन में अभिनय के लिए प्रेम जागा और कुछ समय बाद वो खुद भी अभिनेता के तौर पर रंगमंच से जुड़ गए। अगला गीत फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से आवाजें हैं कुमार सानू और सुदेश भोसले की।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: इस ब्रेक के बाद जारी है कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर की। 2013 में नाना पाटेकर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी साल महाराष्ट्र सरकार राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार उनके नाम रहा। परिंदा, क्रांतिवीर और अग्निसाक्षी फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही अंगार, क्रांतिवीर, खामोशी, अपहरण, अब तक 56 जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने फिल्म फेयर, जी सिने अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, BFJA अवार्ड जैसे कई पुरस्कार जीते। मराठी और हिंदी फिल्मों के अलावा एक तमिल फिल्म काला में भी उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी और इसके लिए उन्होंने आनंदा विक्टन सिनेमा पुरस्कार जीता। चाहे बेहद संजीदा किरदार हो या फिर जबरदस्त कॉमिक रोल, उन्होंने हर भूमिका को यादगार बना दिया। सुनते हैं उनकी बेहद लोकप्रिय फिल्म वेलकम से गीत, जिसमें उन्होंने जबरदस्त यादगार कॉमेडी की थी।

बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन शैली में विश्वास रखने वाले नाना पाटेकर मुंबई में एक 1 BHK में रहा करते थे। परोपकार के कार्यों के लिए भी उन्हें जाना जाता था। बिहार में बाढ़ से जो तबाह गांव हुए उनके पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने बड़ी राशि दान में दी। इसके अलावा पाठशाला फिल्म में काम करने के बदले जो उन्हें फीस मिली वो भी उन्होंने NGOs को दान कर दी। राज कपूर पुरस्कार में जो उन्हें धनराशि मिली वो भी उन्होंने किसानों के लिए दान में दे दी। और भी कई सारे परोपकार के कार्यों में नाना पाटेकर लगे रहते थे। आज चाहे वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि कुछ कलाकार जाते नहीं, वो अपनी आवाज में रह जाते हैं, अपने किरदारों में रह जाते हैं, अपने संवादों में रह जाते हैं और सबसे बढ़कर चाहने वालों की यादों में रह जाते हैं।

अंकुश फिल्म के इस गीत के साथ फिलहाल रजनी को कलाकार बेमिसाल से इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसमें कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं उर्दू में खबरें।

0: India's first secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim during the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 5,50,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs Centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. And the nation honors sacrifices of air warriors on Air Force Day. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया, कहा पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
3: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेते निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश

0: सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
1: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
2: जोधपुर जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
3: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
4: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुँह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे की जैसे लगा की हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा की उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया है जिससे ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
1: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
5: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
6: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
7: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
6: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारतीच्या वेब्स, OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एअर या ॲपसहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता नादब्रह्म कार्यक्रमात झिशान खान यांनी गायलेला राग मदमाज सारंग आपल्याला ऐकवत आहोत। विलंबित ख्यालाची बंदिश झुमरा तालात आहे, द्रुत बंदिश झप तालात आहे। त्यांना तबल्याची साथ अजित पाठक यांनी आणि हार्मोनियमची साथ जयंत फडके यांनी केलेली आहे। ऐकूया झिशान खान यांनी गायलेला राग मदमाज सारंग।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी। साचा जवाब आपनारा मित्रों छे स्मिताबेन मेहता, भरतभाई खोना, विभाबेन महेश्वरी, नीताबेन राणा अने जतिनभाई दर्जे। आ बधा ज मित्रोए साचा जवाब आप्या छे। मित्रों मैं जे प्रश्न कर्यो हतो के गरबा अने नवरात्रि एने पृष्ठभूमि राखीने एक गुजराती फिल्म बनी जेने नेशनल एवॉर्ड मळ्यो, तो ए फिल्म कई? तो ए फिल्म छे हेलारो। अने मित्रों पुरुषोना शौर्य, वीरता अने साहसने वधाववा माटे एना प्रतीक रूपे एक रास रमाय छे। ए रासनुं नाम शुं छे अने आ रास क्यां रमाय छे? पुरुषोना शौर्य, वीरता अने साहसने वधाववा माटे एक रास रमाय छे। आ रासनुं नाम शुं छे अने ए क्यां रमाय छे? मित्रों सचिन अने सारिका आ जोड़ीए हिंदी फिल्मोमां धूम मचावी हती, परंतु आ जोड़ी पर एक गुजराती गरबो पण फिल्मावामां आव्यो छे। तो ए गुजराती गरबो कयो? अने गरबामां के नवरात्रिमां ज्यारे दांडिया रास करीए के गरबा करीए, आपणे गोळ गोळ फरता होय छे के घूमता होय छे, तो आ गोळ गोळ फरवा पाछळ शुं कारण छे? आपे मने आपना उत्तरो जणावाना छे। नंबर छे 0224515414, 0224515414।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM कोड खरासोना ने न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लिकेशन पर कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी आपनी साथे छे तरुलता करोडिया। प्रश्न हतो तमे किया थे गामना गोरीराज कई फिल्म छे तो सोन कंसारी, कोना पर गीत फिल्मावामां आव्युं छे तो उपेन्द्र त्रिवेदी अने स्नेहलता। तमे किया ते गामना थयुं अने एना पछी छे कांजी क्या रमी आव्या रास, तो आ गीत नरेश कनोडिया अने अरुणा ईरानी पर फिल्मावामां आव्युं अने फिल्मनुं नाम छे जोग संजोग। मारो त्रीजो प्रश्न हतो कि चैत्र नवरात्रि ने आसो नवरात्रिमां शुं तफावत छे, तो चैत्र नवरात्रिमां तमे एक ज जग्याए घरमां बेसीने माताजीनी साधना उपासना अनुष्ठान करी शको अने नवमा दिवसे भगवान श्री रामनो जन्म थाय अने आपणे रामनवमी उजवीए छे। अने आसो मासनी नवरात्रिमां खूब आनंद करो, खूब कूदो, खूब नाचो, खूब हरो फरो मौज करो, कारण के आ एक विजय उत्सव छे। कारण के दसमा दिवसे आपणे विजयादशमी उजवीए छे अने रावणनुं दहन करीए छे। मित्रो साचा जवाब जेमणे आप्या छे एमना नाम छे प्रेमजीभाई, मावचंदभाई, विभाबेन, जयंतीभाई, भरतभाई खोना अने विनोद मखवाणा, आ बधाए साचा जवाब आप्या छे। मित्रों आ साथे ज मने तरुलता करोडिया ने आपो रजा, फरी मळीशुं वचन साथे। नमस्कार, 4 वागे आप सांभळशो समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन है। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनर्जीवन पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सीआर पाटिल ने कहा कि नदी पुनर्जीवन के लिए प्रदूषण नियंत्रण से परे जाकर जल उपलब्धता, पारिस्थितिक स्वास्थ्य, भूजल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और सामुदायिक भागीदारी को समाहित करने वाले एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों को वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11/2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। पारादीप तट पर सारिक्स 26 समुद्री खोज और बचाव अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक PTM, तटरक्षक पदक TM से सम्मानित भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने आज पारादीप तट पर 12वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान सारिक्स 26 का अवलोकन किया। हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं से अपनी पहचान बनाई। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रीको गुंजे को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला और थरुण मानेपल्ली को पुरुष सिंगल्स में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said the platform of Indian Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi highlighted that over the years, the platform has emerged as a platform showcasing India's progress and its aspirations. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Mr. Modi said today 5G connectivity has reached every district of the country. He said that the government is now working to connect around 25 crore students through various digital and online education platforms.
1: 2022 में इसी मंथ से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बड़ी है।
2: Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav today said that a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Mr. Vaishnav was speaking to media after releasing the World Development Report 2026, The Promise of Artificial Intelligence. Mr. Vaishnav said the proposed consultation paper will focus on AI safety, cyber security, and benefits and potential harms. The 57th GST Council meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting. The meeting is deliberating policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pehelgam attacks. Exercising its right to reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Established on the 8th of October 1932, this momentous occasion marked the beginning of a vision for air power that would shape the nation's defense for decades to come. Addressing the gathering at Hindon Air Base in Ghaziabad on the occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh recalled the Indian Air Force's combat operations during Operation Sindoor. He said the country saw firsthand the destructive power as well as effective air defense operations of the Air Force during the operation. On this occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have extended greetings to all air warriors, veterans and their families. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. His notable Hindi movies include Parinda, Prahar, The Final Act, Tiranga, Krantivir, Khamoshi, The Musical, Ab Tak Chappan and Welcome. Leaders across the party lines and film fraternity mourned the death of a veteran actor. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the demise of Nana Patekar. Prasar Bharati and Indot Sports Private Limited today announced the launch of Kisan Cricket League KCL, the first of a kind initiative at the national scale. KCL is a national sports and talent platform aimed at discovering cricketers and singers from the rural parts of the country. The league will be held in February next year and the registrations for participation in it will open in the next 2 to 3 weeks. And that is the end of this news bulletin.

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हेमा आपके साथ हूँ और अब आइए सुनते हैं कुछ सदाबहार हिंदी फिल्मी गीत।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with the National Monument Authority, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi, has invited applications for posts of two consultants, conservation architect positions on a contractual basis at NMA headquarters. The engagement will initially be for 1 year and may be extended up to 3 years subject to performance. Candidates should have a bachelor's or a master's degree in architecture from a recognized university or institution, along with at least 3 years' experience in conservation work involving historic buildings and sites. Experience in heritage sites management plans, documentation and condition assessment of historic structures, heritage bylaws and knowledge of historic building materials and techniques will be relevant. The remuneration is 50,000 to 70,000 rupees per month depending on the experience. The maximum age limit is 50 years as on the last date of the application. Eligible candidates should attend the walk-in interview on 15th October 2026 at 11:30 a.m. at NMA headquarters, 24 Tilak Marg, New Delhi, carrying their biodata and originals as well as self-attested copies of supporting documents. For details, kindly look up the website at www.nma.gov.in. BRIC National Agri-Food and Biomanufacturing Institute, an autonomous institute under the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, Mohali, has invited applications from Indian citizens for one post of management assistant under direct recruitment. The post is unreserved, carries pay level 6 as per the 7 CPC and the upper age limit is 30 years. Candidates should be graduates with 2 years regular service in level 5 or equivalent or 3 years regular service in level 4 or equivalent in central or state government, universities, autonomous institutions or PSUs. Alternatively, candidates with an MBA and 2 years experience in reputed firms may apply. Experience in stores and purchase matters is desirable. Age relaxations will be available as per Government of India rules. The last date for submission of online applications is 26th October 2026. For details, kindly look up the website at www.nabi.res.in. The National Monuments Authority, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi, has invited applications from eligible officers of the central or state governments, union territories, statutory or autonomous organizations and public sector undertakings for appointment on deputation, including short-term contract, to various posts at its headquarters. The vacancies include System Analyst 2 posts, Survey Officer 1, Architectural Drawing Officer 1, Photo Officer 1 and Stenographer Grade 2, 3. Candidates must fulfill the prescribed educational qualifications, experience and other eligible conditions for the respective posts. Applications in the prescribed performer should reach the National Monuments Authority on or before 9th November 2026. Detailed eligibility conditions and the application format is available on the authority's website, that is at www.nma.gov.in. National Institute of Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai, Swami Vivekananda National Institute of Rehabilitation, Training and Research, Cuttack, Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute for Persons with Physical Disabilities, New Delhi, and the National Institute for Locomotor Disabilities, Kolkata. The post will be filled on deputation or contract basis carrying pay level 13 for deputation and 1,75,000 per month consolidated remuneration on contract. The last date for receipt of applications is 42 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Details available at the website, that is at www.depwd.gov.in or on the respective institute's website. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार। रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमाणन अधिकारी नियंत्रक के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन के आधार पर निजी सहायक के दो पद भरे जाने हैं। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट www.cca.gov.in। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंध संस्थान प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियर, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर या समकक्ष पद धारण करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट nerIWALM.gov.in। एम्स देवघर झारखंड एक स्वायत्त राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के अंतर्गत स्थापित नए एम्स संस्थानों में से ये एक है। इसका उद्देश्य देश में तृतीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। एम्स देवघर के विभिन्न विभागों में मेडिकल एवं नर्सिंग फैकल्टी पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं प्राध्यापक 21 पद, अतिरिक्त प्राध्यापक 5 पद, सह प्राध्यापक 17 पद, सहायक प्राध्यापक 25 पद और नर्सिंग सह प्राध्यापक अथवा रीडर 1 पद। कुल मिलाकर 69 पद उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें। वेबसाइट है www.amsdevghar.edu.in। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों चेन्नई, कटक, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में क्षेत्रीय अधिकारियों के पद तथा मुंबई में एक अपर क्षेत्रीय अधिकारी का पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत विवरण के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2026 का अंक। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी आंध्र प्रदेश इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर जनरल सर्जरी तथा एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी कुल 2 पद उपलब्ध हैं। पात्रता मानदंडों, वेतनमान, आरक्षण, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.amsmangalagiri.edu.in। वेबसाइट का पता फिर से सुनिए www.amsmangalagiri.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार। शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
1: हेलो वैष्णवी। हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विथ मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट वैष्णवी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 50,50,000 base stations.
0: वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा।
1: Supreme Court directs center to form committee to curb unethical pharma marketing practices.
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन।
1: इंडिया accuses पाकिस्तान ऑफ डबल स्पीक ऑन टेररिज्म, says इस्लामाबाद cannot gloss over support to terror groups.
0: और देश वायु सेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है।
1: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we pay tributes to Nana Patekar.
2: हमारे बाद मैं फिल्में अफसाने बयां होंगे, वहाँ रे हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ।

0: Yes, and some voices stay with us long after the screen fades to black. Some performances become memories that generations carry with them. Today, Indian cinema bids a deeply emotional farewell to one such remarkable artist, Nana Patekar.
1: खबरों के अनुसार हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गोवा स्थित घर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन के साथ ही भारतीय सिनेमा के करीब 5 दशक लंबे एक असाधारण और यादगार सफर का अंत हो गया।
0: Nana Patekar was never just an actor, he was a performer who brought raw emotion, intensity and an unmistakable honesty to every character he portrayed. Whether on the big screen or on stage, he had a presence that was impossible to ignore.
1: उनकी आवाज, संवाद बोलने का अंदाज, चेहरे के भाव और किरदार को जीने का उनका तरीका, इन सब ने मिलकर नाना पाटेकर की एक ऐसी पहचान बनाई जो भारतीय सिनेमा में बिल्कुल अलग और अनोखी थी। गंभीर और भावुक भूमिकाओं से लेकर खलनायक, पुलिस अधिकारी, सैनिक और कॉमेडी किरदारों तक उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कई रंग दिखाए।
0: Nana Patekar was never the conventional Bollywood hero. At a time when Hindi cinema often celebrated the clean-cut, chocolate-box leading man, Patekar arrived with a completely different presence, rugged, intense, unmistakably real.
2: मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे, बोलो सुनना है?
3: देखो सबको सुनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको पैसा वाला बनना है, लेकिन देखो मेरी जान, ये बम्बई है, यहाँ कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती, हर बात की कीमत चुकानी पड़ती है। अब उनका एडवाइस भी फोकट में नहीं मिलेगा, चलो एक एक रुपया निकालो, चलो चलो चलो चलो भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो सबसे पहले तुम्हें ऊपर देखना सीखना पड़ेगा, यहाँ जो ऊपर देखता है वही जिंदा रहता है।
1: नाना पाटेकर के चेहरे की कठोर था आवाज की गूंज और संवाद अदायगी में ऐसी ताकत थी कि वे बेहद उग्र किरदार को भी पूरी तरह विश्वसनीय बना देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, उन्हें कभी किसी तय सांचे में ढलने की जरूरत नहीं पड़ी।
4: कैसे

0: हूं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम।
1: लेट्स गो अहेड एंड लिसन इन टू दिस रिपोर्ट।

0: एक कलाकार जो कभी अभिनय नहीं करता था बल्कि उस किरदार को जीता था। 1978 में गबन से शुरू हुआ सफर परिंदा का अन्ना सेठ बना, जिसके लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: अन्ना को डराता है?
2: यही है वो आदमी, मैं जानता हूँ यही है वो।
1: तो फिर जाओ, जाके ढूंढो, जाओ। नहीं नहीं अब्दुल, कहीं तो हिंदुस्तान जिंदा है, उसकी इज्जत कर। जा इंस्पेक्टर, सबूत ला, गवाह ढूंढ, फिर ले जाना, मैं खुद चलूंगा तेरे साथ, जा।
0: फिर आया क्रांति वीर का प्रताप, जिसने पूरे देश को जगाया।
2: लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
0: 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री, इतने सम्मान मिले पर नाना पाटेकर हमेशा जमीन पर रहे। फिल्म अग्नि साक्षी में विश्वनाथ के नेगेटिव रोल को जिस बखूबी से उन्होंने निभाया, वो आज भी लोगों की जुबान पर है।
3: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो?
4: अरे साहब, मैंने आपको इन्वाइट भी किया था कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है।
3: तो कौन सा तीर मारा? कमान पार्टीज और गो टू स्लीप नाउ।
0: उनका एक डायलॉग था, जिंदगी में कुछ बनना है तो इंसान बनो। आज वो इंसान चला गया, पर उसकी आवाज, उसका गुस्सा और उसकी हंसी हमेशा हमारे बीच रहेगी। अंगार, तिरंगा, अभय, खामोशी, गुलाम मुस्तफा, वजूद और युग पुरुष जैसी फिल्मों में किए गए उनके अभिनय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिग्गज नेता के बारे में बस ये कहना चाहेंगे कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आकाशवाणी परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।
5: फ्रॉम प्लेइंग विलियंस टू प्लेइंग हीरोज, पाटेकर क्रॉस्ड अ डिफिकल्ट लाइन दैट फ्यू एक्टर्स कुड। इन परिंदा ही गेव अस द टेरिफाइंग अन्ना सेठ, अ साइकोटिक क्राइम लॉर्ड हुज मैनियकल लाफ बिकेम अनफॉरगेटेबल।
1: कल सुबह
2: एक पुलिस वाले का खून हुआ है ना सेठ, उसका एक हरफ हमको फांसी का फंदे तक पहुंचा सकता है।
1: तो फिर उसे चुप करा दे।
2: वो मेरा भाई है।
6: अब्दुल,
1: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा।
6: धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जा अब्दुल, जा।
2: नहीं अब्दुल, मैं समझाऊंगा उसे, न सेठ, मैं समझाऊंगा।
1: चल, चल। मेहनत से जमाया हुआ इतना बड़ा धंधा एक बच्चे की नादानी की वजह से मिट्टी में मिल सकता है? मेरा तो कोई है नहीं, मेरे मरने के बाद ये सब किसका है? तेरा ही तो है किशन। करण को चुप रहना होगा या जाना हो।
0: और कुछ ही साल बाद प्रहार द फाइनल अटैक में वे बिल्कुल अलग रूप में दिखाई दिए। यहाँ उन्होंने मेजर प्रताप चौहान का किरदार निभाया, एक अनुशासित, ईमानदार और अपने सिद्धांतों पर अड़िग सैनिक। खास बात ये थी कि नाना पाटेकर ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था, यानी उनके भीतर का कलाकार सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं था, बल्कि कहानी कहने और उसे पर्दे पर उतारने की महत्वाकांक्षा भी उतनी ही मजबूत थी।
7: मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, कम से कम जिंदगी का एक साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग।
5: Then came Ab Tak 56 as Inspector Sadhu Aghase. Pattekar created another iconic character, a police officer so consumed by his mission to eradicate crime that the line between duty and obsession began to disappear.
8: Ghar pade, Bura ka kya hua?
9: Sir, jahan tak mujhe pata chala hai, Bura aapke bete ki maut ke liye zimmedar nahi hai. Us din wo Mumbai mein
8: jo bola wo karne ka, yahan sirf mera order aur dimag chalega.
9: दिमाग ठकाने होगा तब चलेगा ना
10: सर।
9: सर आप सीनियर हैं, इसका ये मतलब नहीं क्या?

0: जो बोलने का है वो सामने बोलने का, पीठ पीछे नहीं।
1: अभिषेक, उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे कोई किरदार निभा रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे वे खुद साधु आकाशी बन गए हों। यही नाना पाटेकर की सबसे बड़ी ताकत थी। वे दर्शकों को ये भूलने पर मजबूर कर देते थे कि पर्दे पर कोई अभिनेता है, सामने सिर्फ वही किरदार रह जाता था और दर्शक उस पर पूरा विश्वास करने लगता था।
2: And what's more, Vaishnavi, his journey had begun much earlier with films like Gaman and his memorable appearance in Meera Nair's Salaam Bombay. From there came a remarkable run of performances in films such as Krantiveer, Tiranga, Rajniti and Welcome.
3: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, दोबारा ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं तुम्हारी।
1: और शायद नाना पाटेकर को सबसे खास बनाने वाली बात यही थी कि उस गुस्से, तेवर और तीव्रता के पीछे एक बेहद संवेदनशील अभिनेता भी मौजूद था, जो खामोशी के जरिए भी उतना ही कह सकता था जितना किसी लंबे संवाद के जरिए।
2: इन संजय लीला भंसाली's खामोशी, he played Joseph Braganza, a deaf-mute father and a husband, and there are no fiery monologues, no aggressive outbursts, just silence, expressions, and pure performance. And in those quiet moments, we saw another Nana Patekar, vulnerable, restrained, and deeply human.
1: बिल्कुल श्रोताओं, यही उनकी अदाकारी की असली रेंज थी। वे दर्शकों को एक ही फिल्म में डर, उत्साह और हंसी महसूस करा सकते थे और अगले ही पल उन्हें किसी किरदार के दर्द के साथ चुपचाप जोड़ सकते थे।
4: सॉरी सर, मैं तो एक्साइटमेंट में आकर।
5: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय।
2: Over the decades, Nana Patekar became much more than a familiar face in Indian cinema. He became a presence, a voice, a style of acting that belonged unmistakably to him.
1: उनके अदाकारी में गुस्सा था, बगावत थी, हास्य था, दर्द था और कमजोरी भी। वे गैंगस्टर बने, सैनिक बने, पुलिस अधिकारी बने, पिता बने और कॉमेडी किरदारों में भी नजर आए, लेकिन हर भूमिका में वे अपनी एक अलग सच्चाई लेकर आए, ऐसी सच्चाई जिसे दर्शक तुरंत महसूस कर लेते थे।
2: And his later appearances may have become fewer, but the impact of his earlier work never really faded. And even in his recent films, including Vanvas, Houseful 5, Subedar, and O Romeo, audiences continue to recognize that unmistakable Nana Patekar stamp.
1: 1978 में गमन से शुरू हुई उनकी फिल्मी यात्रा करीब 5 दशकों तक चली। इस लंबे सफर ने एक बात साबित कर दी, एक यादगार स्टार बनने के लिए पारंपरिक हीरो जैसा दिखना जरूरी नहीं, जरूरी है कि आपके पास अपनी एक आवाज हो, अपना एक अंदाज हो और किरदार को सच बना देने की क्षमता हो।
2: Yes, and to conclude our discussion today, Vaishnavi, Nana Patekar may have taken his final bow, but the characters he brought to life, the dialogues he made memorable, and the emotions he evoked will continue to live on.
1: और ये भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज को विदाई है, एक ऐसे अभिनेता को जिसने अपने लिए कोई तय सांचा स्वीकार नहीं किया और अपनी शर्तों पर अपनी अलग पहचान बनाई। नाना पाटेकर को भावभीनी श्रद्धांजलि, एक ऐसे कलाकार को जिसे भारतीय सिनेमा और उसके दर्शक कभी भुला नहीं पाएंगे, उनकी विरासत हमेशा बनी रहेगी।

0: parade, an air display was held at the Hindon Air Force Station in Ghaziabad, Uttar Pradesh today. After independence, the IAF played an important role in several military operations and conflicts, including the 1947-1948 Jammu and Kashmir operations and the 1965 and 1971 wars, the Kargil conflict and subsequent counter-terrorism operations. Over the years, the IAF has evolved into a modern air force with capabilities covering air defense, air superiority, strategic airlift, surveillance, humanitarian assistance and disaster relief. For Parikrama, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
1: तमिलनाडु में वन विभाग ने तटीय मयालादुथुराई जिले में आपदा के समय बायोशील्ड प्राकृतिक सुरक्षा कवच देने के लिए ताड़ के बीज लगाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है। यह अभियान ग्रीन तमिलनाडु मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2026-27 के वित्तीय वर्ष में समुद्र तट और नदियों के किनारों पर 30,000 ताड़ के बीज लगाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: The Forest Department has launched a mega drive to plant 30,000 palmyra seeds in reserve forests close to the coastline in Mayiladuthurai, a Kaveri Delta district of about 11 kilometers covering coastal villages. This coastal line, which includes Tarangambadi, Chinnangudi, Kuttiandiyur and Karaikal Medu, is highly vulnerable to cyclones, sea erosion, storm surges and tsunami. The palmyra tree, the Borassus flabellifer, known as Karpakataru, the state tree of Tamil Nadu, is a natural bioshield for coastal areas. Its deep roots, strong trunk and dense canopy act as a natural barrier against strong winds and seawater intrusion. In recent decades, the number of palmyra trees along the Tamil Nadu coast has drastically decreased due to urbanization, lack of replanting and natural calamities. This has increased the vulnerability of coastal communities. Therefore, the planting of palmyra seeds along Mayiladuthurai coastline is a low-cost, eco-friendly and long-term disaster mitigation initiative. The project is being carried out under the Green Tamil Nadu Mission, which aims to increase the state's tree and forest cover. The drive to plant palmyra seeds began recently in the coastal Mayiladuthurai district, which consists of Sirgali and Mayiladuthurai forest ranges. Palmyra seeds have been planted at Koolayar Reserve Forest close to the coastline and in Pumpuhar coastal area besides on the Uppanar River Bund. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashwani, Tiruchirappalli.
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आबे मेमोरियल कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इसे युवा पीढ़ी के लिए एक जीवित क्लासरूम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों शहर अपनी अपनी सभ्यताओं की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने ये दिखाया है कि सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखते हुए भी विकास किया जा सकता है। उद्घाटन समारोह में शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे, राज्य के मंत्री, विधायक और जापानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मौजूद थे। अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल।
3: प्रसार भारती एंड इनडॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड टुडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ किसान क्रिकेट लीग KCL, द फर्स्ट ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव एट अ नेशनल स्केल। KCL इज अ नेशनल स्पोर्ट्स एंड टैलेंट प्लेटफॉर्म एम्ड एट डिस्कवरिंग क्रिकेटर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द लीग विल बी हेल्ड इन फेब्रुअरी नेक्स्ट ईयर एंड द रजिस्ट्रेशंस फॉर पार्टिसिपेशन इन इट विल ओपन इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks।
1: इस क्रिकेट लीग में 15 ओवर का सफेद गेंद वाला प्रोफेशनल क्रिकेट फॉर्मेट होगा। लीग के पहले सीजन में कुल 45 मैच खेले जाएंगे। देश भर से चुने गए टैलेंट पूल में 7 टीमें, 140 क्रिकेटर और 30 गायक शामिल होंगे।
3: एंड नाउ ऑन टू सम बिजनेस न्यूज। बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एक्सटेंडेड लॉसेस टुडे एमिड वीक ग्लोबल क्यूज। द सेंसेक्स टैंक्ड 1045 पॉइंट्स और 1.44% टू क्लोज एट 71,593। द निफ्टी ड्रॉप 371 points or 1.64% to settle at 22,232. For more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: 8th October is the death anniversary of a great freedom fighter, revolutionary and crusader Jai Prakash Narayan, who was popularly called JP. It is said that nationalist leader Maulana Abul Kalam Azad's call to lift up to the sky

0: आती है सुबह।
1: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए अनुमति परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
2: नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब

0: हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा जारी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनर्जीवन पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए CR पाटिल ने कहा कि नदी पुनर्जीवन के लिए प्रदूषण नियंत्रण से परे जाकर जल उपलब्धता, पारिस्थितिकी स्वास्थ्य, भूजल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और सामुदायिक भागीदारी को सहमति करने पर एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11/2008 के मुंबई और पहलगाम आतंकी हमले को नहीं भूली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। आर्किटेक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला और थरुण मन्नेपल्ली को पुरुष सिंगल्स में हार का सामना करना पड़ा। पारादीप तट पर सरेक्स 26 समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने आज पारदीपी तट के 12वें राष्ट्रीय सुरक्षा खोज और बचाव अभ्यास सरेक्स 26 का अवलोकन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has said the platform of Indian Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi highlighted that over the years, it has emerged as a platform showcasing India's progress and its aspirations. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Mr. Modi said, today 5G connectivity has reached every district in the country. He said that the government is now working to connect around 25 crore students through various digital and online education platforms.
0: 2022 में इसी मंथ से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बड़ी है।
3: Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav today said that a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Mr. Vaishnav was speaking to media after releasing the World Development Report 2026, The Promise of Artificial Intelligence. Mr. Vaishnav said the proposed consultation paper will focus on AI safety, cybersecurity, benefits and potential harms. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India recorded exports worth $863 billion last year and aims to export $1 trillion this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi. The summit will be held in Visakhapatnam on the 12th and 13th of the next month. Mr. Goyal said that the growth represents nearly 16% growth in a year, especially at a time when the global economy remains vulnerable to shocks, and global growth is expected to fall below 3%. He said that the Reserve Bank of India had once again raised its growth projections for the current year. He also expressed confidence that India would continue to grow at over 7% and remain the fastest growing large economy. India has accused Pakistan of double speak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pahalgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's first secretary, Raghu Puri, said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The nation is celebrating the 94th anniversary of the Indian Air Force today. Established on the 8th of October in 1932, this momentous occasion marked the beginning of a vision for air power that would shape the nation's defense for decades to come. Addressing the gathering at Hindon Air Force Base in Ghaziabad on the occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh recalled the Indian Air Force's combat operations during Operation Sindoor. He said the country saw firsthand the destructive power as well as the effective air defense operations of the Air Force during the operation. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points, or 1.44%, to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points, or 1.64%, to settle at 22,232. And that is the end of this news bulletin.

शाम के 5:10 और ये वक्त है ऑल इंडिया रेडियो के एफएम गोल्ड चैनल पर गाते गुनगुनाते का, गाते गुनगुनाते जिसे आज लेकर मैं हेमा आपके साथ हूँ।

0: 1987 में रिलीज्ड फिल्म मिस्टर इंडिया का ये गीत 80 के ब्लॉकबस्टर हिट्स में से एक रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और किशोरदा के साथ अलीशा चिनॉय की मत भरी आवाज। आज गाते गुनगुनाते में अलीशा चिनॉय के बारे में ही जानेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं।
1: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसे ही आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
2: पूजा,
3: अरे सुन क्यों नहीं रही?
4: मुझे इग्नोर कर रही हो।
5: ये बात अब सबको पता चल गई।
1: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
6: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज इबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक,

0: सेवी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेवी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेवी सारथी ऐप।
1: गाते गुनगुनाते प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि आज हम अलीशा चिनॉय की बात करेंगे, जिनकी मतभरी आवाज ने पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना परचम लहराया। अलीशा चिनॉय प्लेबैक सिंगर के अलावा एक पॉप सिंगर के रूप में भी बहुत ही ख्याति उन्हें मिली। उन्हें उनके म्यूजिक एल्बम मेड इन इंडिया और खासतौर पर आपको याद होगा उसका एक गीत था, एक दिल चाहिए बस मेड इन इंडिया, है ना? कौन नहीं जानता इस गीत को और कौन नहीं पहचानता इस गीत से अलीशा चिनॉय को। 1996 बिडू द्वारा संगीतबद्ध मेड इन इंडिया एल्बम अपने समय के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बम्स में से एक था और अलीशा चिनॉय को घर घर इस एल्बम के जरिए लोगों ने पहचाना। अलीशा चिनॉय को अंतर्राष्ट्रीय बिलबर्ड पुरस्कार मिला और इस एल्बम के लिए फ्रेडी मर्करी पुरस्कार भी। वैसे तो उन्होंने शुरुआती एल्बम्स गाकर की थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी लेकर आए। 80 के दशक में टार्जन, डांस डांस, कमांडो, मिस्टर इंडिया, त्रिदेव जैसी फिल्म्स में कई डिस्को हिट्स अलीशा चिनॉय ने दिए। 90 के दशक में भी राजा हिंदुस्तानी, कीमत और विजयपथ जैसी फिल्मों में सुपरहिट गीत गाए अलीशा चिनॉय ने।

0: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो।
1: इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गाते गुनगुनाते में हम बात कर रहे हैं मधुबनी आवाज की मलिका गायिका अलीशा चिनॉय की। 1985 में जिनका पहला प्राइवेट म्यूजिक एल्बम आया था, लेकिन पहचान 1995 में मिली मेड इन इंडिया से, जिसे लोग आज भी सुनते हैं, और कई हिट म्यूजिक एल्बम्स देकर वो कहलाई गई क्वीन ऑफ इंडी पॉप। तो क्वीन ऑफ

पॉप के नाम से मशहूर अलीशा चिनॉय ने हिंदी फिल्मी गीतों में भी अपना जलवा हमेशा कायम रखा। कजरारे कजरारे गीत तो कोई नहीं भूल सकता, इश्क दी गली विच नो एंट्री का क्या कहना। अब वक्त के साथ चाहे ये नाम आज थोड़ा धुंधला पड़ गया हो हमारी याद में, लेकिन इनके गाए जो सदाबहार गीत हैं उनकी चमक बिल्कुल भी फीकी नहीं पड़ी। और इसी गीत के साथ मैं हेमा अभी के लिए आपसे इजाजत लेती हूँ। आप सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: Murung of Suminagas are no different from other tribes. They play a key role in its economic, social, spiritual and political needs. Such needs require that the young be taught and trained within the village community.
1: So Sumis. जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: Smiths his own fertility.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान

0: 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषध कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The GST Council has removed power of arrest of tax officers and has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The decision was taken during the 57th meeting of the Council in New Delhi today. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or fails behind on payment will face recovery, interest and a proportionate penalty. Addressing media following the meeting this evening, Finance Minister Nirmala Sitharaman said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
3: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
2: Prime Minister Narendra Modi has said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today, emphasizing the critical importance of

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की ताकत केवल बड़ी कंपनियों से नहीं बनती, छोटे और मध्यम उद्यम भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये रोजगार देते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, निर्यात में योगदान करते हैं और नई तकनीक और नए कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। भारत में छोटे और मध्यम उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। छोटे और मध्यम उद्यमों को पहले से ही ऋण, प्रशिक्षण, तकनीक और बाजार से जुड़ी सहायता देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन कारोबार के एक स्तर तक पहुंचने के बाद उसे और बड़ा करने के लिए अलग तरह की पूंजी की जरूरत पड़ती है। SME ग्रोथ फंड इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश है। आज के कार्यक्रम में समझेंगे कि भारत का MSME क्षेत्र कितना बड़ा है, SME ग्रोथ फंड किस तरह काम करेगा और छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए इस तरह के विकास पूंजी फंड की जरूरत क्यों महसूस हुई। साथ ही जानेंगे कि MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की दूसरी योजनाएं

0: किस तरह काम कर रही हैं। श्रोताओं, भारत में एमएसएमई क्षेत्र बहुत बड़ा है और अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं कि भारत का एमएसएमई इकोसिस्टम कितना व्यापक है और एसएमई ग्रोथ फंड की जरूरत कैसे सामने आती है।
1: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में 31.1% विनिर्माण उत्पादन में 35.4% और निर्यात में 48.58% का योगदान देता है। देश में एमएसएमई क्षेत्र का औपचारिक आधार भी लगातार बढ़ रहा है। 6 अक्टूबर 2026 तक उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर करीब 9,78,00,000 एमएसएमई पंजीकरण दर्ज किए गए। इन पंजीकृत उद्यमों ने करीब 43,28,00,000 रोजगार के अवसरों की जानकारी दी है। इस पूरे क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। करीब 37.6% उद्यम महिला स्वामित्व वाले हैं। एमएसएमई क्षेत्र केवल एक तरह के कारोबार तक सीमित नहीं है। पंजीकृत उद्यमों में करीब 4,08,00,000 कारोबार व्यापार से जुड़े हैं। इसके बाद करीब 3,77,00,000 सेवा क्षेत्र और 1,93,00,000 विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े उद्यम हैं। यानी एमएसएमई क्षेत्र देश के व्यापार, सेवा और विनिर्माण तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब सवाल ये है कि इनमें से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अलग से विकास पूंजी की जरूरत क्यों है। भारत में किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम की श्रेणी में निवेश और सालाना कारोबार के आधार पर रखा जाता है। वर्ष 2025 से लागू नए मानकों के अनुसार छोटे उद्यम के लिए निवेश की सीमा 25 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपए तक है। मध्यम उद्यम के लिए निवेश की सीमा 125 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा 500 करोड़ रुपए तक है। इन उद्यम में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका कारोबार आगे तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन कारोबार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए केवल रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसा होना पर्याप्त नहीं होता। यहीं पर एसएमई ग्रोथ फंड की भूमिका सामने आती है। एसएमई ग्रोथ फंड के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता देगी। ये फंड सीधे छोटे और मध्यम उद्यमों में इक्विटी निवेश करेगा। इक्विटी निवेश का अर्थ है किसी कंपनी में पूंजी लगाकर उसके कारोबार में हिस्सेदारी लेना। इसमें पैसा देने वाला कंपनी के विकास में हिस्सेदार बनता है, इसलिए ये सामान्य कर्ज से अलग होता है जहां पैसा ब्याज के साथ वापस नहीं करना होता। इस तंत्र को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIF के रूप में स्थापित किया जाएगा। सरल भाषा में समझें तो AIF ऐसे निजी रूप से बनाया गया फंड है जिसमें निवेशकों से पैसा जुटाया जाता है और तय नीति के अनुसार अलग अलग कारोबार में निवेश किया जाता है। इसका एक बड़ा ध्यान विनिर्माण क्षेत्र पर होगा। फंड की बड़ी हिस्सेदारी छोटे और मध्यम विनिर्माण उद्योग को आगे बढ़ाने में लगाई जाएगी। इस पूंजी से कंपनियां नए और बेहतर तकनीक अपना सकती हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और निर्यात के लिए अपनी क्षमता मजबूत कर सकती हैं। फंड का ध्यान केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। औद्योगिक क्लस्टर वाले दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में काम करने वाले छोटे और मध्यम उद्यम भी इसके दायरे में आ सकते हैं। इससे उन क्षेत्रों में उद्योग का विस्तार हो सकता है जहां पहले से कारोबार और उत्पादन की गतिविधियां मौजूद हैं। इसके साथ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है और रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।
0: श्रोताओं, किसी उद्यम को पूंजी मिलना उसके विकास की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसका असली असर तब दिखाई देता है जब वे पूंजी उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने, कारोबार का विस्तार करने और रोजगार पैदा करने में बदलती है। एसएमई ग्रोथ फंड से भी यही उम्मीद है कि विकास की क्षमता रखने वाले उद्यमों को आगे बढ़ने का अवसर मिले और वे अपने क्षेत्र में मजबूत कंपनियों के रूप में उभर सकें। आइए अब समझते हैं कि इसका असर नवाचार, कारोबार के विस्तार और रोजगार पर कैसे पड़ सकता है और एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार की दूसरी सहायता व्यवस्थाएं इसके साथ किस तरह जुड़ती हैं।
1: एसएमई ग्रोथ फंड से मिलने वाली विकास पूंजी का असर केवल कंपनियों के आकार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका संबंध नई तकनीक, उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धा और रोजगार से भी है। जब किसी उद्यम को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए पूंजी मिलती है तो वे नई मशीनें लगा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकता है और नई तकनीक अपना सकता है। इससे उसके काम करने का तरीका बेहतर होगा और वे बाजार में अधिक मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में इसका असर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के रूप में दिखाई दे सकता है। किसी कंपनी के पास अधिक उत्पादन करने की क्षमता होगी तो वे नए बाजारों में पहुंच बनाने और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इस प्रक्रिया का असर रोजगार पर भी पड़ता है। जब कोई उद्यम अपनी उत्पादन क्षमता और कारोबार बढ़ाता है तो उसे अधिक लोगों की जरूरत होती है। इस तरह के कारोबार के विस्तार से रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं, लेकिन किसी छोटे या मध्यम उद्यम के विकास के लिए ऋण, कौशल, तकनीक, बाजार, खरीद के अवसर और कारोबार चलाने में दूसरी तरह की सहायता

0: भी जरूरत होती है। इसलिए एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार की सहायता व्यवस्था कई अलग अलग हिस्सों में काम करती है। वित्तीय सहायता की बात करें तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी CGTMSE छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को समर्थन देता है। इसका उद्देश्य ऐसे उद्यमों के लिए ऋण तक पहुँच को आसान बनाना है। रोजगार और नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम काम करता है। इसका जोर नए रोजगार के अवसर पैदा करने वाले उद्यमों को बढ़ावा देने पर है। वहीं पीएम विश्वकर्मा के जरिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ कई तरह की सहायता देने का प्रयास किया गया है। इससे उनके काम से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण, उपकरण और कारोबार से जुड़ा सहयोग शामिल है। कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में एमएसएमई स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम काम करते हैं। इनका उद्देश्य लोगों में कौशल और उद्यम शुरू करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। एमएसएमई के लिए तकनीक और उत्पादन की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। रेजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी RAMP कार्यक्रम एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देता है। इसी तरह जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना का जोर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद टूल रूम्स और टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी एमएसएमई को तकनीकी सुविधाओं और तकनीक से जुड़ी सहायता देने में भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई के लिए बाजार तक पहुंच भी उतनी जरूरी है। एमएसएमई संबंध और SC/ST हब जैसे प्रयास सरकारी खरीद और बाजार के अवसरों से जुड़ने में सहायता देने पर केंद्रित हैं। इस तरह देखा जाए तो एसएमई ग्रोथ फंड केवल एक वित्तीय योजना नहीं है, ये छोटे और मध्यम उद्यमों को विकास के अगले चरण तक पहुंचाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: श्रोताओं, छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाना केवल उनके कारोबार का विस्तार करना नहीं है, इसका मतलब है नई उत्पादन क्षमता, नए रोजगार, नई तकनीक और नए बाजारों के लिए रास्ते तैयार करना। एसएमई ग्रोथ फंड और एमएसएमई क्षेत्र के लिए चल रहे दूसरे प्रयास इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इनका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में उद्यमों की क्षमता को मजबूत करना और विकास के अवसरों को ज्यादा व्यापक बनाना है। यही प्रयास आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश के अपने उत्पादन और कारोबारी क्षमता को मजबूत करते हैं और विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में योगदान देते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक प्रीति श्रीवास्तव।

अभी आप सुन रहे थे विश्लेषण। अब आपको बता दें 6:30 पर आप सुन सकेंगे मार्केट मंत्र, 7 होंगे हिंदी में समाचार और 7:05 में होंगे अंग्रेजी में समाचार, और अब से कुछ ही देर में यानी 6:20 पर आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: निखिल और गौरा, आप दोनों को गुड इवनिंग।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ मैं गौरा।
0: थैंक यू निखिल एंड वंस अगेन सिद्धार्थ, वेलकम टू द प्रोग्राम। लिसनर्स, लेट्स बिगिन विद अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन अराउंड 1.5%। सेंसेक्स स्लंप्स ओवर 1000 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 22,250। जीएसटी काउंसिल रिमूव्स अरेस्ट पावर ऑफ टैक्स ऑफिसर्स। रेजेस थ्रेशहोल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम 1 crore टू 5 crore रुपीज। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज ओवर 4%।
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1.5% की गिरावट। सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़का। निफ्टी 22,250 के नीचे जाकर बंद हुआ। जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाई। मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित धनराशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए

0: Well, before we move into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज भी सुस्ती जारी रही। सेंसेक्स 1045 अंक यानी 1.44% गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक यानी 1.64% लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में और अधिक गिरावट देखी गई। मिड कैप सूचकांक 2.5% से ज्यादा जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 2.3% से अधिक नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points or 1.44% to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points or 1.64% to settle at 22,232. The broader market at the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 index lost over 2.5% and the small-cap 100 index declined more than 2.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। सबसे अधिक नुकसान वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 4.2% से ज्यादा, इंडिगो लगभग 3.4% और पावर ग्रिड लगभग 3.2% लुढ़क गए। इसके विपरीत टेक महिंद्रा में 0.4% से ज्यादा और एक्सिस बैंक तथा इन्फोसिस में 0.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
0: All 28 sectoral indices on the BSE succumbed to selling pressure. Among the top laggards, power plunged 3.5%, utilities fell 3.4%, and metal dropped more than 3.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,426 companies declined, 1,003 advanced, and 225 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज दो सवाल पूछने का मन हो रहा है आपसे। सबसे पहले एक तो 1000 अंक से अधिक की जो गिरावट हमने देखी सेंसेक्स में, बड़े कारण इनके पीछे क्या रहे, और दूसरा ये क्या यही वो समय है जब निवेशकों को अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए, या अभी भी समय है रुकने का, या नए निवेशकों को अपनी किस्मत आजमाने का समय है?
2: नहीं देखिए निखिल, एक तो आपका जो पहला सवाल कि बाजार आज 1100 पॉइंट गिरी और निफ्टी तकरीबन इस साल के सबसे लो स्तर पे आके लो पॉइंट पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कल और आज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कि बाजार में 1100 पॉइंट की गिरावट आए। लेकिन हाँ, शायद मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस है बाजार में वो कहीं ना कहीं अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जो अनिश्चितता है और सारी इसकी सबकी वजह एक अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है वो सर्टेन हो गई है। चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो, क्रूड ऑयल के प्राइजेस अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। पूरी दुनिया में अब जो है इंटरेस्ट रेट्स आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कल हमारे सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास की जो दर है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने का डर रहता है। हालांकि अभी भी हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देश हैं, जो विकास दर है हमारी अभी भी 7% है, कल RBI ने भी रिवाइज की है, अपवर्ड रिवाइज की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा है, महंगाई, तो वो ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार पे जो है अब हावी हो रहे हैं और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं इस तरह की गिरावट बाजार में। और जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या निवेशकों को इस समय घुसना चाहिए, उस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए हाँ, बाजार जब नीचे गिरती है तो शायद लोग उस समय लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा किसी भी निवेशक को, हालांकि मुझे लगता है अभी भी बाजार में डाउनसाइड है और इस तरह की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये जो कारण है अनिश्चितता के, ये कभी जो या काले बादल मैं कहूँ इस तरह के, और जो और खासकर ये सब बाहर में देश के बाहर से के कारण है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है ये अभी लंबे समय तक इस तरह की अनसर्टेनिटी दिखती है। ये जल्दी सोल्यूशन होगा ईरान या अमेरिका का जो युद्ध है, या यूक्रेन और रशिया में आप देखेंगे वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ गई है, तो मैं ये कहूँगा कि निवेशकों को बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, लेकिन मुझे लगता है हाँ बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के आप जरूर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी मान के चलें कि तुरंत पैसा नहीं बनेगा।
0: राइट, इनफैक्ट टेकिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यू नो सिद्धार्थ, व्हेन वी से दैट व्हेन एनी टाइम वी इन्वेस्ट इन अ फॉलिंग मार्केट, we think it's a falling market and it'll become a rising market. Actually, a falling market could fall further, could stay there.
2: Yeah,
0: takes time to become a... So I think anybody who's buying in a falling market should actually be there at least for a little longer period than one would, really expect markets to immediately rebound.
2: Absolutely, Gaurav, because if you look at certain stocks, they are almost at 52-week low now. A lot of them, almost on their one-year lows. But the chances of they dropping further is not ruled out. So that is why I said, first, invest in very, very small tranches, very, very, and be very carefully, choose your sectors, choose your stocks, and the gestation of a return or of getting a healthy return is definitely at least 2 to 3 year time period horizon you should have in mind. Plus also the levels going further down is not ruled out at all.
0: Right. So, we have global crude oil prices, they're rising. That's a concern. There's this prolonged tight monetary conditions and foreign fund outflows. Just help our listeners also understand when we talk of, tight monetary conditions. One is, of course, interest rates. Anything else?
2: See, basically, what happens is when the interest rates start going up, obviously, India was lucky, I would say, before the rates started going up, we went to the markets overseas and we were able to garner about $130 billion through FCNR deposits, which is a huge plus for us because we are net importers of energy.
0: Right.
2: And our energy bill, obviously, because of the high crude oil prices, is very high. And what happens in tight monetary conditions also is that people start pulling out from the equity markets because you get a good return in the bond markets and especially the US markets. Why FII is also exiting Indian markets? Because the US Treasury bonds are now almost at 5.5% and which are seen as most secure investments across the world. So I think that is what happens in the tight monetary market, and that is why we are also seeing an impact in the markets globally also.
1: Siddharth, jaisa bhi aapne FIIs ke bare mein zikr kiya, kya ye hai ki hamare jo domestic investors hain, DIIs hain, unhone market ko bhi sambhala hua aisi स्थिति में भी जब निफ्टी लगभग 15% नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी अपने 32 महीने के निचले स्तर तक पहुंच चुका है?
2: नहीं निखिल, देखिए, अगर ऐसा ना होता, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अब वो बहुत बड़े तादाद में बाजार में निवेश करते हैं, चाहे वो रिटेल के थ्रू आए या वो म्यूचुअल फंड रूट से आए, तो अब वो एक, और अभी तक ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है. थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लेवल्स में थोड़ा बहुत कमी आई है, हम अगर SIP के रूट में देखें, म्यूचुअल फंड में भी, लेकिन विच इज ऑल्सो वेरी वेरी मार्जिनल. तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण है जहां पे हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर या डोमेस्टिक कोई कारण हो बाजार के गिरने के. और जहां तक आपने FIIs की बात की, मैं दो बातें कहूंगा. देखिए, FIIs के पास का जो एक जो उनका इन्वेस्ट करने का जो लॉजिक होता है वो होता है प्रॉफिट इज देयर मोटिव. तो वो ऑब्वियसली उनको लगता है कि दूसरी बाजारों में ज्यादा में निवेश करके उनको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, तो वो इसलिए जा रहे हैं. दूसरा, जैसा अभी गौरव ने पहले पूछा भी और बात भी हुई इसकी, कि बॉन्ड मार्केट्स, दुनिया भर की बाजारों में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफी ऊपर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इक्विटी मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट की तरफ भी FIIs जा रहे हैं.
1: लार्ज कैप की हम बात करें, मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में भी गिरावट दिखी. हालांकि कल स्मॉल कैप में थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे थे, लेकिन आज वो अच्छा खासा गिर गया.
2: नहीं, मार्केट्स में जो गिरावट है वो, जैसा अभी आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑल राउंड है. मतलब इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप. तो देयर इज जनरल फॉल इन द मार्केट.
1: आगे बढ़ते हैं. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच में अपनी दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. परिचालन गतिविधियों से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 11% बढ़कर 73,188 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. TCS का वर्ष दर वर्ष समग्र कुल लाभ 15% की बढ़त के साथ 13,884 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है. इस अवसर पर कंपनी ने निवेशकों के लिए 15 रुपए प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है. वॉल स्ट्रीट में गिरावट के बाद आज एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम सूचकांक 3.5% गिर गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.6% से ज्यादा नीचे आ गया और जापान का निक्केई 225 1.4% से ज्यादा की सुस्ती के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजारों की बात करें तो जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 1% नीचे आकर कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का FTSE 100 0.4% के नुकसान में था. सिद्धार्थ, हमने देखा

0: खास तौर पे इनकम टैक्स से क्रेडिट की जब हम बात करते हैं?
1: नहीं देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा निखिल, कि उससे एक जो छोटा बिजनेसमैन है या एमएसएमई जो सेक्टर में जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। एक आज एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा जो फैसला जो जीएसटी काउंसिल में हुआ वो ये था कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जो या जो जीएसटी के दायरे में आने वाले तकरीबन 5 करोड़ का जिनका वो है टर्नओवर है, उनको जो है केवल सालाना एक बार जो है टैक्स जीएसटी का रिटर्न भरना होगा और उनके लिए क्वार्टरली उनको जीएसटी पेमेंट करना होगा। इस पर एक आज फैसला हो गया है काउंसिल में और एक ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है जो अगले 90 दिनों में इसके डिटेल्स वर्कआउट करेगी और उसको जो है अगली जो मीटिंग होगी काउंसिल में उसमें उसको लिया जाएगा।
2: राइट, सो सिद्धार्थ, आई नो एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स विद एनी गवर्नमेंट कंप्लायंस इज पीपल वरी अबाउट व्हाट्स द इफेक्ट इफ आई डोंट मैनेज, आई डोंट अंडरस्टैंड प्रोसिक्यूशन। Could you just actually, you know, thread out this word for us?
1: See, prosecution means you are then a criminal prosecution happens. So, as far as till today, as the rules stood, and GST officer could arrest you. Now, if and that is obviously it's not that something that was happening very regularly. But yes, what we have also why we have taken away these powers, probably they are not required also. Why do we need it? Because we are not seeing that kind of people not paying taxes. Offenders to that large extent,
2: tax evasion to that large extent.
1: So based on the data, we are moving to a trust based, as I said earlier, to a trust based tax administration, and prosecution obviously leads to that kind of fear that you will be arrested, you will be taken to court, all those kind of things. So that creates a fear in the minds of the people who are into business. They want simpler rules which they can comply easily, and it also brings down the cost for a small taxpayer, if I would say like that. So, and similarly, I would say going forward, I would also say that there are a lot of measures being announced in terms of input tax credit, which is very critical for any business house. So, supposing you are a buyer, you have paid the input tax, or you want to take the credit, perhaps from the person from you bought, he may not have paid the tax. So, there also again a committee has been formed for how to make it easy for an honest taxpayer to claim input tax which he has paid.
2: Right. So that means if there's a legacy issue with the chain or with the thread, who is held actually? Is the actual person really being held
1: yes,
2: for that?
1: Yeah. And I would say another very big announcement, which again, I think what the Honorable Finance Minister today said is that they are going to introduce from the central government side for a certain turnover, above certain turnover, people doing businesses above certain turnover, a faceless assessment. So you do not need to go person representative does not need to go to any tax office or a tax appear before a tax official. They would introduce a faceless assessment, as is being done very successfully on the income tax side, already being done in the customs side. So I think this again is
2: that's a huge move.
1: Yeah, I think probably it's a very, very big announcement and would go a long way to, because there are a lot of always we have grievances that people are harassed, all those kind of things. So I think we are moving towards that, and GST almost now 10 years. So I think this is today's meeting, I think, has moved. It's a big leap forward in terms of easing the processes, simplifying the rules.
2: Right.
0: Siddharth, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, आपसे पूछना भी चाहूंगा कि ये जो फैसले लिए गए हैं तो ये क्या जीएसटी से जुड़े पुराने विवाद और लंबित मामले चले आ रहे हैं उनको तेजी से निपटाने की दिशा में किए गए प्रयास हैं?
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि निखिल आपने अगर अभी जैसा हमने सुना भी, वित्त मंत्री जी ने बोला कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं जहां पे टैक्स पेमेंट जो नॉन टैक्स जो जहां पे टैक्स नहीं दिया गया है, 10,000 रुपए तक के नोटिस दी गई है, जहां पे डिफॉल्ट जो है 10,000 रुपए तक का है, तो उन वो नोटिसेस भी विड्रॉ कर ली जाएंगी। और बिल्कुल, जब अगर प्रोसिक्यूशन की लिमिट बढ़ेगी या 10,000 रुपए तक आपको अभी तुरंत नोटिस इशू हो जाती थी अगर उसके, तो वो उन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो है एक तो टैक्स ऑफिशियल का भी काम घटेगा, क्योंकि वो भी ज्यादा फोकस कर पाएंगे कि जहां एरियाज जहां पे ज्यादा उनको लोगों को फायदा देने की जरूरत है, टैक्स पेयर सर्विसेज बेटर करने की जरूरत है, साथ साथ जो टैक्स पेयर है उसको भी कंप्लायंस बर्डन उसका कम होगा जब इस तरह की चीजें।
2: इन फैक्ट द मोर वन इज लिसनिंग टू यू आई कैन एक्चुअली फील अ लॉट ऑफ साइज ऑफ रिलीफ अक्रॉस, यू नो, सेइंग ओके वी हैव बीन होल्डिंग आवर ब्रेथ, दिस इज हाउ इट इज।
1: And I would also add, Gaurav, one thing more for our listeners, that companies which are now paying for health and life insurance plans for the companies,

0: for their employees, they can also claim input tax credit. Plus also the telecom towers and the pipelines outside their factories installation, for that also now input tax credit is being brought in.
1: Right.
2: Okay. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा. उन्होंने आज द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर वैश्विक प्रगति रिपोर्ट जारी की. श्री वैष्णव ने कहा कि आगामी परामर्श पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा, इसके लाभ तथा संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा. उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा. श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा. सिद्धार्थ, एक ग्राउंड लेवल पर अगर एआई के इस्तेमाल की हम बात करते हैं तो सरकार का ये प्रयास है कि आम लोगों तक भी एआई का इस्तेमाल पहुंचे और डीप फेक जैसी समस्याएं हैं उनसे भी बचने में मदद मिले. साथ ही जो इनका वैल्यूएबल एक इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए. तमाम कोशिशें इसी चीज को लेकर हैं.
0: इसी के लिए मुझे लगता है उन्होंने जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने जो कहा है कि कंसल्टेशन पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जो है वो फ्लोट किया जाएगा और पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा. और उसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, जो आपने बात बोली कि डीप फेक है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके जो नुकसान है उनको जो है लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और कैसे उसका हम जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर, चाहे वो कृषि हो या मौसम के बारे में किसानों तक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाना. और मुझे लगता है एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो अब हमारे आपके सबकी ज़िंदगी को रोज़ छुएगा और छू रहा है. तो इसमें अगर सरकार को बहुत तेजी से काम कर रही है तो ये मुझे लगता है इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन.
1: राइट. एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव एजुकेशन, वी हैव एक्चुअली लॉट ऑफ डेप्थ टू ट्रैवल, नॉट ओनली विड्थ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर.
0: या बिकॉज आई थिंक यस, दो वी हैव एजुकेशन, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर हैव नाउ एक्सेस टू एजुकेशन, स्टिल पीपल आर बीइंग यू नो चीटेड ऑन दीज लाइन. सो आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट स्टेप.
1: राइट. एब्सोल्युटली. इन आवर नेक्स्ट स्टोरी, India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin on September 30th and October 1st, 2026. So we are seeing, you know, whether it's the G20, whether it's BRICS, it's about, different countries coming together to work towards a common goal, and they're coming together not only on big mega issues, but even smaller little things. And I think that's where cohesion, you'd earlier used two words for the GST, which is, you know, alignment and synchronicity. I think it's working globally.
0: Yeah, I think, and obviously, though we have issue with United States as far as our trade pact, which is still pending, and as we have been hearing lately from the ministers that it's not in sight, but something like that, this where we are trying to, 15 countries trying to come together to address structural excess capacity, production, and curb non-market policies, I think it's a very positive step, especially in these times when there is uncertainty in the world.
1: Right.
2: नया मर्चेंट डिस्काउंट ट्रेड MDR फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा. इसके तहत ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI भुगतान पर कोई MDR नहीं लगेगा. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने कहा कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए इसमें कोई भी मासिक कोटा, भुगतान की सीमा या फिर अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा. उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को और किसी भी दुकानदार को बिना किसी सीमा या शुल्क के भुगतान कर सकते हैं.
1: Crude oil. Global crude oil prices rose sharply today amid persistent worries about supply from West Asia. Brent crude was trading 4.5% up at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading 4.5% higher at $92.25 per barrel at the time of writing this report. Your comments, Siddharth, on crude. Should we look at 100 as the oscillating figure and 2 and 4 from that?
0: Yeah, because except in very small, I think for a small brief period when we had seen a fall in crude oil prices, I think the prices have been hovering around $100 today. The world over, I think, because after around $104 per barrel, I think that is what is shaking the markets all across the globe. So I think this is the new normal. And also another challenge

0: challenge is going to be the supplies. Because of the uncertainty, the attacks happening, and supply constraints still persisting in the Strait of Hormuz. So I think, and this is single biggest reason for price rise, inflation. Rising.
1: So it's interesting, you know, when crude oil prices rise, the sentiment goes, and, you know, we can see markets responding and people tightening their fiscal and their fiscal and monetary policies. But also, when crude oil prices fall, the result is not so fast to see.
0: Yes, I agree. And obviously, because you would have also suffered for a long time with these kind of high prices. If you look at India,
1: it takes time.
0: Yeah, if you look at a country like India, which imports almost 90% of its energy, we have, till now, the government of the day has absorbed most of the prices.
1: Right.
0: Price rise.
1: Right.
2: Aur aage badhte hain. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने का मूल्य मामूली गिरावट के साथ 1,47,646 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 0.7% लुढ़ककर 2,17,106 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई थी। सिद्धार्थ, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: निखिल और गौरा, आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस, benchmark domestic indices decline around 1.5%. Sensex slumps over 1,000 points. Nifty settles below 22,250. GST Council removes arrest powers of tax officers, raises threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. And global crude oil prices surge over 4%. That's all for today. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रिकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत की विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा

0: पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामूहिक भागीदारी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. GST Council has removed power of arrest of tax officers and the Council has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery, interest and proportionate penalty. Addressing media following the GST Council meeting in New Delhi this evening, Finance Minister said the Council recommended removing arrest powers under GST and raising the prosecution threshold. Finance Minister said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
1: Prime Minister Narendra Modi has said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Emphasizing the critical importance of telecom and digital technology, Mr. Modi stressed that phone and network security must remain a priority. He also highlighted the growing challenges of deepfakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
3: Deepfakes कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है ये भी हम देख रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं GSMA और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: Electronics and IT Minister Ashwin Vaishnav has said a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलुओं की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
2: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
1: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
2: जी
1: डॉक्टर पॉल, आप

0: से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
1: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया
0: जी
1: कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे। इसको बनाने का टाइम लगेगा,
0: बिल्कुल
1: 4-5 साल 3 साल लगते हैं बनाने में। इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीजों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन एट अ गुड बेंचमार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंचमार्क फॉर मेनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट विल एंड हैव चेंज्ड द ईज ऑफ लिविंग फॉर आवर फैमिलीज।
0: ओके,
1: तो उस बेंचमार्क से आपसे आगे बात बढ़ाते
0: जी, बिल्कुल। और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
2: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें घर में रहकर आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार है उसकी देखभाल करिए आप। तो आप, मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
0: एक होलिस्टिक
2: पूरा पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जो इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
2: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवर और होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है ये, हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये केवल स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा, सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
0: जी।
2: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है, वो घर है, इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे, अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके

0: सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है, वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखे कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको ये भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक
1: यानी काफी लेयर्ड टर्म है। जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या हैं सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
1: जी,
2: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गाँव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अच्छा पानी है और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास हैं कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा है, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे, दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो से पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
0: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में भी देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी नियार का, जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था, इकोनॉमिक्स में बोलते ना अपॉर्चुनिटी।

0: अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
1: बिल्कुल।
0: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं ये कहूंगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर।
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा। शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है।
2: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया उस घर की तो दशा उसी दिन बदल गई। अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इसका अंक, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था उस टाइम पे एवरी सेकेंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था एवरी सेकेंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ्स है ये, रिफ्लेक्ट कर आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप सोचो। आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसका स्केल देखिए। स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़, अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-6-7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, उतने बड़े हाउसहोल्ड्स में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट है पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
2: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
2: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
1: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
2: स्वच्छ हो भारत, गांव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जांपल पैदा किया है। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी,
2: ठीक है। आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल

0: पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाए, राज्यों ने भी दिखाए, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो एक सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
1: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है? और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में?
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहां बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में, राइट?
1: जी।
2: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें समझने के, हर बात के लिए हम सरकार को बोले कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती।
1: बिल्कुल
2: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा, सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती, सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती।
1: बिल्कुल,
2: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है, आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों
1: अलग-अलग नजरियों
2: दोनों के रिस्पांस में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी।
2: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं, फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के अब उसके देखियो बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो
1: जनता की कैटेगरी में जरूरत है,
2: तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
0: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहली जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
1: जी,
0: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग, 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
1: जी,
0: इतने लोग, और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
1: जी।
0: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बे बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है, 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डलनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इन परिवारों को
1: जी।
0: तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों की, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पर एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर आजकल। अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है, और उसमें मैं कहना चाहूँगा मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
2: जी,
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो, उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसे ही एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है और लाइफ बचाता है।

0: बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी,
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है 6000 की पॉपुलेशन के लिए, उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब की वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं, या पिछली बार आपने देखा मेरा डायबिटीज मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए, वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
1: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
2: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है, जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है, तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव है। इसमें ये भी आम आदमी है
1: जी।
2: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। तो आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व ये है
1: जी।
2: और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
2: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसका कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
1: जी।
2: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
1: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग

द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

अभी आपने सुना जन सेवा से देश सेवा का एपिसोड 22। आपको बता दें 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, 8:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 8:10 पर मैं लेकर आऊंगी मधुरिमा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं आप। 7:45 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रावास और सुरक्षा से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। मोजाम्बिक के परिवहन मंत्री जाओ जॉर्ज मातलोम्बे ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम अकादमी का दौरा कर दिल्ली मेट्रो द्वारा संचालित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहलों की जानकारी ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस कर्मी द्वारा 3 महिला पत्रकारों के साथ यौन उत्पीड़न की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा, सरकार का उद्देश्य युवाओं के लिए जमीनी स्तर पर खेल के अधिक अवसर उपलब्ध कराना। और राजघाट पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर बसों और भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध आज रात 10 बजे तक लागू रहेगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रावास और सुरक्षा से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस समिति का उद्देश्य दिल्ली में पेइंग गेस्ट पीजी आवासों और छात्रावासों के लिए व्यापक, सुरक्षित और प्रभावी नियामक व्यवस्था तैयार करना है। बैठक में छात्रों की सुरक्षा संबंधी उपायों को तत्काल लागू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान छात्रों के रहने के स्थान और उनके आवास से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया जाने का निर्णय लिया गया, जिसका प्रारंभिक परीक्षण अगले 2 से 4 दिनों के अंदर किया जाएगा। इस पोर्टल में कमरों की संख्या, उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही एक उप समिति का भी गठन किया गया है, जो मास्टर प्लान और दिल्ली नगर नियम अधिनियम में आवश्यक प्रावधानों का अध्ययन करेगी। वहीं भविष्य की नियामक व्यवस्था में पीजी आवासों के प्रवेश, निकास और कॉमन एरिया में सीसीटीवी की अनिवार्यता का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही पीजी के लिए आवश्यक नियम और कानून लेकर आएगी, जिससे इस पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके। इस समिति की अगली बैठक दशहरा के बाद आयोजित की जाएगी, जिसमें उप समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। प्रादेशिक

0: तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोश टीम के राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल समुदायों तक सीधे अभियान पहुंचाकर भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोजाम्बिक के परिवहन मंत्री जाओ जॉर्ज मातलोम्बे ने आज दिल्ली मेट्रो रेल निगम अकादमी का दौरा किया। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने उन्हें दिल्ली मेट्रो द्वारा संचालित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहलों की जानकारी दी। श्री मातलोम्बे ने अकादमी में उपलब्ध आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। इसमें एक्सटेंडेड रियलिटी लैब, मेट्रो सिग्नलिंग मॉडल रूम, बोगी ब्रिक्स, न्यूमैटिक सिमुलेटर और RS2 ड्राइविंग सिमुलेटर शामिल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन स्थित दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का भी दौरा किया। नमो भारत स्टेशनों के माध्यम से कला, संस्कृति और विरासत से लोगों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत नमो भारत स्टेशन प्रदर्शनियों, साहित्यिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक आयोजन द्वारा लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव कराने और उनसे जोड़ने के अवसर प्रदान करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस कर्मी द्वारा 3 महिला पत्रकारों के साथ यौन उत्पीड़न की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है तो ये मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली जिला पुलिस को कथित घटनाओं के बारे में शिकायतें मिली थी जिन्हें जांच के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया था। खादी महोत्सव 2026 के अंतर्गत आज दिल्ली हाट INA में विशेष खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में कुल 115 स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें 48 स्टॉल खादी के हैं जबकि शेष स्टॉल ग्रामोद्योग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़े उद्यमियों और कारीगरों के हैं। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन KVIC अध्यक्ष मनोज गोयल ने किया। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से देश में स्वदेशी आंदोलन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं।
2: खादी सेवा संकल्प इस अभियान के माध्यम से हम देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के आंदोलन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 12-13 साल में पूरे देश में रोजगार का एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है। हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, ट्रेनिंग के बाद आधुनिक टूल, उनको मार्केट, इस तरह से उनको लोन लेना हो और लोन में सरकार सब्सिडी देने का काम भी लोगों को करती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
3: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25

0: 20 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने युवाओं को उभरते अवसरों के लिए तैयार करने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर जमा करने में विलंब या गलती होने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और दर संरचना तय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्लांट मंडला रंगोली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस प्लांट मंडला रंगोली के माध्यम से विकसित भारत 2047 और विकसित दिल्ली के संकल्प को एक साथ अभिव्यक्त किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: मंडला रंगोली भारतीय कला तथा संस्कृति की सुंदर और समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। इस परंपरा को इस बार जीवित पौधों के माध्यम से साकार किया गया है, जिससे कला और प्रकृति का सुंदर संगम देखने को मिलता है। मंडला का स्वरूप केंद्र से बाहर की ओर फैलते पैटर्न, संतुलन और सामंजस्य के माध्यम से जीवन की पूर्णता और आपसी जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंडला में लगाया गया प्रत्येक पौधा केवल कलात्मक रचना का हिस्सा नहीं, बल्कि पौधे लगाने, उनकी रक्षा और पोषण करने तथा दिल्ली के वन तथा शहरी हरित क्षेत्रों को संरक्षित और विकसित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जीवित पौधों से तैयार यह अनूठी रंगोली दिल्ली को हरित और सुंदर बनाने के साथ साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देती है। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA हॉकी स्पोर्ट्स कप का उद्घाटन किया। श्री संधू ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 16 विद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य युवाओं के लिए जमीनी स्तर पर खेल के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे युवा प्रतिभाएं स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। प्रसार भारती और इन डॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज किसान क्रिकेट लीग KCL के आयोजन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों से क्रिकेट खिलाड़ियों और गायकों की खोज करना है। लीग का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में होगा। इसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण अगले 2 से 3 सप्ताह में शुरू होगा। क्रिकेट लीग 15 ओवर के प्रारूप में खेली जाएगी, जहां पहले सत्र में कुल 45 मुकाबले होंगे, जिसमें देश भर से 7 टीम, 140 खिलाड़ी और 30 गायक शामिल होंगे। राजघाट पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख मार्गों पर बसों और भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आज रात 10 बजे तक लागू रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार इन वाहनों को NS मार्ग और लाल किले की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली गेट की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा प्रतिबंधित रहेगी। वहीं शांतिवन चौक से रिंग रोड और राजघाट की ओर जाने वाले मार्ग पर भी भारी वाहनों और बसों की आवाजाही पर रोक रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रावास और सुरक्षा से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। मोजाम्बिक के परिवहन मंत्री जाओ जॉर्ज मातलोम्बे ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम अकादमी का दौरा कर दिल्ली मेट्रो द्वारा संचालित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहलों की जानकारी ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस कर्मी द्वारा 3 महिला पत्रकारों के साथ यौन उत्पीड़न की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
4: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
5: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
3: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
4: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद में मुकदमा चलाने की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
9: The council recommended removing arrest powers under GST.
10: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
9: From 25,000 to rupees 10,000.
8: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। अब 10,000 रुपए की मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे और 10,000 रुपए से कम के लंबित नोटिस को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि इस

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: है कृष्ण की चंचलता, गोपियों की नटखट शिकायत और कथक की मोहक अदाएं। फिल्म है मुगले आजम, आवाज है लता मंगेशकर की और उनके साथ हैं बाकी साथी और संगीत है नौशाद साहब का।

0: कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब बात राग खमाज की, जिसमें श्रृंगार है, कोमलता है और एक बेहद सुंदर चंचलता भी। और जब लता जी की आवाज में ये भाव उतरता है तो लगता है जैसे प्रेम ने शब्दों का सहारा छोड़कर आंखों से बोलना शुरू कर दिया हो। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ऐसा ही एक कोमल प्रेम और भक्ति रस युक्त गीत साल 1972 की फिल्म अमर प्रेम से। आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आर डी बर्मन का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे राम वचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने?
2: अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं।
3: सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अंतराल के बाद सुरों का सिलसिला जारी है, एक ऐसे राग के साथ जो भावों की अनेक परतों को अपने भीतर समेटे हुए है। राग है राग भैरवी। राग भैरवी के सुरों में कभी विरह की कसक है, कभी मन की उदासी, तो कभी भावों की ऐसी गहराई जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। इन्हें भावों को अपने अनोखे अंदाज में सामने लाता है फिल्म दिल ही तो है का गीत, जिसमें है मन्ना डे साहब की आवाज। आइए सुनते हैं ये यादगार रचना।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जापान में होने वाले एशियाई पैरा खेलों से पहले भारतीय दल को आज औपचारिक विदाई दी गई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल की नई जर्सी का अनावरण किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल रांची में खेला जाएगा और प्रसार भारती तथा इन डॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसान क्रिकेट लीग आयोजित करने की घोषणा की।

0: तो कार्यक्रम को आज शुरू किया जाए बैडमिंटन की खबर के साथ, जहां दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली को पुरुष सिंगल्स के अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स जोड़ी कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय का मुकाबला अब से कुछ देर में इंग्लैंड के ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स से होगा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने दूसरे राउंड ऑफ 16 मुकाबले में जापान के रिको गुंजी को 21-15 21-15 से हराया। मैच की शुरुआत से ही सिंधु ने दबाव बनाए रखा और दोनों ही सेट में गुंजी को वापसी का मौका ना देते हुए जीत दर्ज की। अब सिंधु का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रचनोक इंथानोन से होगा। सिंधु ने हाल ही में जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट जीता था। थारुण मन्नेपल्ली और तन्वी शर्मा के लिए ये निराशजनक रहा, जिन्हें सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस के क्रिस्टो प्रोपोव ने मन्नेपल्ली को 21-14 21-19 से हराया, जबकि रथ चानोक ने तन्वी को एक तरफा मुकाबलों में 21-18 21-7 से मात दी। पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत भी कनाडा के ब्रायन यांग से 21-15 15-21 13-21 से हार कर पहले ही दौर में टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इससे पहले HS प्रणय, उन्नति हुड्डा, अश्मिता चालिया और मल्लविका भंसौर भी शुरुआती दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। HS प्रणय को डेनमार्क एंडर्स एंटोनसेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं उन्नति चीन की हान कियान शी से हार गई, जबकि अश्मिता डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से कड़े 3 गेम के मुकाबले में हार गई। मालविका स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से सीधे गेम में हार गई। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो पीवी सिंधु ने अपने आगे की

0: आप पक्की कर ली है। और अब से कुछ देर बाद कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की पुरुष डबल्स जोड़ी भी अपना मुकाबला खेलेगी, जिनके सामने इंग्लैंड की ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स होंगे। तो देखना होगा कि क्या भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर पाती है या नहीं। और अब कार्यक्रम में बात जापान के आइची नगोया में होने वाले एशियाई पैरा खेलों की। इन खेलों से पहले आज भारतीय दल को औपचारिक विदाई दी गई। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित इस समारोह में भारतीय दल की नई जर्सी का अनावरण किया। श्री मांडविया ने चुनौतियों को पार करने वाले पैरा खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने जीवन की यात्रा पहले ही जीत ली है और अब इन्हें पदक की यात्रा जीतनी है।
1: हमारे पैरा एथलीट जापान में एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हमने उसका हौसला भी बढ़ाया, उसको प्रोत्साहित भी करा। और पैरा एथलीट वे युवा है जो अपने जीवन को तो जीत गया है, ये छोटी बात नहीं है। अपना परिवार का विश्वास जीतना, सभी चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए जाना, जीवन की यात्रा को तो आप जीते हैं, लेकिन आपको मेडल की यात्रा को भी फतेह करना है। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ।
0: समारोह में खेल मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी तमाम नीतियों द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: लास्ट एशियन गेम्स में हम 111 तक पहुँचे, हमें और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जज्बा चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हमारे देश के एथलीट को, चाहे वो पैरा एथलीट हो चाहे वो एथलीट हो, उसको संसाधन की कोई कमी नहीं है। सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, ओलंपिक्स एसोसिएशन की ओर से जो भी सहयोग की आवश्यकता हो उसको सहयोग उपलब्ध हो रहा है। आर्थिक रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, खेलो इंडिया एथलीट के रूप में, टॉप्स के एथलीट के रूप में सरकार आपके साथ खड़ी रहती है।
0: श्री मांडविया ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है और देश के युवा इसे विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी जब पोडियम पर खड़े होते हैं तो पूरे देश को खुशी होती है।
1: दुनिया का सबसे युवा देश आज हमारा भारत है। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को मेडल में कन्वर्ट करना, इनोवेशन में कन्वर्ट करना, सफलता में कन्वर्ट करना, सशक्तिकरण में कन्वर्ट करना, ये मोदी सरकार का मंत्र है। और होलिस्टिक अप्रोच के साथ मोदी जी आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़े, पहलू को टच करते हुए आज हमारा भारत बदल रहा है, नया भारत बन रहा है, विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे एथलीट जब पोडियम पर खड़े होते हैं, पोडियम को फिनिश करते हैं, दोस्तों सफलता हमारे नजदीक आती जा रही है।
0: तो भारतीय दल अब तैयार है इस चुनौती को पार करने के लिए। इस अवसर पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया, चेयरपर्सन पायल कनोडिया और मुख्य कोच सत्य नारायण समेत कई बड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। और भारतीय टीम के इस अभियान पर और अधिक जानकारी लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष भारत का जो ये अभियान है। पहले एशियन गेम्स समाप्त हो चुके हैं और अब बारी पैरा खिलाड़ियों की है कि वो किस तरह पोडियम पे कितना अधिक मौकों पर भारतीय तिरंगे को गुंजायमान करते हैं। तो कह सकते हैं कि भारत को अपने किन किन खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी और किस तरह की अभियान की उम्मीद है।
2: शक्ति, भारत का 121 सदस्यीय दल रवाना हो चुका है। 80 पुरुष खिलाड़ी और 41 महिला खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा 44 खिलाड़ी हैं। अगर बात करें किन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र, तो प्रमोद भगत और भाविना पटेल जो फ्लैग बेरर हैं इंडिया के, तो उन पर सबसे ज़्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि प्रमोद भगत एक बार पैरालंपिक्स में भी गोल्ड जीत चुके हैं और 4 गोल्ड और 2 एशियन गेम्स मेडल भी उनके नाम पे हैं। अगर सुमित अंटिल की बात करें तो 2 बार गोल्ड उन्होंने भी जीता है पैरालंपिक्स में। और अवनी लेखरा जो पहली भारतीय महिला बनी थी 2 गोल्ड जीतने वाली, तो उन पर भी काफ़ी निगाहें होंगी। साथ ही साथ शीतल देवी का भी प्रदर्शन जो है देखने लायक होगा कि किस तरीके से वो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी।
0: जी बिल्कुल, आपने काफ़ी बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों के नाम गिनाए जिनसे भारत को बिल्कुल उम्मीद होगी। और 18 अक्टूबर से ही आयोजन शुरू होगा, 24 तारीख तक चलेगा। जब 2024 के ओलंपिक्स खत्म हुए उसके बाद जब पैरालंपिक्स की बारी आई तो भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने वहां पे नए कीर्तिमान बनाए। और एक लगातार हमने क्रम देखा है जहां पे खेलों के आयोजन के बाद जब पैरा खेलों की बारी आती है तो भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं, नए कीर्तिमान बनाते हैं। हमने पैरालंपिक्स में देखा है, और अब इस बार कितनी उम्मीद होगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने एक तरफ 85 पदक जीत के अपना काम किया है, अब बारी पैरा खिलाड़ियों की है जो 100 के आंकड़े की उम्मीद

0: क्या इस बार पार होती भी नजर आएगी?
1: बिल्कुल शक्ति, भारतीय खिलाड़ियों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आपने जिक्र किया पैरा ओलंपिक्स का, तो मैं कहना चाहूंगा कि एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स 2023 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां भारतीय एशियन गेम्स में 106 मेडल जीते थे और पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल अपने नाम किए थे। तो पैरा एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा था, वहीं पैरालंपिक्स की भी आपने बात करी तो वो भी प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। इस बार 121 खिलाड़ी जो है पैरा एशियन गेम्स में जा रहे हैं, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि 100 मेडल का आंकड़ा जो एशियन गेम्स में पूरा नहीं हो पाया तो क्या पैरा एशियन गेम्स में हो पाएगा। सभी को यही उम्मीदें हैं।
0: जी बिल्कुल, लेकिन हम अभी जब श्री मनसुख मांडविया जी को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले बार हमने 111 पदक जीते थे, लेकिन इस बार क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि दल की संख्या भी अगर देखी जाए तो पिछले बार भारत ने एक बेहद बड़ा दल भेजा था, लेकिन इस बार उसकी तुलना में थोड़ी सी कटौती खिलाड़ियों में हुई है।
1: बिल्कुल शक्ति, पिछली बार भारत का जो दल था पैरा एशियन गेम्स में वो 303 सदस्यों का था, जहां भारत ने 111 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस बार वो दल सिर्फ 121 सदस्यों का है, जिसमें 80 पुरुष 41 महिलाएं खेलेंगी। और एथलेटिक्स से भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि एशियन गेम्स में भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा मेडल्स जो है एथलेटिक्स में ही जीते, तो 44 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे पैरा एशियन गेम्स में, और बहुत सारी उम्मीदों को लेकर भारत का जो है परचम लहराने का प्रयास करेंगे।
0: जी बिल्कुल, खिलाड़ियों से उम्मीद होगी कि इस तरह की एथलीट्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत के लिए एक पदकों की झड़ी लगाते हुए नजर आएंगे, जैसा हमने पिछले कई बड़े आयोजनों से, जिसमें पुराने पैरा एशियन गेम्स हों, पुराने पैरालंपिक्स हों, देखा है। इस बार भी भारतीय दल तैयार है जापान की इस चुनौती को एक बड़े कीर्तिमान के साथ समाप्त करने के लिए। और अब कार्यक्रम में बात क्रिकेट के मैदान की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। विशेष, भारत ने पहले मैच में एक शानदार जीत दर्ज की थी 8 विकेट से, और अब श्रृंखला के पहले मैच को जीत करके बढ़त जो है 1-0 की है। कल भारत के लिए कैसी स्थितियां होंगी रांची में और किन खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है?
1: शक्ति, भारतीय बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमें देखने को मिला कि बल्लेबाजी के दम पर एक तरफा मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया। लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ होगी, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ जब भारतीय गेंदबाजों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया तो 44 रन पर 3 विकेट झटक लिए थे, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने वापसी करते हुए स्कोर को 171 तक पहुंचा दिया। उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करी। हालांकि जब से श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी की कमान संभाली है तब से बल्लेबाजी के परफॉर्मेंस में उनका थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस पारी से उन्होंने बताया है अपने आलोचकों को कि उनकी क्या क्वालिटी है।
0: जी बिल्कुल, एक क्वालिटी खिलाड़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो क्लास और आक्रामकता का एक अनूठा समागम देखने को मिलता है उनकी बल्लेबाजी में। कल ऐसी भी उम्मीदें होंगी कि वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। वैभव या फिर लोकल बॉय शान किशन, क्या उम्मीदें होंगी इन दो खिलाड़ियों से? खासकर
1: शक्ति, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और ईशान किशन की फॉर्म की अगर बात करें तो पिछले 1-2 सालों से उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेकर उसके बाद IPL में उनका परफॉर्मेंस, T20 विश्व कप जिताना भारत को और अहम मौकों पर परफॉर्म करना, ये ईशान किशन की पहचान बन चुकी है। वहीं युवा वैभव सूर्यवंशी ने भी U19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था भारत के लिए, और अब वो अपने मौके तलाश रहे हैं टीम में। क्या टीम कुछ अलग कॉम्बिनेशन करते हुए वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकती है? यदि देती है तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी प्रेशर में परफॉर्म करते हैं।
0: जी बिल्कुल, देखना होगा कि किस तरह से अपने आप को एक मैच्योर खिलाड़ी की तरह स्थापित करने का काम करते हैं। इस समय एक और अपडेट आया क्रिकेट के मैदान से, जहां श्रीलंका के टेस्ट कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने आज टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने कुसल मेंडिस को उनकी जगह पे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। प्रसार भारती और इन डॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज किसान क्रिकेट लीग KCL के आयोजन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों से क्रिकेट खिलाड़ियों और गायकों की खोज करना है। लीग के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लीग का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में होगा और इसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण अगले 2-3 सप्ताह में शुरू हो जाएगा।
2: किसान क्रिकेट लीग इज नेशन वाइड क्रिकेट लीग फोकस्ड ऑन ओनली द रूरल पीपल और यंगस्टर्स हु हैव क्रिकेट एज देयर करियर चॉइस. सो वी विल बी डूइंग अ नेशन वाइड टैलेंट हंट इन विच वी विल बी इनवाइटिंग मोर देन 1 lakh प्लेयर्स हु विल बी देन एनालाइज्ड बाय आवर कोचेस. दे विल बी ब्रॉट टू द फिजिकल ट्रायल्स एंड देन 140 प्लेयर्स विल बी चोजन आउट ऑफ. ईच प्लेयर विल बी प्रोवाइडेड इनिशियल पैकेज ऑफ 5 lakh रुपीज फॉर द लीग.
0: तो एक और मंच क्रिकेट का तैयार होता हुआ, खासकर इस बार फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों पर, रूरल एरिया पर. 15 ओवर का फॉर्मेट होगा, वाइड बॉल क्रिकेट होगी, जहां पहले सत्र में 45 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें देश भर से 60 टीमें, 140 खिलाड़ी और 30 गायक शामिल होंगे. श्री पांडे ने कहा कि ये पहल दर्शकों को मुफ्त और पारिवारिक मनोरंजन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
2: I think it is one of the progressive step in the right direction because being a public service broadcaster, Prasar Bharati caters people. One, it comes free of cost, so you don't have to take any subscription to watch live matches. That is a very big thing.
0: तो एक अनूठा संगम जहां मनोरंजन और क्रिकेट एक साथ देखने को मिलेगा. और अब चलते चलते रुक कर लेते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी का आयोजन जलंधर और मोहाली में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा. इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को 6 टीमों के टूर्नामेंट में स्थान दिया गया है. इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और अब बांग्लादेश की टीम भाग लेगी. पंजाब में लगभग 2 दशक बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की वापसी होने जा रही है. और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं. तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए. नमस्कार.
3: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया. अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई. कर दरों में कोई बदलाव नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक. डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी. 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की. कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा. और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची. वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है.
4: The council recommended removing arrest powers under GST.
5: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है.
4: From 25,000 to ₹10,000.
3: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है.
4: GST Council today has recommended.
5: GST परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है. 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है.
4: Pending notices below the said threshold.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है. श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
6: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।

0: पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
3: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी

0: देखने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
1: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
2: आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बन करके देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
3: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
5: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में, लगभग सभी ब्लॉक्स में, 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
0: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुर्गन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु

0: और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines: GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
2: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
1: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards for notices and proceedings.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
1: Ms. Sitharaman said the council has also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today.
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.

0: कंट्री वाइड। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर नीना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीना, बचपन में शरीर और मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और बचपन ही वो समय होता है जहां पर यदि किसी बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो उसकी शारीरिक वृद्धि, सीखने की क्षमता और समग्र विकास प्रभावित हो सकता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं बल्कि हर एक बच्चे को भोजन में अलग अलग पोषक तत्वों का संतुलन मिलना जरूरी है, जैसे कि प्रोटीन है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज पदार्थ, पर्याप्त ऊर्जा और स्वच्छ पानी, ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो पोषण माह जो हम मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इस माध्यम से देश भर के लोगों तक पोषण को लेकर के किस तरह का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है?
2: धन्यवाद, ये एक बहुत अहम प्रश्न है। पोषण माह से हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो कि पोषण से जुड़े हैं, जिसमें कि लगभग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर इस महीने में पोषण के बारे में जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं और एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को इन्वॉल्व किया जाए। सो इस साल हमारे पोषण माह का जैसे उद्देश्य और थीम है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, और इसके अंतर्गत 5 थीम और सब थीम्स और इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि भोजन में विविधता और प्रोटीन की उत्तम और पर्याप्त मात्रा, जिसे डाइटरी डाइवर्सिटी एंड एडिक्वेट प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह फ्रेश कुक्ड हॉट मील्स जो आंगनवाड़ी में दिए जाते हैं, जो खाना ताजा बना हुआ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम कह रहे हैं हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सभी लोग कम्युनिटी में ओनरशिप लें और अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी आंगनवाड़ी में जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो करें। और फिर न्यूट्रिशन फॉर एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण और उनके साथ खेल के थ्रू अर्ली स्टिमुलेशन, जिससे कि उनका ना सिर्फ पोषण पर मानसिक विकास और ओवरऑल विकास पे भी काम किया जा सके। और लास्ट इस बार का थीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक महीना लगकर चाहते हैं कि इन्हीं सभी विषयों पर सभी के पास जानकारी जाए और सभी लोग हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी का थीम समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें भाग लें।
1: डॉक्टर नीना, जैसा कि आपने जिक्र किया अकाउंटेबिलिटी का, जाहिर से बात है सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, तो सरकार ने अपनी तरफ से पोषण अभियान शुरू किया जिसका कि उद्देश्य ये था कि अलग अलग विभागों और योजनाओं को साथ लाकर पोषण परिणामों में सुधार किया जाए और पोषण को जन आंदोलन बनाया जाए। तो सरकार ने पोषण अभियान से लेकर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तक की कई महत्वपूर्ण पहल की है, तो इन योजनाओं के माध्यम से देश में जो भी पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें आम लोगों की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है?
2: हम लोगों की जिम्मेदारी जो हमारे थीम्स हैं उन्हीं में है, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल करना है, उनकी पोषण को सुनिश्चित करना है, उसमें उनके पति का, उनकी सास का, एक बहुत परिवारजनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर साथ ही साथ जो सभी सेवाएं सरकार के अलग अलग विभागों से और मंत्रालयों से दी जाती

0: हैं बच्चों के लिए और माताओं के लिए, उनमें उनको रजिस्टर कराना, उनको हॉस्पिटल में उनकी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना है, उनको जो भी टीकाकरण है वो कराना है, बच्चे की डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कराना है। सो जो ये सारा पोषण से रिलेटेड बिहेवियर्स हैं जिनको एक परिवार को अडॉप्ट करना है और माँ की और बच्चे की मदद करनी है, जिससे कि जो भी जानकारी उन्हें दी जा रही है, जो भी स्कीम्स उनके लिए हैं, उनको परिवार के जन और समुदाय के जन मिलकर पूरी तरह से अपनाने में और इम्प्लीमेंट करने में मदद करें, और जो भी उनकी सेवाएं हैं उनको ठीक तरह से यूज भी करें और उनमें दिए गए संदेशों में अमल और पालन भी करें।
1: डॉक्टर नीना, आपने जिक्र किया गर्भवती महिलाओं का, तो ये आम व्यक्ति आम लोगों को अगर समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऐसा क्यों जरूरी है, खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है और इसका जो होने वाले बच्चे होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है।
0: ये बहुत ही अहम मुद्दा है न्यूट्रिशन के तहत और पोषण के तहत। हम पहले 1000 दिनों की बात करते हैं, वो 9 महीने प्रेगनेंसी के और उसके बाद पहले 2 साल बच्चे की विकास की हैं, इनको एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है और ये ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का हर तरफ से चहुमुखी विकास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हम अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं और वो एक बच्चा सिंगल सेल से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, सभी काम चाहे वो छोटे स्तर पर देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी ब्रेन की खास करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो इसी 9 महीने में होती है और डिलीवरी के बाद भी जो ये पहले 2 वर्ष हैं सबसे ज्यादा गति से विकास होता है पूरी लाइफ में। उसके बाद सिर्फ एडोलेसेंस किशोरावस्था में ही इतनी तेजी से विकास होता है, वो भी इससे शायद थोड़ा कम होगा जो। तो ये जो एक गोल्डन पीरियड है जिसमें बच्चे की सभी चहुमुखी जिसे कहते हैं विकास हो रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसकी कॉग्निटिव मानसिक ग्रोथ हो रही है, उसकी सोशल ग्रोथ हो रही है, तो इस पीरियड में अगर न्यूट्रिशन में कोई भी कमी रह जाती है तो उसका असर पूरी लाइफ लॉन्ग बच्चे के ऊपर रहता है। और कई कुपोषण हैं जैसे कि स्टंटिंग जिसे हम नाटापन कहते हैं, जिसमें बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड मतलब पूरे 1000 दिन में उसको खाना ठीक से नहीं मिला है, तो वो एक क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन हो गया। तो उसका इफेक्ट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तब भी देखा जाता है उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनका स्कूल पूरा कर पाने पर और इवन जब वो बड़े होकर कमाना चाहते हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये गोल्डन पीरियड है बच्चे के विकास के लिए और हमारे लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जो हम संपूर्ण न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट अगर इस समय देते हैं तो हमें मैक्सिमम जैसे कहते हैं रिटर्न्स वो मिलते हैं।
1: डॉक्टर नीना, हम लगातार पोषण की बात कर रहे हैं और सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। सरकार ने मोटे अनाज का भी लाभ आम जन तक पहुंचाने की बात कही है जिसके लिए तमाम प्रयास किए गए, हम उसे श्री अन्न भी कहते हैं। तो देश के हर एक परिवार तक यदि इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाए कि पोषण का एक बड़ा हिस्सा हमें मोटे अनाज से प्राप्त हो सकता है, तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से इसका लाभ उठाया जा सकता है।
0: श्री अन्न जिसे आज हम मोटा अनाज कहते हैं वो हमेशा से हमारी पारंपरिक खाने पीन का हिस्सा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खासकर से हमारी जो डाइट है उसमें वीट और राइस गेहूं और चावल का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, ज्यादा इनटेक बढ़ गया है। मगर जो मोटा अनाज है वो एक फाइबर में रिच है, विटामिन और मिनरल्स में रिच है। उसको अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ फॉर इंडियंस जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR के तहत जारी की जाती हैं, उसमें कहा गया है कि जो आप सारा अनाज खा रहे हैं उसका 20% हिस्सा अगर मोटे अनाज से आए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमारे को फाइबर देगा, वो हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल देगा, वो हमारी ब्लड ग्लूकोज को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकेगा। आजकल हम सिर्फ कुपोषण में कम न्यूट्रिशन से ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम ओवर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कि उससे रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और ये सभी मोटे अनाज आसानी से मिल जाते हैं अगर हम देखेंगे तो, हमारी एक पारंपरिक जो डाइट है उसका वो हिस्सा रहे हैं, उनको अगर हम अपने पूरा दिन में कम से कम एक मील में अगर इंक्लूड करेंगे तो उसका हमें काफी लाभ मिल सकता है।
1: डॉक्टर नीना, हम पोषण और जन भागीदारी की बात कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या हमने देखी है एनीमिया की, यानी कि खून की कमी भी देश में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात हो, किशोरियों की बात हो, या फिर छोटी बच्चियों की बात हो, या बच्चों की बात हो, तो एनीमिया की रोकथाम

0: आम के लिए सही खान पान की क्या भूमिका है, और जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम लोग या कम से कम बच्चियां या कम से कम महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हों।
1: ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए अनीमिया की, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी, जिसे कहते हैं हम आम भाषा में, और या हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। और इसमें खान पान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं वो दो पार्ट में बनता है। एक उसका पार्ट है ग्लोबिन, जो कि प्रोटीन होता है, और हीम जो कि जिसमें आयरन होता है। मगर इसके अलावा इसको बनाने में विटामिन B12, विटामिन सी, काफी विटामिन का भी रोल रहता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम डाइट खाएं उसमें विभिन्न तरह के खाने इंक्लूड किए जाएं, खासकर प्रोटीन क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बोला उसका आधा हिस्सा प्रोटीन से बनता है ग्लोबिन पार्ट। हम जो हमेशा से अनाज और दालों का मिश्रण खाते आए हैं, कम से कम उसको 4:1, 4 हिस्से अनाज में 1 हिस्सा दालों का या नट्स का, जो प्रोटीन रिच चीजों का होना चाहिए, उसको इंक्लूड करना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन की हमारा अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उससे रिलेटेड, उससे रिच बहुत ही लोकल फूड्स मिलते हैं हम अलग अलग जगह में, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको हमें अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना है। और
0: जी
1: उसके साथ विटामिन सी वाली चीजें, अगर हम उसमें नींबू निचोड़ सकें, हम दालों को अंकुरित करके खा सकते हैं, उसमें हम नींबू निचोड़ सकते हैं, और हमें खाने के आधे घंटे पहले और बाद में चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और हमें कीड़ों से बचने की दवाई जो होती है हर 6 महीने में बच्चों को देनी है। इसके अलावा सभी छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए, और जो महिलाएं 15 से 49 ईयर्स की एज में, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से IFA की टेबलेट्स दी जाती हैं, वो जिनको हर एक ग्रुप को, किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को रोज, किसी को हफ्ते में 2 बार खाना होता है। तो जैसा उनके लिए सुनिश्चित किया गया है उसको लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग एनीमिया को एक समस्या नहीं समझते, वो देख नहीं पाते हो शायद
0: जी
1: उसके कॉन्सिक्वेंसेस। गोली मिलने के बाद भी वो धरी रहती है और लोग खाते नहीं है, तो गोली का भी अपना महत्व है, और साथ में एक संपूर्ण आहार
0: जी
1: इन लोगों को और पूरी परिवार को भी खाना चाहिए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जन भागीदारी में जो परिवार के लोग हैं वो ये सुनिश्चित करें कि हमारी किशोरियां, हमारी बच्चियां, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं ये गोलियां जरूर लें, जिससे उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो।
0: डॉक्टर नीना, आज हम पोषण को केवल एक सरकारी योजना ना कह करके जन आंदोलन कहने की बात करते हैं कि ये जन आंदोलन है, जन भागीदारी है। परिवार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्कूल हो, पंचायत हो, या फिर स्थानीय समुदाय हो, तो इस अभियान में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आप ऐसा क्या कहना चाहेंगी कि सभी लोग मिलजुल करके इन समस्याओं से उबरने के लिए, हमारे बच्चों को उनसे उबारने के लिए प्रयास करने में और आगे आए?
1: हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, खाने की बहुत रिचनेस भी है, बहुत चीजें अवेलेबल है, और हम कश्मीर में रहते हैं कि हम गुजरात में रहते हैं, अलग अलग तरह के खाने ऐसे देश प्रदेशों में अवेलेबल हैं। और ये एक बहुत पर्सनल मैटर भी है कि हम जो खाएं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे सभी परिवार और परिवार के जो बड़े हैं और मुखिया हैं, वो खाना ऐसा सेलेक्ट करें जो कि पोषण के आधार पर सेलेक्ट करें, और उसमें संपूर्ण ऊर्जा भी मिले, प्रोटीन भी मिले, और सारे विटामिन और मिनरल मिले। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसको अगर हम समझें तो हमारी थाली जो होती है उसमें आधा सब्जी और फल से भरें, और बाकी आधे में हमें बाकी सभी चीजों, जिसमें से बाकी आधे का भी 1/3 अनाज हो सकता है, मगर उसके अलावा प्रोटीन, थोड़े नट्स, थोड़ी, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड, थोड़ा ऑयल, चीनी और दूध, और दूध से बनी चीजें ये लेनी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है जान पाना, क्योंकि हम देख सकते हैं। और इस जन भागीदारी को कराने के लिए हर एक परिवार को ये देखना है कि उनके परिवार में इस तरह का खाना बन रहा है। बहुत ज्यादा वसा युक्त, सॉल्ट युक्त और शुगर युक्त, जो आजकल बहुत प्रचलन हो गया है रेडी टू ईट फूड्स का, और बहुत उसका, उनका हमें कम करके, बल्कि हमें अपने पारंपरिक खाने पे, जिनको हम भूलते जा रहे हैं, जैसे मोटा अनाज की भी बात है, तो इन्हीं डाइटरी प्रैक्टिसेस और इन्हीं चीजों को वापस सम्मिलित करें। खासकर गर्भावस्था और धात्री महिलाएं हैं या किशोरियां हैं या छोटे बच्चे हैं उनके खाने पे और अधिक ध्यान दें और सभी मिलकर ही इस समस्या का तभी समाधान हो सकता है। हर परिवार को इसको सुनिश्चित करना है और अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पे करना है जो कि बिल्कुल संभव है।
0: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि तकनीक के इस्तेमाल से आज के समय में पोषण सेवाओं की निगरानी और भी बेहतर हुई है। आज हमारे पास पोषण ट्रैकर है।

0: जो बच्चों की वृद्धि, पोषण सेवाओं और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच की निगरानी करने में मदद कर रहा है। डॉक्टर नीना, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पोषण माह से जनभागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to rupees 10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातित जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बेहद आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने के उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्लसन को साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरुगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। पीवी सिंधु आर्केटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Indian men singles players. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया, कहा पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन देने को छिपा नहीं सकता। इटली की संसद ने देश की चुनाव प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दी। कनाडा की कवियत्री एनी कार्सन को शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसी और नवोन्मेषी कार्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
2: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 से 12 वर्षों में मोबाइल फोन केवल आधुनिक संचार का माध्यम ही नहीं बना, बल्कि सुशासन का एक महत्वपूर्ण साधन भी बना है। भारत और रूस ने आज रक्षा क्षेत्र में भारत रूस सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए मौजूदा सैन्य तकनीकी सहयोग और सह उत्पादन तथा सह विकास पहलों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की। सैन्य तकनीकी सहयोग और रक्षा उद्योग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 24वीं कार्य समूह की बैठक के उद्घाटन सत्र का आयोजन आज नई दिल्ली में किया गया। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9 सितंबर 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध

0: घराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत और लाइबेरिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेयर्स S4 के सह अध्यक्ष के तौर पर जहाजों और नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों तथा काला सागर में पिछले कुछ दिनों में व्यावसायिक जहाजों और नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि समुद्री व्यापार में बाधा डालने वाली और निर्दोष लोगों की जान लेने वाली ये हरकतें किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इटली की संसद ने आज देश की चुनावी प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दे दी है। इससे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत मिली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से इटली की राजनीतिक प्रणाली को मजबूत करने और प्रधानमंत्री मेलोनी के नेतृत्व वाले मध्य दक्षिणपंथी गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने इस गठबंधन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार होने का रिकॉर्ड बनाया था। सदन ने गुप्त मतदान में 227 वोटों के मुकाबले 164 वोटों से इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे महीनों की गर्मागर्म बहस के बाद इस कानून को अंतिम संसदीय मंजूरी मिल गई। इस सुधार में एक बड़ा बहुमत पुरस्कार शामिल है। इसके अंतर्गत चुनाव पूर्व विजयी गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में अतिरिक्त संसदीय सीटें दी जाएंगी, बशर्ते उसे कम से कम 42% राष्ट्रीय वोट प्राप्त हों। नए कानून के अंतर्गत इटली की मौजूदा मिश्रित चुनावी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसिक और नवोन्मेषी कार्य के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोल्म में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रूपये है। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका के अधिकारियों ने आज जारी किए गए नए अभियोग में यातना और अन्य अपराधों का आरोप लगाया है। इससे मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों से जूझ रहे इस सत्तावादी नेता पर दबाव और बढ़ गया है। मादुरो पर पहले अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश में शामिल होने का आरोप था। अब मादुरो तेल समृद्ध दक्षिण अमरीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने शासनकाल के दौरान मानवाधिकारों के हनन के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा कराकस स्थित घर से आधी रात को छापेमारी करके गिरफ्तार किए जाने के बाद मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस जनवरी की शुरुआत से न्यूयॉर्क की जेल में हैं। दोनों ने अपने और कई कथित सहसाजिशकर्ताओं के खिलाफ वर्षों पहले शुरू किए गए आपराधिक मामलों में खुद को निर्दोष बताया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरून मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डी फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन देने को छिपा नहीं सकता है। इटली की संसद ने देश की चुनावी प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दी। कनाडा की कवियत्री एनी कार्सन को शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसी और नवोन्मेषी कार्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।

ये खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से। इस गीत को गाया कविता कृष्णमूर्ति ने, संगीत से सजाया जतिन ललित ने और इस गीत को लिखा मचरू सुल्तानपुरी ने। ये जो गीत आपने सुना ये फिल्म खामोशी द म्यूजिकल जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई नाना पाटेकर, हेलन, मनीषा कोइराला और सलमान खान ने। आज भारतीय सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया जिनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका अभिनय हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगा। जी हाँ, नाना पाटेकर। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है हर श्रृंगार और मैं हूं आपके साथ ऋतिका।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सड़क फिल्म से आपने ये गीत सुना, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में, नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत।

तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended

0: रिमूविंग अरेस्ट पावर्स अंडर जीएसटी।
1: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
0: फ्रॉम 25,000 to 10,000।
2: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
2: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको कुंची को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media

0: साथ मैं गौरा।
1: थैंक यू निखिल एंड वंस अगेन सिद्धार्थ, वेलकम टू द प्रोग्राम। Listeners, let's begin with a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices decline around 1.5%. Sensex slumps over 1,000 points. Nifty settles below 22,250. GST Council removes arrest power of tax officers. Raises threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. And global crude oil prices surge over 4%.
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1.5% की गिरावट। सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़का। निफ्टी 22,250 के नीचे जाकर बंद हुआ। जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाई। मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित धनराशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल।

0: Well, before we move into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज भी सुस्ती जारी रही। सेंसेक्स 1045 अंक यानी 1.44% गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक यानी 1.64% लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में और अधिक गिरावट देखी गई। मिड कैप सूचकांक 2.5% से ज्यादा जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 2.3% से अधिक नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points or 1.44% to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points or 1.64% to settle at 22,232. The broader market at the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 index lost over 2.5% and the small-cap 100 index declined more than 2.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। सबसे अधिक नुकसान वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 4.2% से ज्यादा, इंडिगो लगभग 3.4% और पावर ग्रिड लगभग 3.2% लुढ़क गए। इसके विपरीत टेक महिंद्रा में 0.4% से ज्यादा और एक्सिस बैंक तथा इन्फोसिस में 0.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
0: All 28 sectoral indices on the BSE succumbed to selling pressure. Among the top laggards, power plunged 3.5%, utilities fell 3.4%, and metal dropped more than 3.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,426 companies declined, 1,003 advanced, and 225 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज दो सवाल पूछने का मन हो रहा है आपसे। सबसे पहले एक तो 1000 अंक से अधिक की जो गिरावट हमने देखी सेंसेक्स में, बड़े कारण इनके पीछे क्या रहे, और दूसरा ये क्या यही वो समय है जब निवेशकों को अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए, या अभी भी समय है रुकने का, या नए निवेशकों को अपनी किस्मत आजमाने का समय है?
2: नहीं देखिए निखिल, एक तो आपका जो पहला सवाल कि बाजार आज 1100 पॉइंट गिरी और निफ्टी तकरीबन इस साल के सबसे लो स्तर पे आके लो पॉइंट पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कल और आज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कि बाजार में 1100 पॉइंट की गिरावट आए। लेकिन हाँ, शायद मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस है बाजार में वो कहीं ना कहीं अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जो अनिश्चितता है और सारी इसकी सबकी वजह एक अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है वो सर्टेन हो गई है। चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो, क्रूड ऑयल के प्राइजेस अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। पूरी दुनिया में अब जो है इंटरेस्ट रेट्स आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कल हमारे सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास की जो दर है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने का डर रहता है। हालांकि अभी भी हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देश हैं, जो विकास दर है हमारी अभी भी 7% है। कल RBI ने भी रिवाइज़ की है, अपवर्ड रिवाइज़ की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा है, महंगाई, तो वो ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार पे जो है अब हावी हो रहे हैं, और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं इस तरह की गिरावट बाजार में। और

0: जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या निवेशकों को इस समय घुसना चाहिए, उस पर मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, हाँ, बाजार जब नीचे गिरती है तो शायद लोग उस समय लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा किसी भी निवेशक को, हालांकि मुझे लगता है अभी भी बाजार में डाउनसाइड है और इस तरह की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये जो कारण है अनिश्चितता के, ये कभी जो या काले बादल मैं कहूँ इस तरह के, और जो और खासकर ये सब बाहर में, देश के बाहर से के कारण है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है ये अभी लंबे समय तक इस तरह की अनसर्टिनिटी दिखती है, ये जल्दी सोल्यूशन होगा, ईरान या अमेरिका का जो युद्ध है या यूक्रेन और रशिया में आप देखेंगे वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। तो मैं ये कहूँगा कि निवेशकों को बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, लेकिन मुझे लगता है हाँ, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के आप ज़रूर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी मान के चले कि तुरंत पैसा नहीं बनेगा।
1: राइट, इनफैक्ट टेकिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यू नो सिद्धार्थ, व्हेन वी से दैट व्हेन एनी टाइम वी इन्वेस्ट इन अ फॉलिंग मार्केट, वी थिंक इट्स अ फॉलिंग मार्केट एंड इट विल बिकम अ राइजिंग मार्केट, एक्चुअली अ फॉलिंग मार्केट कुड फॉल फर्दर, कुड स्टे देयर, टेक्स टाइम टू बिकम अ, सो आई थिंक एनीबॉडी हु इज बाइंग इन अ फॉलिंग मार्केट शुड एक्चुअली बी देयर एटलीस्ट फॉर अ लिटिल लॉन्गर पीरियड then one would you know really expect markets to immediately rebound.
0: Absolutely, Gaurav, because if you look at certain stocks, they are almost at 52 week low now, lot of them almost in on their 1 year lows, but the chances of they dropping further is not ruled out. So that is why I said first invest in very very small tranches, very very, and be very carefully, choose your sectors, choose your stocks, and the gestation of return or of getting a healthy return is definitely at least 2 to 3 year time period horizon you should have in mind, plus also the levels going further down is not ruled out at all.
1: Right, so you know we have global crude oil prices, they're rising, that's a concern. There's this prolonged tight monetary conditions and foreign fund outflows. Just help our listeners also understand when we talk of, you know, tight monetary conditions. One is of course interest rates, anything else?
0: See, basically what happens is when the interest rates start going up, obviously India was lucky, I would say, before the rates started going up, we went to the markets overseas and we were able to garner about $130 billion through FCNR deposit, which is a huge plus for us because we are net importers of energy.
1: Right.
0: And our energy bill obviously because of the high crude oil prices is very high. And what happens in tight monetary conditions also is that people start pulling out from the equity markets because you get a good return in the bond markets and especially the US markets. Why FII is also exiting Indian markets? Because the US Treasury bonds are now almost at 5.5%, and which are seen as most secure investments across the world. So I think that is what happens in the tight monetary market, and that is why we are also seeing an impact in the markets globally also.
2: सिद्धार्थ, जैसा भी आपने FIIs के बारे में जिक्र किया, क्या ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, DIIs है, उन्होंने मार्केट को भी संभाला हुआ, ऐसी स्थिति में भी जब निफ्टी लगभग 15% नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी अपने 32 महीने के निचले स्तर तक पहुंच चुका है?
0: नहीं निखिल, देखिए, अगर ऐसा ना होता, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अब वो बहुत बड़े तादाद में बाजार में निवेश करते हैं, चाहे वो रिटेल के थ्रू आए या वो म्यूचुअल फंड रूट से आए, तो वो एक, और अभी तक ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लेवल्स में थोड़ा बहुत कमी आई है, हम अगर SIP के रूट में देखें, म्यूचुअल फंड में भी, लेकिन विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मार्जिनल। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण है जहाँ पे हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर या डोमेस्टिक कोई कारण हो बाजार के गिरने के। और जहाँ तक आपने FIIs की बात की, मैं दो बातें कहूँगा। देखिए, FIIs के पास का जो एक, जो उनका इन्वेस्ट करने का जो लॉजिक होता है, वो होता है प्रॉफिट इज देयर मोटिव। तो वो ऑब्वियसली, उनको लगता है कि दूसरी बाजारों में ज़्यादा में निवेश करके उनको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, तो वो इसलिए जा रहे हैं। दूसरा, जैसा अभी गौरव ने पहले पूछा भी और बात भी हुई इसकी, कि बॉन्ड मार्केट, दुनिया भर की बाजारों में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इक्विटी मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट की तरफ भी FIIs जा रहे हैं।
2: लार्ज कैप की हम बात करें, मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में भी गिरावट देखी, हालांकि कल स्मॉल कैप में थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे थे, लेकिन आज वो अच्छा खासा गिर गया।
0: नहीं, मार्केट्स में जो गिरावट है वो, जैसा अभी आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑल राउंड है, मतलब इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो देयर इज जनरल फॉल इन द मार्केट।
2: आगे बढ़ते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच में अपनी दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। परिचालन गतिविधियों से कंपनी का समेकित

0: राजस्व वार्षिक आधार पर 11% बढ़कर 73,188 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। टीसीएस का वर्ष दर वर्ष समग्र कुल लाभ 15% की बढ़त के साथ 13,884 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। इस अवसर पर कंपनी ने निवेशकों के लिए 15 रुपए प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है। आज एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 3.5% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.6% से ज्यादा नीचे आ गया और जापान का निक्केई 225 1.4% से ज्यादा की सुस्ती के साथ बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट आई। ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरे संसार का जो मार्केट है आज गिरावट के दौर से ही गुजर रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक एक अनिश्चितता है, क्रूड ऑयल उसका बड़ा कारण है। क्रूड ऑयल के जो भाव में तेजी है, साथ साथ जो बॉन्ड यील्ड्स हैं और जो महंगाई का प्रेशर बना हुआ है, तो सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक सभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको बाजार में दिख रहा है। और ये ऐसा हुआ जो आपने बोला कि हमने देखा कि साउथ कोरिया की मार्केट में भी गिरा, जबकि अगर आप देखेंगे कि जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स या कंपनीज, उनके जैसे सैमसंग में कंपनी का नाम भी लूंगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उसके बावजूद भी मार्केट में वहां गिरावट देखने को मिली।
2: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर स्टोरी, द जीएसटी काउंसिल हैज रिमूव्ड द पावर ऑफ अरेस्ट ऑफ टैक्स ऑफिसर्स एंड रेज्ड द थ्रेशोल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम 1 crore टू 5 crore रुपीज। द पनिशमेंट, वेदर अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट ऑफ बोथ, हैज बीन लेफ्ट टू जुडिशियल डिस्क्रेशन इन एवरी केस। अ टैक्स पेयर हू फाइल्स लेट, मेक्स अ मिस्टेक और फॉल्स बिहाइंड ऑन पेमेंट विल फेस रिकवरी, इंटरेस्ट एंड अ प्रोपोर्शनेट पेनल्टी। Addressing the media following the GST Council meeting in New Delhi this evening, the Finance Minister said the Council recommended removing arrest powers under GST and raising the prosecution threshold.
3: The Council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now, that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores. Anything below 5 crores, no prosecution. And reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000. Support for exports and small sellers.
2: The finance minister also said no rate changes have been made in the GST Council meeting and the rate structure is settled.
3: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
2: Seetharaman said the council has also taken a decision for smoother movement of goods. The council recommended that goods can be inspected, detained or seized only by the officer of the supplier state or the destination state. Goods can be intercepted only on specific intelligence and with the authorization of at least a joint commissioner level officer. So Siddharth, I think, GST is... it's a technical subject, but for our listeners, please help us understand the critical points that have been discussed and somewhere how the fear factor has been, mitigated and the compliance factor probably escalated.
1: Yeah, absolutely, Gaurav. And I would say today's meeting basically focused on the process reforms, the processes that a taxpayer or a person who's doing business faces each day. So they may be related to registration, refund, inputs. And I would say, as you said in the read out in the story also, I think one of the most important features or the announcements today was that arrest powers have been taken away from the GST officers. Plus, at the same time, they've also raised the prosecution limit from 1 crore to 5 crore. So two big announcements or two big, and I would say this is also moving towards a trust-based tax administration. More so, we are trying to have the trust or believe in the person who's doing business. We're trying to move from going after him or having those kind of draconian administrative rules. So, and another thing I would say is another thing which he said is again which brings in a kind of tax certainty is that now only once a year the GST rates would change, only once a year, that is April 1. So we are also trying to somewhere align our tax policy, our indirect tax policy, and with the direct tax policy, the income tax rates also, if they are changed, are also come into effect on April 1. So I think in a way we are trying to align both the, and also I would say simplifying the processes for the taxpayer, for the business community.
2: So alignment and simplification, I think these are two critical things.
0: Siddharth, ye jo do faisle liye gaye hain GST Council

0: की तरफ से। इसमें एक आम लिसनर के नजरिए से अगर समझने की कोशिश करें तो आम उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, और दूसरा छोटे व्यापारी और जो एमएसएमई में काम करते हैं उनके लिए इनमें क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं या उन पर कोई असर पड़ेगा, तमाम चीजें इसमें, खासतौर पर इनकम टैक्स से क्रेडिट एक्स की जब हम बात करते हैं।
1: नहीं देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा निखिल, कि उससे एक जो छोटा बिजनेसमैन है या एमएसएमई जो सेक्टर में जो लोग हैं उनको क्या फायदा होगा। एक आज एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा जो फैसला जो जीएसटी काउंसिल में हुआ वो ये था कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जो या जो जीएसटी के दायरे में आने वाले तकरीबन 5 करोड़ का जिनका वो है टर्नओवर है, उनको जो है केवल सालाना एक बार जो है टैक्स जीएसटी का रिटर्न भरना होगा और उनके लिए क्वार्टरली उनको जीएसटी पेमेंट करना होगा। इस पर एक आज फैसला हो गया है काउंसिल में और एक ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है जो अगले 90 दिनों में इसके डिटेल्स वर्कआउट करेगी और उसको जो है अगली जो मीटिंग होगी काउंसिल में उसमें उसको लिया जाएगा।
2: राइट, सो सिद्धार्थ, आई नो एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स विद एनी गवर्नमेंट कंप्लायंस इज पीपल वरी अबाउट व्हाट्स द इफेक्ट इफ आई डोंट मैनेज, आई डोंट अंडरस्टैंड प्रोसिक्यूशन। Could you just actually, you know, thread out this word for us?
1: See, prosecution means you are then a criminal prosecution happens. So, as far as till today, as the rules stood, and GST officer could arrest you. Now, if and that is obviously it's not that something that was happening very regularly. But yes, what we have also why we have taken away these powers, probably they are not required also. Why do we need it? Because we are not seeing that kind of people not paying taxes. Offenders to that large extent,
2: or evasion,
1: tax evasion to that large extent. So probably, and so based on that, based on the data, we are moving to a trust-based, as I said earlier, to a trust-based tax administration. And prosecution obviously leads to that kind of fear that you will be arrested, you will be taken to court. Then, all those kind of things. So that creates a fear in the minds of the people who are into business. They want simpler rules which they can comply easily, and it also brings down the cost for a small taxpayer, if I would say like that. So, and similarly, I would say going forward, I would also say that there are a lot of measures being announced in terms of input tax credit, which is very critical for any business house. So, supposing you are a buyer, you have bought you've paid your bill, you've paid the input tax, or you want to take the credit, perhaps from the person from you've bought, he may not have paid the tax. So, there also again a committee has been formed for how to go and make it easy for an honest taxpayer to claim input tax which he has paid.
2: Right. So that means if there's a legacy issue with the chain or with the thread, who is held actually? Is the actual person really being held
1: yes,
2: for that?
1: Yeah. And I would say another very big announcement, which again, I think what the Honorable Finance Minister today said is that they are going to introduce from the central government side for a certain turnover, above certain turnover, people doing businesses above certain turnover, a faceless assessment. So you do not need to go and, or your tax person representative does not need to go to any tax office or a tax appear before a tax official. They would introduce a faceless assessment, as is being done very successfully on the income tax side, already being done in the customs side. So I think this again is
2: that's a huge move.
1: Yeah, I think probably it's a very, very big announcement and would go a long way to, because there are a lot of always we have grievances that people are harassed, all those kind of things. So I think we are moving toward that, and GST almost now 10 years. So I think this is today's meeting, I think, has moved. It's a big leap forward in terms of easing the processes, simplifying the rules.
2: Right.
0: Siddhar, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, आपसे पूछना भी चाहूँगा कि ये जो फैसले लिए गए हैं तो ये क्या जीएसटी से जुड़े पुराने विवाद और लंबित मामले चले आ रहे हैं उनको तेजी से निपटाने की दिशा में किए गए प्रयास हैं?
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि निखिल आपने अगर अभी जैसा हमने सुना भी, वित्त मंत्री जी ने बोला कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं जहाँ पे टैक्स पेमेंट जो नॉन टैक्स जो जहाँ पे टैक्स नहीं दिया गया है, 10,000 रुपये तक के नोटिस दी गई है, जहां पे डिफॉल्ट जो है 10,000 रुपए तक का है, तो उन वो नोटिसेस भी विड्रॉ कर ली जाएंगी। और बिल्कुल, जब अगर प्रोसिक्यूशन की लिमिट बढ़ेगी या 10,000 रुपए तक आपको अभी तुरंत नोटिस इशू हो जाती थी अगर उसके, तो वो उन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो है एक तो टैक्स ऑफिशियल का भी काम घटेगा, क्योंकि वो भी ज्यादा फोकस कर पाएंगे कि जहां एरियाज जहां पे ज्यादा उनको लोगों को फायदा देने की जरूरत है, टैक्स पेयर सर्विसेज बेटर करने की जरूरत है, साथ साथ जो टैक्स पेयर है उसको भी कंप्लायंस बर्डन उसका कम होगा जब इस तरह की चीजें।
2: इनफैक्ट द मोर वन इज

0: listening to you, I can actually feel a lot of sighs of relief across, you know, saying, okay, we've been holding our breath. This is how it is. Yeah.
1: And I would also add, Gaurav, one thing more for our listeners, that companies which are now paying for health and life insurance plans for the companies, for their employees, they can also claim input tax credit. Plus also the telecom towers and the pipelines outside their factories installation, for that also now input tax credit is being brought in.
0: Right.
2: Okay. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा. उन्होंने आज द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर वैश्विक प्रगति रिपोर्ट जारी की. श्री वैष्णव ने कहा कि आगामी परामर्श पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा, इसके लाभ तथा संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा. उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा. श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा. सिद्धार्थ, एक ग्राउंड लेवल पर अगर एआई के इस्तेमाल की हम बात करते हैं, तो सरकार का ये प्रयास है कि आम लोगों तक भी एआई का इस्तेमाल पहुंचे और डीप फेक जैसी समस्याएं हैं उनसे भी बचने में मदद मिले. साथ ही जो इनका वैल्यूएबल एक इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए. तमाम कोशिशें इसी चीज को लेकर हैं.
1: इसी के लिए मुझे लगता है उन्होंने जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने जो कहा है कि कंसल्टेशन पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जो है वो फ्लोट किया जाएगा और पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा. और उसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, जो आपने बात बोली कि डीप फेक है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके जो नुकसान है उनको जो है लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. और कैसे उसका हम जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर, चाहे वो कृषि हो या मौसम के बारे में किसानों तक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाना. और मुझे लगता है एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो अब हमारे आपके सबकी ज़िंदगी को रोज़ छुएगा और छू रहा है. तो इसमें अगर सरकार को बहुत तेजी से काम कर रही है तो ये मुझे लगता है इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन.
0: राइट. एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव एजुकेशन, वी हैव एक्चुअली लॉट ऑफ डेप्थ टू ट्रैवल, नॉट ओनली विड्थ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर.
1: या बिकॉज आई थिंक यस, दो वी हैव एजुकेशन, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर हैव नाउ एक्सेस टू एजुकेशन, स्टिल पीपल आर बीइंग यू नो चीटेड ऑन दीज लाइन. सो आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट स्टेप.
0: राइट. एब्सोल्युटली. इन आवर नेक्स्ट स्टोरी, India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin on September 30th and October 1st, 2026. So we are seeing, you know, whether it's the G20, whether it's BRICS, it's about, different countries coming together to yeah. work towards a common goal. And they're coming together not only on big mega issues, but even smaller little things. And I think that's where cohesion, you'd earlier used two words for the GST, which is, you know, alignment and synchronicity, I think is working globally.
1: Yeah, I think, and obviously, though we have issue with United States as far as our trade pact, which is still pending, and as we have been hearing lately from the ministers that it's not in sight, but something like that, this where we are trying to, 15 countries trying to come together to address structural excess capacity, production, and curb non-market policies, I think it's a very positive step, especially in these times when there is uncertainty in the world.
0: Right.
2: नया मर्चेंट डिस्काउंट ट्रेड MDR फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा. इसके तहत ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI भुगतान पर कोई MDR नहीं लगेगा. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने कहा कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए इसमें कोई भी मासिक कोटा, भुगतान की सीमा या फिर अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा. उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को और किसी भी दुकानदार को बिना किसी सीमा या शुल्क के भुगतान कर सकते हैं.
0: Crude oil. Global crude oil prices rose sharply today amid persistent worries about supply from West Asia. Brent crude was trading 4.5% up at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading 4.5% higher at $92.25 per barrel at the time of writing this report. Your comments, Siddharth, on crude. Should we look at 100 as the oscillating figure and to and fro from that?
1: Yeah, because except in very small, I think for a small brief period when we had seen a fall in crude oil prices, I

0: think the prices have been hovering around $100. Today, the world over, I think, because after around $104 per barrel, I think that is what is shaking the markets all across the globe. So I think this is the new normal. And also another challenge is going to be the supplies, because of the uncertainty, the attacks happening and supply constraints still persisting in the Strait of Hormuz. So I think and this is single biggest reason for price rise, inflation
1: rising. So it's interesting, you know, when crude oil prices rise, the sentiment goes, and you know, we can see markets responding and people tightening their fiscal and their fist and monetary policies. But also, when crude oil prices fall, the result is not so fast to see.
0: Yes, I agree. And obviously, because you would have also suffered for a long time with these kind of high prices. If you look at India,
1: it takes time.
0: Yeah, if you look at a country like India, which imports almost 90% of its energy, we have, till now, the government of the day has absorbed most of the prices.
1: Right.
0: Price rise.
1: Right.
2: और आगे बढ़ते हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने का मूल्य मामूली गिरावट के साथ 1,47,646 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत 0.7% लुढ़ककर 2,17,106 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई थी. सिद्धार्थ, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत धन्यवाद
0: निखिल और गौरा, आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू सिद्धार्थ. एंड बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस. Benchmark domestic indices decline around 1.5%. Sensex slumps over 1,000 points. Nifty settles below 22,250. GST Council removes arrest powers of tax officers, raises threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. And global crude oil prices surge over 4%. That's all for today. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ रितिका और कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

0: देखो आई हंसी आई रे।
1: तो दोस्तों गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। सुरभि आ चुकी हैं स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 10वीं संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई। 2 जवानों को गंभीर चोट आई है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश का संभावना व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का भी अनुमान व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की इरिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital.
1: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
4: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a written late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Ms. Sitharaman said the council had

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके साथ सुरभि लेकर प्रोग्राम निशिगंधा। चांद से फूल से या मेरी जबां से सुनिए, चांद से फूल से या मेरी जबां से सुनिए, हर तरफ आपका

किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जीना, सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की जबान से सुनिए। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां, मुझको वहां से सुनिए। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां, मुझको वहां से सुनिए। जिंदगी क्या है मोहब्बत की जबान से सुनिए।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत सा लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत खूब कहा किसी ने कि किसने झलक पर्दे से दिखा दी, आंख ने देखा तो दिल ने दुआ दी। किसने झलक पर्दे से दिखा दी, आंख ने देखा और दिल ने दुआ दी। रात एक ऐसी रोशनी देखी, रात एक ऐसी रोशनी देखी, मारे खुशी के शम्मा बुझा दी। तुमने दिखाए ऐसे सपने, नींद में सारी उम्र गवा दी। किसने झलक पर्दे से दिखा दी, आंख ने देखा और दिल ने दुआ दी।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

निशी गंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे। मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। कहीं पर भी रहें हम तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कहीं पर भी रहे हम तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है, तुम्हें हम याद आएंगे हमें तुम याद आओगे, तुम्हें हम याद आएंगे हमें तुम याद आओगे। और बहुत खूब कहा है किसी ने, तो चलिए इसी के चलते सुनते हैं ये गीत। फिल्म है पगला कहीं का।

101.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि तेरे ही कदमों में मरना भी अपना जीना भी, तेरे ही कदमों में मरना भी अपना जीना भी, कि तेरा प्यार है दरिया भी और सफीना भी। मेरी नजर में सभी आदमी बराबर हैं, मेरे लिए जो है काशी वही मदीना भी। तेरे ही कदमों में मरना भी अपना जीना भी, कि तेरा प्यार है दरिया भी और सफीना भी।

अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। तो इसी के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक, और हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम की सुहाने में 1:10 पर, और आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।

श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना का प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान CRPF के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, 2 जवानों को गंभीर चोट आई है। भारत की PV सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और धरुण मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बिहार, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का भी अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है गीत सुहाने और सुरभि एक बार फिर आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मीरा साया फिल्म का ये गीत।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि जाने किस बात की वो मुझको सजा देता है, जाने किस बात की वो मुझको सजा देता है, जहर देता है ना फिर कोई दवा देता है। गैर मुमकिन है ये छुप जाए मेरी नजरों से, तेरा हंसना तेरे जख्मों का पता देता है, जाने किस बात की वो मुझको सजा देता है, जहर देता है ना फिर कोई दवा देता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने, मैं हूँ सुरभि आपके साथ। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि मेरे होते भी अगर उनको ना आराम आया, मेरे होते भी अगर उनको ना आराम आया, जिंदगी फिर मेरा जीना मेरे किस काम आया।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश साहब को फिल्म पत्थर के सनम में, और अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म है त्रिशूल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी रात सुरमई में 2:10 पर। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to rupees 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट

0: 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। ये फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, 2 जवानों को गंभीर चोट आई है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसिक और नवोन्मेषी कार्य के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोल्म में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The GST Council during its 57th meeting in New Delhi approved a series of measures to ease compliance with taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital.
2: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
1: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards to notices and proceedings. Ms. Sitharaman said that the council had also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi. Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deepfakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat. Prime Minister Modi said, India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance and that the Digital India campaign has been at the core of the country's digital transformation, with the mobile phone placed at the center of the initiative to bridge the digital divide and make technology more accessible to all. Mr. Modi said that 5G connectivity has now reached every district of the country. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw has said that the government plans to release a consultation paper on the future regulations of artificial intelligence, AI, within the next month, with a key focus on ensuring AI safety and addressing the growing threat posed by deepfakes. The minister is speaking to the media after releasing the World Development Report 2026 titled The Promise of Artificial Intelligence. Veteran actor Nana Patekar was cremated with full state honours at his farmhouse Nanaji Wadi in Donje in near Pune. His son Malhar Patekar performed the last rites at around 11:30 p.m. last night in the presence of family members, relatives, friends and admirers.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। आप सभी को एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये राहे मोहब्बत है, इसमें ऐसे भी मकाम आते हैं। ये राहे मोहब्बत है, इसमें ऐसे भी मकाम आते हैं। रुकिए तो पसीना आता है, चलिए तो कदम थर्राते हैं। वो मस्त हवाओं के झोंके, कुछ रात गए कुछ रात रहे। वो मस्त हवाओं के झोंके, कुछ रात गए कुछ रात रहे। जैसे ये कोई रह रह के कहे, घबराओ नहीं हम आते हैं। ये राह मोहब्बत है, इसमें ऐसे भी मकाम आते हैं। रुकिए तो पसीना आता है, चलिए तो कदम थर्राते हैं। तो चलिए सुनते हैं जिस्म फिल्म का ये गाना केके की आवाज़ में।

हमने तो नहीं जाना था तिनके का सहारा भी, हमने तो नहीं जाना था तिनके का सहारा भी, तूफान ने डुबोया था तूफान ने उभारा भी, है एक जमाने पर एहसान हमारा भी, बिगड़े जो मोहब्बत में कितनों को संवारा भी। फिर ताजा करें चलकर ईमान मोहब्बत को, एक बार जिसे देखा देखाएं दोबारा भी, हमने तो नहीं जाना तिनके का सहारा भी, तूफान ने डुबोया था तूफान ने उभारा भी।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और बहुत खूब कहा है किसी ने कि ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी, ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी तो किसी और की जबानी। ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी किसी और की जबानी। तेरा हुस्न सो रहा था, मेरी छेड़ ने जगाया, वो निगाह मैंने डाली कि संवर गई जवानी।

चलिए तो मेरे साथ जरा रह गुजर तक, चलिए तो मेरे साथ जरा रह गुजर तक, दुश्वारी मंजिल है फकत अज़्म सफर तक। जहमत ही उठाई है तो एक और भी जहमत, दिल में भी चले आओ जब आए हो नजर तक।

और इस गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब सुरभि को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के जरिए सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर साझा स्वामित्व को बढ़ावा देना और विकास के परिणामों में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हूं मैं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

मिजाज तो मौसम का भी एक सा नहीं रहता, मिजाज तो कभी मौसम का भी एक सा नहीं रहता, तो इंसान का कैसे रहेगा। वक्त और हालात सभी के बदलते हैं, वक्त और हालात सभी के बदलते हैं, बस थोड़ा इंतजार है करना पड़ता। 3:19 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ। और आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत जिसके बोल है तुमसे ओ हसीना।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। मिल जाए अगर खुशियां बिना कुछ किए तो यकीन मानिए बहुत ही खुशनसीब हैं आप। हो जाए पूरे सारे काम थोड़े से प्रयास से तो यकीन मानिए किसी की दुआ के बेहद करीब हैं आप। भटकते हैं लोग दिन रात इस संसार में, भटकते हैं लोग दिन रात इस संसार में, जो नहीं भटके वो मंजिल के बेहद करीब हैं। मिल जाए मंजिल तो शुक्र अदा कीजिए जिसे आप मानते हो। मिल जाए मंजिल तो शुक्र अदा कीजिए जिसे आप मानते हो। बाकी तो सबके अपने अपने नसीब हैं। मिल रही हैं अगर खुशियां तो यकीन मानिए आप बेहद खुश नसीब हैं। तीन बजकर 27 मिनट हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

3:32 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जो चाहा वो कभी हुआ नहीं, जो चाहा वो कभी हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो भी इतना कुछ बुरा नहीं। चाहतों के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़िए, चाहतों के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़िए, पल जो मिला है उसका सम्मान भी जरूर करिए। सभी चाहतें पूरी हों ये जरूरी तो नहीं, अगर चैन और सुकून से गुजर रही है ये जिंदगी, अगर चैन और सुकून से गुजर रही है ये जिंदगी, तो इस बात का शुक्र अदा जरूर करिए। तीन बजकर 40 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। अक्सर बहुत परेशान करती हैं कुछ बिना भूलने की ये आदतें। कुछ चीज़ें भूलकर दिल और दिमाग को खाली भी रखना चाहिए। कुछ चीज़ें भूलकर दिल और दिमाग को खाली भी रखना चाहिए, क्योंकि फुल हो जाए मेमोरी तो फ़ोन और कंप्यूटर भी ठीक से काम नहीं करते।

और इसी क्रम में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और बहुत ही अपने समय का बेहतरीन सा गीत, जिसके बोल हैं, तुझे देखा तुझे चाहा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

3:53 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के जरिए सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर साझा स्वामित्व को बढ़ावा देना और विकास के परिणामों में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। वस्तु और सेवा कर GST परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में GST परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF, सहायक प्रोफेसर या PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच होगी। भारत की PV सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है पर ये आदतें नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तब अक्सर जिंदगी नहीं बचती। 4:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है, जिसमें एक बार फिर से मैं हूं, और सिर्फ मैं ही हूं आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम अरुणिमा, एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से ही चलिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की इन उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी। मेरी इन बातों को भी थोड़ा दिमाग में रखिए। पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा। दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से चलिए। चार बजकर 20 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिल जाए अगर समय से सजा हर गुनाह की, मिल जाए अगर समय से सजा हर गुनाह की, तो फिर शायद इतने गुनाह ही ना हो। मिलने लगे सुबह के कर्मों की सजा अगर शाम तक, तो फिर शायद कर्म भी उसी के हिसाब से ही हो। नीचे की अदालत में तो मिलती है सजा तमाम सबूतों गवाहों और के बयानात पर, नीचे की अदालत में तो मिलती है सजा तमाम सबूतों गवाहों के बयानात पर, ऊपर की अदालत में जहां खुदा ही गवाह खुदा ही जज हो, वहां क्यों होती है देर, मेरी इस बात का कोई जवाब तो हो। होंगी खुद खुदा की भी कुछ मजबूरियां शायद, होंगी खुद खुदा की भी कुछ मजबूरियां शायद, वरना हर जगह इतने गुनाह गया तो ना हो। मिल जाए समय से सजा हर गुनाह की, तो फिर शायद इतने गुनाह ही ना हो। चार बजकर 27 मिनट हो चुके हैं और मेरी इन लाइनों का वास्तविक मतलब भी यही है कि अगर कुछ गुनाहों की सजा थोड़ा जल्दी मिले लोगों को, तो फिर कुछ भी गुनाह, कोई भी किसी भी तरह का गुनाह करने से पहले इंसान 100 बार सोचने लगेगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, कार्यक्रम चल रहा है आपका पसंदीदा, जिसका नाम है अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ना जा कहीं अपना जा। जीवन में कोई हमें अच्छा या बुरा हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से ही लगता है। हमें जरूरत है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर हमें जरूरत ना हो तो वही हमारे लिए बुरा हो जाता है। क्योंकि सूरज हमेशा वही होता है, सूरज हमेशा एक ही होता है, जो सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा और मई जून की गर्मियों में हमें उतना अच्छा नहीं लगता है।

4:35 हो चुके हैं। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और सुनते रहिए मुझे यानी अपने दोस्त अर्चित को आज के इस प्रोग्राम अरुणिमा में।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की इतनी चर्चा क्यों करते हो। बैठे तो हो सुकून से घर में, फिर इतना परेशान क्यों लगते हो। परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, पर तुम हर समय इतना परेशान क्यों दिखते हो।

कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, सफलता मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। 5:54 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। और लीजिए अब सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी

0: हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। वस्तु और सेवा कर GST परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में GST परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF सहायक प्रोफेसर या PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी संस्थानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने एक पत्र जारी कर विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रमुखों से दिव्यांगजनों के लिए समावेशी और सुलभ शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। आयोग ने संस्थानों के प्रमुखों को समान अवसर प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का और दिव्यांगजन विद्यार्थियों को दिए गए प्रवेश, शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की भर्ती और छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति से संबंधित निर्धारित सांख्यिकी जानकारी प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। PV सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। उधर क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत ने श्रृंखला के पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना रखी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The GST Council during its 57th meeting in New Delhi approved a series of measures to ease compliance with taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1.5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 5:10 हो चुके हैं और ये समय रहता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी।

हमेशा की तरह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम भोर सुहानी में। और मैं हूं लगातार दो घंटे से मैं ही हूं आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिर कुछ होंगी बातें और कुछ होगी चर्चाएं।

किशोर कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत। पहुंचना है ऊंचाइयों पर तो मजबूत अंदर से है होना पड़ता, पहुंचना है ऊंचाइयों पर तो मजबूत अंदर से है होना पड़ता, रहना है शिखर पर तो प्रयास दिन रात है करना पड़ता, जमीन से जुड़कर ही हासिल होते हैं मुकाम आसमानों के, जमीन से जुड़कर ही हासिल होते हैं मुकाम आसमानों के, हवाई जहाज को भी उड़ने से पहले जमीन पर है चलना पड़ता। 5:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

हैं किसी के पास, पर सफल सिर्फ चंद लोग ही होते हैं। करते हैं जो लगातार प्रयास, इरादे अक्सर उन्हीं के सफल होते हैं। रख कर हौसले, करते रहो दिन रात काम। रख कर हौसले, करते रहो दिन रात काम। सिर्फ और सिर्फ हौसले रखने से नहीं मिल जाते हैं मुकाम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।